नमस्कार। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है। सक्षम 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि तदनुसार 5 जून सन 2026 इस समय प्रातः के 5:58 और 32 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। हिंदी में समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
1: The discussions also
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: Can enter the Venezuelan market successfully.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका यह कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। यह दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर जो आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। समूह स्वर में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ये देशभक्तिपूर्ण मातृ वंदना।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में ये देशभक्तिपूर्ण मातृवंदना। श्रोताओं, प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी की कविता है, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, वंदनी माँ को ना भूलो, राग में जब मत झूलो, अर्चना के रत्न कण में ये कण मेरा मिला लो, जब हृदय का तार बोले, श्रृंखला के बंद खोले, हूँ जहाँ बलिशीष अगणित एक सिर मेरा मिला।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह के स्वर में जिए माता सरस्वती की वंदना। श्रोताओ, संत कबीरदास जी लिखते हैं, संत न छाड़े संतई जो कोटिक मिले असंत, चंदन भवंगा बैठिया तौ शीतलता न तजंत। अर्थात जिन लोगों के संस्कार अच्छे होते हैं वे बुरे लोगों के बीच रहकर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। जिस तरह चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं लेकिन चंदन अपने गुड़ नहीं छोड़ता है, इसलिए संत कबीर ईश्वर की भक्ति में लीन है। आइए अब कबीर की एक रचना हम आपको सुनाते हैं मोहम्मद रफी के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में ये भजन, और लीजिए सुनिए भक्ति संगीत के समापन में कबीर अमृतवाणी, स्वर देवाशीष दास गुप्ता का है।

0: इसी के साथ ही आज भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए आप सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ देर बाद 6:35 पर किसान भाई सुनेंगे खेती किसानी में मुर्गियों का संतुलित आहार विषय पर जानकारी। 6:40 पर श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय पाठ। आज आप सुनेंगे 12वीं कड़ी। गायक होंगे रविन्द्र साठी, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। 6:50 पर चिंतन। 7:20 पर हिंदी महक में हम आपको सुनवाएंगे विनोद कुमार वर्मा से हिंदी काव्य पाठ। 7:30 पर फिल्म संगीत। 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत में उस्ताद अमजद अली खान से राग मियां की तोड़ी में सरूद वादन। 9:00 आप सुनेंगे लोक रंग में गफूर खान और बबली शमा की आवाज में बुंदेली लोक संगीत। 9:30 पर फिल्मी कव्वालियां। 10:05 पर गांधी चर्चा का 5वां भाग। प्रवक्ता एवं प्रस्तुतकर्ता होंगे महेश शर्मा। 10:20 पर गैर फिल्मी भजन। 10:30 पर आपकी पसंद श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। 11:00 आकाशवाणी भोपाल से फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12:00 आपकी फरमाइश। 1:00 बहनें सुनेंगी महिला कार्यक्रम महिला सभा आकाशवाणी छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति में आकाशवाणी भोपाल से। इसमें बहनें सुनेंगी वृक्ष हमारी पूज्य इस विषय पर एक वार्ता। वार्ताकार होंगी सर्वमंगला रिछारिया। साथियों की उपयोगी जानकारी भोपाल केंद्र से ही 1:30 पर लोक संगीत आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति में विश्व पर्यावरण दिवस पर केंद्रित बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम होगा। और साथी कलाकार होंगे चंद्रभूषण पाठक, रमेश बाबू सोनी, रामनाथ अहिरवार। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। 1:45 पर सुगम संगीत आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति में आकाशवाणी छतरपुर केंद्र का योगदान होगा, कलाकार सतीश भूटानी। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 4:58 से और शाम 5:02 पर आकाशवाणी भोपाल से युववाणी आकाशवाणी छतरपुर का योगदान होगा। इसमें अदिति शुक्ला की वार्ता होगी रील्स बनाम रियल और हमारा युवा। साथ ही होगी युवाओं के लिए रोजगार सूचना। शाम 5:30 पर विश्व पर्यावरण दिवस पर पत्रकारिता से जुड़े संतोष कुमार गंगिले से मरकूब आलम खान की बातचीत हम आपको सुनाएंगे। शाम 6:00 आप सुनेंगे भोपाल केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी, जिसका 1300वां भाग हम आपको सुनवाएंगे। शाम 6:30 पर लोकधारा कार्यक्रम में कलाकार होंगे बबली शमा और गफूर खान। शाम 7:20 पर ग्राम सभा में स्वप्निल अग्रवाल हमारे कंपियर होंगे और साथ ही आप सुनेंगे मानस प्रवचन। प्रसंग होगा राजा दशरथ का पुत्रोक्ति। प्रवचन करता होंगे महेश कुमार अवस्थी। एक भेंट वार्ता होगी पशुपालक अनुरुद्ध सिंह से बिजू भैया की बातचीत। साथ ही आज की सीख में विषय होगा जिनके मन है लालची गिने न ठोर कुठोर, कंचन मन में भी मिले तुरंत उठावत दौड़। रात 8:00 भोपाल से विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष महिला सशक्तिकरण। रात 8:35 पर फिल्म संगीत। रात 9:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से स्पॉटलाइट। 9:30 पर फिल्म संगीत। 10:00 आप सुनेंगे नाटक फिल्मी चक्कर। 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन मंसूर का राग शुद्ध नट में गायन। ये था आज का कार्यक्रम विवरण। जी आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए अब खेती किसानी। आज का विषय है मुर्गियों का संतुलित आहार।
1: पंचो आज हम अपन खां जानकारी दे रहे हैं खासतौर से उन पंचन के लाने जो उनके मुर्गी पालन कर रहे हैं। तो मुर्गी पालन करवे के लाने अपन खां जो जानबो सोई बहुत जरूरी है कि उनकी आहार व्यवस्था कौन प्रकार से कैसी करी जाए। भैया अगर अपन मुर्गियन की उचित वृद्धि और अच्छो उत्पादन उनसे लो चाहते हैं तो उन्हें संतुलित आहार में भोजन देवो जरूरी है। अब इनमें सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा, लवण, विटामिन और पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अपन ने देखो हुए कि जो मुर्गी होती हैं उनके भैया दांत नहीं होते,

0: वे जो अपना भोजन है वे जो पीसती हैं उन्हें चबाउती हैं, जो उको जो पूरा जो काम है वो आमाशय करत है। तो इसे जो अधिक रेशेदार वस्तुएं हैं उनको पाचन मुर्गी जो है ठीक से नहीं कर पाती है। तो अपन का जो है जो ज्यादा रेशेदार चीजें हैं उनको कम से कम मात्रा में उपयोग करने हैं भोजन के लिए। मुर्गी के आहार में मुख्यतः जैसे अनाज है, अनाजन की बनी और जो छोटी मोटी चीजें हैं, खरी है, मछली को चूर्ण है, मांस है, अस्थि चूर्ण है, दूध के उत्पाद हैं, लवण मिश्रण, विटामिन, ऐसे जो तमाम प्रकार के जो हरे चारे हैं छोटे उनको जो है उपयोग अपन कर सकते हैं। ई किलाने अलग अलग से अगर अपने थे कम मात्रा में मुर्गी हैं तो उकिलाने अलग विधि है। ज्यादा मात्रा में एक मुर्गी फार्म के रूप में अगर अपन जो है अपनी मुर्गियन का पाले हो तो उकिलाने अलग प्रकार से अपन जो है आहार व्यवस्था बना सकते हो। हम अपन हाँ बता दें कि अपन हाँ कौन सी मात्रा में कितने तत्वों की पूर्ति के लाने भोजन व्यवस्था अपनी मुर्गियन के लाने बनाने हैं। तो भैया जैसे अपन ने मान लो पीलो मक्का लो, तो पीलो मक्का 25%, चावल 26%, जौ 7%, गेहूं की भूसी 7%, मूंगफली की खली 18%, मक्का ग्लूटिन चूर्ण 5%, मछली का चूर्ण भाप लघु भव यह 6% और भाप लघु मांस को चूर्ण 3%, भाप लघु हड्डी को चूर्ण 1%, कैल्शियम 1.5% और नमक 0.5%। ई के अलावा विटामिन ए 2%, विटामिन बी 2 0.5%, विटामिन बी 3 0.3% और मैग्नीज सल्फेट को अपन खा अच्छी तरह से जो आहार अपन बना रहे हो इखा उपयोग करने हैं। कोनो भी आहार अपन ने बनाओ है उखा अच्छी तरह से जो है अपन तब बना सकते हैं जब जिस सभी तत्व में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, लवण है, एक निश्चित अनुपात में हमारे बताए अनुसार अपन उनको उपयोग करो। तो जो मुर्गी है अपनी जब उन्हें सभी प्रकार के पोषक तत्व सूक्ष्म तत्व उन्हें मिले तो निश्चित है कि उनको विकास हुए। अपन ने भी ये देखो हुए कि एक प्रौढ़ मुर्गी जो है 100 से 120 ग्राम दाना एक दिन में खा जाते है। वही हिसाब से अपन खा जो है इको उपयोग में लाने हैं। तो अपन क्या करने हैं कि जो मान लो सप्ताह के अनुसार अगर अपन इनको देखें तो अगर 1 से 2 सप्ताह तक के चूजा हैं अपने बच्चा है मुर्गी के उन्हें 14 से 18 ग्राम, 3 से 4 सप्ताह के हैं तो उन्हें 27 से 31 ग्राम, 5 से 6 सप्ताह के हैं तो उन्हें 40 से 50 ग्राम, 7 और 8 सप्ताह के हैं तो 55 से 64 ग्राम और 9 और 10 सप्ताह के अगर भी हो गए तो 60 से 68 ग्राम और 11-12 सप्ताह के हैं तो 72 से 75 ग्राम और 20 सप्ताह तक के हो गए हैं तो उन्हें 100 ग्राम। इस प्रकार से अपन खा बनाओ भाव अपनों सभी पोषक तत्वों को मिलो भाव ई भोजन को उपयोग करने। तो अगर कहूं अपन ने हमारी बताई भाई बातन पे ध्यान देखें, अपनी मुर्गियन के लाने उचित आहार की व्यवस्था करी तो निश्चित है कि अपन उनको अच्छा उत्पादन ले पाओ। इतने भैया एक बात हम अपन खा जाओ बता दें कि जो जन अपने चूजा होते ना उनमें 50% तक नर पक्षी होते हैं, तो जितने जल्दी हो सके अपन उनकी जल्दी से जल्दी पहचान करके उन्हें अलग कर ले। और ऐसी स्थिति में जबकि अपने जो नर पक्षी हैं उनकी आयु अगर 12 से 16 सप्ताह की हो गई तो फिर उन्हें बेच दो चाहिए। कैसे भैया कि जब ज्यादा उम्र के जो पक्षी हो जाते हैं तो फिर बाजार में उनकी कीमत गिरन लगत है, गर्मी होवे पे अंडन की कीमत गिरन लगत है। तो ऐसी अवस्था में जो उन कम अंडा देवे वाली मुर्गी है उनका राखबे में कोनो फायदा नहीं है, तो आर्थिक दृष्टि से वे लाभ अपन का नहीं पहुंचाती। इसे ऐसी मुर्गियन खा भी अपन खा बाजार में ले जाके बेच दो चाहिए। इस प्रकार से अगर अपन ने हमारी बताई भाई बातन पे ध्यान देखें मुर्गी पालन करो तो निश्चित है कि अपन का फायदा होगा।
1: हमारे किसान भाइयों के लिए खेती किसानी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। आज का विषय मुर्गी पालन से लाभ, ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय पाठ। आज 12वीं कड़ी हम आपको सुना रहे हैं। गायक है रविंद्र साठी और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है। आइए लीजिए सुनते हैं भगवान श्री रामचरितमानस गान का ये संगीतमय पाठ।

भारतीय भक्ति साहित्य में जहां एक ओर ब्रह्म के निर्गुण और सगुण स्वरूपों की व्याख्या मिलती है, वहां दूसरी ओर प्रभु के नाम की महिमा तथा यशोगान भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तुलसीदास ने प्रभु के नाम को उनके निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों से अधिक महिमामय तथा बड़ा बताया है। जो लोग सभी कामनाओं को त्याग कर श्री राम का नाम भजते हैं, उनका मन भक्ति रूपी सरोवर में मछली की भांति होता है, जिसे जल से अलग करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान होता है। निर्गुण काठ में निहित अग्नि जो दिखती नहीं, सगुण उस अग्नि के समान है जिसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, किंतु तत्वतः दोनों एक ही हैं। दोनों का ज्ञान प्राप्त करना समान रूप से कठिन होता है। प्रभु का नाम ऐसा सहारा है जिससे दोनों सरल और सुगम हो जाते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का अनका संगीतमय पाठ। आज आपने 12वीं कड़ी सुनी, गायक रविन्द्र साठी, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: सत्य ही ईश्वर है, सत्य ईश्वर का निराकार स्वरूप है। वर्तमान में सत्य का अभाव चारों ओर दिखाई दे रहा है। मनुष्य में झूठ बोलने की प्रवृत्ति दिनों दिन प्रायः बढ़ती जा रही है। झूठ का आडंबर रचा जा रहा है और झूठ के साम्राज्य को विस्तार दिया जा रहा है।

0: आज सत्य को परास्त करने के लिए झूठ का सहारा लेकर नए नए रूपों में प्रसारित किया जा रहा है और मनुष्य को गुमराह कर वो झूठ के साम्राज्य के द्वारा आपकी पीठ थपथपा रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो अपने आप को धोखा दे रहा है, क्योंकि लाख प्रयास करने पर भी झूठ सत्य नहीं बन सकता। सत्य को थोड़े समय के लिए धुंधलाया जा सकता है, लेकिन उसे परास्त नहीं किया जा सकता। तभी तो कैवर जी ने कहा है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, चाके हृदय सांच है ताके हृदय आ। सत्य तो ईश्वर का सगुण है एवं निराकार स्वरूप है। सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही राम है। क्योंकि हम वेद पुराणों के आख्यानों को पढ़ते सुनते हैं तो पता चलता है कि सत्य प्रभु मिलन तप एवं सत्य का ही परिणाम है। महाभारत में पांडवों की विजय हमें सत्य पर चलने की शिक्षा देती है कि सत्य से हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए और एक दिन सत्य की विजय अवश्य होती है। ऋग्वेद के मुंडकों उपनिषद से यह सूत्र वाक्य लिया गया है, सत्य में उजयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य ही सार है, सत्य के बिना हमारा सारा प्रयास अधूरा है, जिसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। सत्य के आधार पर सूर्य तपता है, चंद्रमा सत्य के द्वारा शीतलता प्रदान करता है, सत्य के तप के द्वारा पृथ्वी सभी जीवों के भार को वहन करती है, ये मनुष्य भी सत्य के बिना संसार में निर्वाह नहीं कर सकता। आज वर्तमान में मनुष्य मनुष्य को धोखा देने में होड़ सी लगी है। झूठ, ईर्ष्या, अन्याय, छल कपट, मक्कारी का आडंबर आदि अनेक रूप झूठ के विद्यमान होने पर भी झूठ झूठ ही होता है। झूठ के पैर नहीं होते, थोड़े समय के बाद झूठ की कलाई तो खुलनी ही होती है। त्रेता युग में मंथरा के द्वारा कैकेयी रानी को राम के विषय में खूब कान भरे गए, लेकिन बाद में अयोध्या वासियों को सत्य का पता चल ही गया। अनेक वृतांतों के माध्यमों से पता चलता है कि झूठ कभी भी सत्य नहीं हो सकता, वो एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। ऐसी स्थिति में हम क्यों भटकाव की स्थिति में रहते हैं? वस्तुतः झूठ वो व्यक्ति बोलता है जो अपने आप में अधूरा एवं खाली है, जो अल्पज्ञ है। झूठ बोलने से मनुष्य के व्यक्तित्व का पता चलता है। दूसरी बात, झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा डरा हुआ, सहमा हुआ एवं भीतर से भयाक्रांत रहता है। वो अपने आप को धोखा देने का निरंतर कार्य करता रहता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता भी प्रभावित रहती है। असल में जिंदगी को सही ढंग से वो जी ही नहीं पाता, हमेशा दुविधा का शिकार रहता है। उसमें मानवीय मूल्यों का विकास नहीं हो पाता है। सहजता, सरलता, सज्जनता, दयालुता आदि मानवीय मूल्यों का विकास न होकर वो टेसु का फूल बन जाता है। वो फूल तो है, लेकिन उस फूल में खुशबू नहीं होती, तो वो फूल के वास्तविक गुण से भिन्न रहता है। इसी प्रकार झूठे आडंबरों को छोड़ मनुष्य को सज्जनता, सरलता, सहजता, सहिष्णुता, सत्यता एवं भक्ति को अपना कर ही मनुष्य अपनी सार्थक ऊर्जा के द्वारा प्रयास कर इस संसार को मार्ग प्रशस्त कर अपने जीवन को सफल बना सकता है। झूठ में ऊर्जा बर्बाद न कर समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण में एवं गरीब दरिद्र नारायण की सेवा में अपने आप को समर्पित कर।
1: ये था आज का चिंतन। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से होंगे।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको नरेन्द्र दत्त सेमवालः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरातस्य दमनक्षेत्रस्य भ्रमणं करिष्यति। सः सूरतनगरे राजमार्गस्य विद्युदुत्पादन प्रकल्पस्य औद्यमिक क्षेत्रस्य च कृते अष्टशताधिक अष्टादश सहस्रकोटि रूप्यकाणां बहुविध विकास परियोजनानां समर्पणं शिलान्यासं च

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री

आज ही दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरूआत

0: स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई शोध रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुकरण ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोनताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर, कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और

0: और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम की बैठक आज। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिए निर्देश, समय पर पूरा हो मेट्रो रेल परियोजनाओं का काम। और भाजपा ने प्रदेश के दो और कांग्रेस ने एक राज्यसभा सीट के लिए प्रत्याशी घोषित किए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सबसे पहले हजीरा जाएंगे और औद्योगिक तथा अवसंरचना परियोजना की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरे का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात कर रहे हैं इज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रदेश आज इंदौर के एक निजी होटल में भारत, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम 2026 की मेजबानी करेगा। ये फोरम मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। इस फोरम में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के 15 देशों के वरिष्ठ राजनयिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये फोरम भारत और लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन क्षेत्र के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को सुदृढ़ करने तथा मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश के प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा,
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: इंदौर में 9 जून से प्रारंभ होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश शासन की कृषि विभाग के सचिव निशांत परमड़े इंदौर पहुंचे और आयोजन से जुड़े विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। श्री वरवड़े ने होटल शेरिटन, मैरिट होटल और ग्रामीण हाट बाजार सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं।

0: इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल संचालन के प्रथम चरण के कार्य पूरा होने के बाद परियोजना के आगामी चरणों के कार्य समय सीमा में पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में भोपाल और इंदौर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजधानी भोपाल और प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र इंदौर में मेट्रो रेल यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग का आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए। दोनों नगरों की मेट्रो रेल परियोजना के सभी चरणों के संपूर्ण कार्यों में तेजी से पूरा किया जा रहा है। समग्र प्रगति की दृष्टि से दोनों परियोजनाओं के दो तिहाई कार्य पूरे हो चुके हैं। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया है। इन सीटों के लिए नामांकन जमा करने की तिथि 8 जून है। जरूरी हुआ तो 18 जून को मतदान कराया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल लोकभवन में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण और आयुष विभाग के साथ चर्चा करते हुए विश्व सिकल सेल दिवस के तारतम्य में सिकल सेल उन्मूलन गतिविधियों को सघनता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज विश्व पर्यावरण दिवस पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उक्त पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, सतत विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली औद्योगिक इकाइयों, शैक्षणिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों को वर्ष 2024-25 के लिए दिए जाएंगे। आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। यह हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। इस दिन का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में पहली बार नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को नाम जोड़ने, कटवाने और नाम संशोधन के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है। इस सुविधा का लाभ लेते हुए कुल 8,317 आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन किया। इन सभी आवेदनों पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के सभी विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 14 जून तक जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। आगर मालवा जिले में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान और स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान चलाया जाएगा। डिंडौरी में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इंदौर में शासकीय सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने की मुहिम में खुड़ैल तहसील के ग्राम गारी पिपलिया में देव धर्मराज मंदिर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सिंगरौली कलेक्टर की अध्यक्षता में कल आपदा प्रबंधन कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने पंचायत विभाग और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR पर। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए हिंदी महक। इस क्रम में आज हम आपको सुना रहे हैं विनोद कुमार वर्मा से उनका काव्य पाठ।
1: प्यार से सब रहे प्यार फैले अगर, नफरतों का सभी दम निकल जाएगा। प्यार से सब रहे प्यार फैले अगर, नफरतों का सभी दम निकल जाएगा। देश बढ़ता रहे साथ सबका मिले, देश बढ़ता रहे साथ सबका मिले। दुश्मनों का सभी मन दहल जाएगा, दुश्मनों

का सभी मन दहल जाएगा। और शेर देखें कि धर्म सारे यहाँ पंथ सारे यहाँ, धर्म सारे यहाँ पंथ सारे यहाँ, सब लड़े हैं मगर देश खातर यहाँ, सब लड़े हैं मगर देश खातर यहाँ। एकता जीतती ही रहेगी अगर, एकता जीतती ही रहेगी अगर, नफरतों का महल यार गल जाएगा, नफरतों का महल यार गल जाएगा। शेर देखें एक तरफा अगर प्यार तुझको हुआ, धड़कनों में सजा ले महक प्यार की। एक तरफा अगर प्यार तुझको हुआ, धड़कनों में सजा ले महक प्यार की। आँच देते रहो प्यार की तुम अगर, एक दिन बेवफा भी पिघल जाएगा। आँच देते रहो प्यार की तुम अगर, एक दिन बेवफा भी पिघल जाएगा। और शेर देखें कि राह चलते रहो बिन थके जोश में, राह चलते रहो बिन थके जोश में, मंजिलें पास आती रहेंगी सदा, मंजिलें पास आती रहेंगी सदा। गीत गाओ कोई साथ संगीत के, गीत गाओ कोई साथ संगीत के, दिल जलों का हृदय भी बहल जाएगा, दिल जलों का हृदय भी बहल जाएगा। अंतम शेर देखे मक्ते का कि दर्द लेता रहा गैर के दर्द को, दर्द लेता रहा गैर के दर्द को, और बांटा सदा प्यार निष्काम ही, और बांटा सदा प्यार निष्काम ही। कर भला हो भला मान कर चल सदा, कर भला हो भला मान कर चल सदा। जिंदगी रब कृपा से सफल जाएगा, जिंदगी रब कृपा से सफल जाएगा। प्यार से सब रहे प्यार फैले अगर, नफरतों का सभी दम निकल जाएगा। देश बढ़ता रहे साथ सबका मिले, दुश्मनों का सभी मन दहल जाएगा। और प्यार मासा नहीं जमाने में, प्यार मासा नहीं जमाने में, कोई बढ़कर कहाँ बताने में, कोई बढ़कर कहाँ बताने में। और शेर देखें कि जिंदगी दाव पर लगा देती, जिंदगी दाव पर लगा देती, पुत्र की हसरतें सजाने में, पुत्र की हसरतें सजाने में, प्यार मासा नहीं जमाने में। और आगे का शेर देखें जिंदगी काटती रही हंसके, जिंदगी काटती रही हंसके, अश्क रहते सदा छुपाने में, अश्क रहते सदा छुपाने में। और शेर देखें कि सुत सुता जो कहे वही जायज, सुत सुता जो कहे वही जायज, बात खुद की न मां चलाने में, बात खुद की न मां चलाने में। और दर्द सच में वही बुरा इंसान, दर्द सच में वही बुरा इंसान, पीर जो मां दिए जमाने में, पीर जो मां दिए जमाने में। एक गजल भी देखें मन का मैल हटाए जा, मन का मेल हटाए जा, सब पर प्यार लुटाए जा, सब पर प्यार लुटाए जा। और शेर देखें कि भूखे लोग जहां पर हों, भूखे लोग जहां पर हों, खाना खूब खिलाए जा, खाना खूब खिलाए जा। और एक शेर ये भी देखें कि सेवा मात पिता की कर, सेवा मात पिता की कर, हर दिन शीश झुकाए जा, हर दिन शीश झुकाए जा। और शेर देखें आगे का प्यासे लोग जिधर दिखते, प्यासे लोग जिधर दिखते, पानी यार पिलाए जा, पानी यार पिलाए जा। और एक शेर ये भी देखें कि बच्चा देख न पढ़ पाया, बच्चा देख न पढ़ पाया, उसको खास पढ़ाए जा, उसको खास पढ़ाए जा। आगे का शेर देखें कि मानव धर्म यही कहता, मानव धर्म यही कहता, सबको साथ बढ़ाए जा, सबको साथ बढ़ाए जा। अंत में मक्ति का शेर है कि इतना दर्द करो तुम भी, इतना दर्द करो तुम भी, सच की राह दिखाए जा, सच की राह दिखाए जा। मन का मेल हटाए जा, सब पर प्यार लुटाए जा, सब पर प्यार लुटाए जा। अब कुछ दोहे सब

से लगने लगे अपने ही सब लोग, दुश्मन से लगने लगे अपने ही सब लोग, नफरत के इस दौर में पनप रहा ये रोग, नफरत के इस दौर में पनप रहा ये रोग, और दुश्मन से लगने लगे अपने माई बाप, दुश्मन से लगने लगे अपने माई बाप, मात पुत्र से कह रही वृद्धापन अभिशाप, मात पुत्र से कह रही वृद्धापन अभिशाप। और एक दोहा ये भी है कि कुदरत में भी दिख रही परिवर्तन की छाप, कुदरत में भी दिख रही परिवर्तन की छाप, और धीरे धीरे बढ़ रहा इस धरती का ताप, धीरे धीरे बढ़ रहा इस धरती का ताप। और एक दोहा ये भी है कि संस्कार जिसके भले, संस्कार जिसके भले माने मानव धर्म, संस्कार जिसके भले माने मानव धर्म, मानवता की बात कर करते अच्छे कर्म, मानवता की बात कर करते अच्छे कर्म। चौकड़िया है।

प्यासे फिर रहे पंछी देखो प्यासे फिर रहे व्याकुल राम।

अभी आप सुन रहे थे हिंदी महकमे विनोद कुमार वर्मा से उनका काव्य पाठ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर, जो आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज 5 जून है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में पूरे विश्व में इसे मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति वैश्विक रूप से सभी को जागरूक करना है और पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। और 2026 की विश्व पर्यावरण दिवस पर थीम है क्लाइमेट एक्शन यानी जलवायु परिवर्तन। दोस्तों, लगातार जल स्तर कम हो रहा है और लगातार पर्यावरण दूषित हो रहा है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और आज से ही संकल्प लें कि अपने जीवन में धीरे धीरे पौधे रोपित करते रहेंगे और एक अच्छा पर्यावरण और अच्छा वातावरण बनाएंगे, क्योंकि ये हम सब की जिम्मेदारी है। आइए फिल्म संगीत में ये पहला गीत हम आपको

श्रोताओं, पर्यावरण से जुड़ा हुआ ये बहुत ही खूबसूरत गाना आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल भूपेंद्र सिंह की आवाज में। एक बार फिर इस फिल्म का गाना था और इसमें रघुनाथ सेठ गीतकार थे, संगीतकार विनोद पांडे। फिल्म संगीत कार्यक्रम जारी रहेगा, हम आकाशवाणी संदेश आपको सुनाते हैं।

श्रोताओं, आज हम चर्चा कर रहे हैं पर्यावरण जागरूकता दिवस पर। श्रोताओं, हम सभी को ये संकल्प लेना होगा कि पर्यावरण संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक की जिम्मेदारी कहें तो ये उचित नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भी इस संदर्भ में जागरूकता भरे हो रहे हैं। यूनेप द्वारा घोषित इस वर्ष के मुख्य वैश्विक समारोह की मेजबानी अजरबैजान बाकू द्वारा की जा रही है। हम स्थानीय आयोजन भी कर सकते हैं और कार्यक्रम हो रहे हैं मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस पर जन जागरूकता भरी रैलियां और कार्यक्रम आयोजित आज किए जा रहे हैं। आइए हम पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम में शामिल होकर अपना नैतिक कर्तव्य निभा सकते हैं। और आइए एक और गीत आपको सुनवाते हैं।

0: श्रोताओ, लता मंगेशकर की आवाज में जॉनी आई लव यू स्विम का गाना हम आपको सुना रहे थे और इस गाने में गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार राजेश रोशन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से फिल्म संगीत। हम रुकते हैं एक संदेश के लिए।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: श्रोतो, पर्यावरण जागरूकता हेतु लगातार सरकार द्वारा प्रयास हो रहे हैं। अब हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तेज गर्मी और कभी कभी किसी तरह की बारिश भी होती तो लगातार तेज हो जाती है, तो उस संदर्भ में भी हम सबका ये दायित्व है कि हम पर्यावरण संतुलन के लिए अपने भी प्रयास करते रहे। आइए दोस्तों, फिल्म संगीत को आगे बढ़ाते हुए एक और गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे शगुन फिल्म का ये गीत। संगीतकार थे खयाम। श्रोताओं, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह!
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: और कास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी, 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: श्रोताओं, इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हम लगातार अपने जो बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, उन्हें भी ये शिक्षा देंगे कि पर्यावरण संरक्षण कितना जरूरी है। हम देख रहे हैं जिस तरह से प्लास्टिक प्रदूषण फैल रहा है, साथ ही साथ और भी तमाम प्रदूषण हमारे लिए कितने घातक हैं। हजारों सालों तक प्लास्टिक जमीन के अंदर भी अगर ये दबा रहे तब भी ये नष्ट नहीं होता। खासकर ये जो प्लास्टिक की पन्नी है, पॉलीथीन है, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक, ये भी हमारे पर्यावरण और हमारे जीवन के लिए बहुत घातक है। इसलिए आइए आज ही संकल्प लें कि हम पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएंगे। आइए एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान में जुड़े और आज ही एक पौधा रोपित करें और उसकी सुरक्षा के लिए रोज हम उसकी देखभाल करें। अगर हम 30 मिनट भी प्रतिदिन पर्यावरण संरक्षण में अपना ये योगदान देते हैं तो जीवन में ये मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा काम कर पाते हैं। फिल्म संगीत को आगे बढ़ाएं और एक और गाना हम आपको सुनवाते हैं जोश फिल्म से। आशा भोसले की आवाज है, अमित खन्ना का गीत, संगीतकार बप्पी लहरी।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के समापन में दूसरा आदमी, इस फिल्म का गाना हम आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में।

लता मंगेशकर किशोर कुमार के गाए हुए दूसरा आदमी फिल्म के इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है समाचार प्रभात, कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से।

0: वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है? पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमरीका का दबाव भारत रूस संबंध

बंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे।

0: प्रयास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरूआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

0: सीएस सेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
1: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में

0: ने बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
1: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे, लगभग 21,800 करोड़ रूपये की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ, नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and Constitutional Expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says U.S. pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch-rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
3: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing connectivity between Gujarat and Maharashtra. The Prime Minister will also lay the foundation stone for the 4-laning of critical sections of National Highway 56 to improve access to tribal regions and Statue of Unity. Catering to public welfare, the Prime Minister will also inaugurate a modern 200-bedded ESP.

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत में उस्ताद अमजद अली खां से राग मियां की तोड़ी में सरोद बादन। और इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर जी आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए लोक रंग। आज कलाकार हैं गफूर खान और बबली शमा। सबसे पहले ये युगल लोक शैलीबद्ध लोक रचना। कलाकार हैं गफूर खान और बबली शमा।

0: युगल लोक रचना भी आप सुन रहे थे गफूर खान और बबी शमा की आवाजों में। आप सुन रहे हैं लोक रंग और आज हमारे कलाकार हैं गफूर खान और बबी शमा। अब लेते हैं ये अंतराल।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
0: लोकरंग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गफूर खान की आवाज में ये चौकड़िया।

0: आप सुन रहे थे चौकड़िया कलाकार गफूर खान। आकाशवाणी छतरपुर से आप सुन रहे हैं लोक रंग और आज कलाकार हैं गफूर खान और बबली शमा। हम रुकते हैं एक अंतराल के लिए।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

जिप्सम जी एक युगल लोक रचना कलाकार हैं गफूर खान और बबली शमा। संगत कर रहे हैं बांसुरी पर मनोज कुमार, ढोलक पर मुन्ना विश्वकर्मा, बैंजो पर हैं राजाराम विश्वकर्मा। आइए सुनते हैं ये युगल लोक रचना।

इसलिए अभी आप सुन रहे थे गफूर खान और बबली शमा की आवाजों में। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से लोक रंग। आज हमारे कलाकार हैं गफूर खान और बबली शमा। हम रुकते हैं एक संदेश के लिए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से लोक रंग और आज हमारे कलाकार हैं गफूर खान और बबली शमा। विजी आप सुनते हैं एक दादरा स्वर गफूर खान का।

इसे युगल लोक रचना के साथ ही लोक रंग कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। कलाकार थे गफूर खान और बबली शमा। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्मी कव्वालियां। सबसे पहले भूला भटका फिल्म की ये कव्वाली आशा भोसले और अजीज नाजा व साथियों के स्वर में।

अभी ये दिल जवान है। अभी आप ये सुन रहे थे भूला भटका फिल्म की कव्वाली आशा भोसले, अजीज नाजा और साथियों के स्वर में। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से फिल्मी कव्वालियों का ये कार्यक्रम। अब यहाँ आकाशवाणी संदेश की ओर हम ले चलते हैं आपको।

अभी आप सुन रहे थे अलीबाबा फिल्म की ये कव्वाली, इसमें आवाजें आशा भोंसले, अजीज नाजा व साथी। लीजिए अब सुनते हैं एक और कव्वाली।

खम सब तोड़ दूंगी, नखरानी तोड़ दूंगी, सर तेरा फोड़ दूंगी, गर्दन मरोड़ दूंगी, टुकड़े टुकड़े कर छोड़ूंगी। अरे लेके टक

0: टक्कर ओ टक्कर।
1: अभी आप सुन रही थी यारी जिंदाबाद फिल्म का ये गीत आशा भोसले उषा मंगेशकर की आवाज में, ये फिल्मी कव्वाली। लीजिए आप सुनते हैं एक और कव्वाली मेरी हमदम मेरे दोस्त फिल्म से। इसमें आवाज आशा भोसले और साथियों की है, माफ कीजिए, इसमें आवाज है लता मंगेशकर और साथियों की।

इसी कव्वाली के साथ ही फिल्मी कव्वालियों का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को ही जिले की चिट्ठी कुछ पलों में हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करते हैं।

भोपाल से प्रस्तुत है खंडवा जिले की चिट्ठी। आलेख हीरा लाल लोंगरे, वाचन स्वर दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने निवाड़ांचल को बड़ी सौगात देते हुए 4,415 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत एनएच 347 पी के हिवारखेड़ी रोशनी आशापुर रूधी मार्ग को टू लेन और देशगांव जुलवानिया मार्ग को फोर लेन में अपग्रेड किया जाएगा। परियोजना से खंडवा बैतूल खरगोन बड़वानी जिलों में यातायात सुगम होगा, क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति भी मिलेगी। प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने हाल ही में वनग्राम आवलिया में वन विभाग और एलएनटी कंपनी के संयुक्त तत्वाधान में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व कालीभीत परिक्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी वीरेंद्र सिंह अचालिया ने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि वन क्षेत्रों में रहने वाले अधिक से अधिक युवा कार्यक्रम का लाभ उठाएं। युवा कार्यक्रम के तहत वन क्षेत्रों के 18 से 35 साल के युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। डॉ. शाह ने कहा कि सरकार युवाओं को और स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत खंडवा जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। नगर निगम खंडवा ने 20,490 कंटूर ट्रेंच बनाकर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि जिले ने ग्रामीण क्षेत्रों में 4,22,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण कर देश में पांचवा स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानून को आज खंडवा जिले के दौरे पर रहेंगे। वे खालवा और खंडवा में मानवाधिकार से जुड़े मामलों की समीक्षा करेंगे तथा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। खंडवा में आयोजित जिला विकास समन्वय तथा निगरानी समिति दिशा की बैठक में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसानों को उर्वरक वितरण के ई टोकन सिस्टम की जानकारी देने और पेयजल योजनाओं के बेहतर संचालन पर विशेष जोर दिया है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने गत दिनों खालवा विकासखंड के ग्राम रोशनी में 1,36,00,000 रुपए लागत के इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का लोकार्पण किया। इस परियोजना से 160 आदिवासी महिलाओं को मछली पालन, पशुपालन, बतख पालन और फल सब्जी उत्पादन के माध्यम से रोजगार मिलेगा। कृषि विभाग ने किसानों से खरीफ फसलों की बुआई के लिए प्रमाणित और गुणवत्ता युक्त बीजों का उपयोग करने की अपील की है। विभाग द्वारा खाद और बीज की गुणवत्ता की लगातार निगरानी की जा रही है और नमूनों की जांच भी कराई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जिले भर में मनाया जाएगा। जिला मुख्यालय सहित सभी विकासखंडों और नगरीय निकायों में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। खंडवा में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस कंट्रोल रूम में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस

अधीक्षक अगम जैन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारेगण की उपस्थिति में 60 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रथम बैच को भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, आधुनिक तकनीकों के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण जिले के सभी अधिकारी कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रदान किया जाएगा। परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत आयोजित कार्यशाला में किसानों को जैविक प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य सुधार और कृषि आधारित उद्यमिता की जानकारी दी गई है। वहीं श्रम विभाग ने असंगठित श्रमिकों से 13 जून तक अनिवार्य रूप से ई केवाईसी पूरी कराने की अपील की है।

0: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीणों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत नगर निगम द्वारा झीलोद्यान और नमो वन क्षेत्र में विशेष वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा तैयार सीड बॉल के उपयोग की भी तैयारी की जा रही है। मछलियों के प्रजनन काल को देखते हुए मध्य प्रदेश में 16 जून से 15 अगस्त तक नदियों और उनसे जुड़े जलाशयों में मत्स्या खेत पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आपने सुनी खंडवा जिले की चिट्ठी, आलेख हीरालाल लोंगरे का, वाचिका दीपा सिंह। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा था। कृपया
2: जी, आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है प्रवक्ता एवं प्रस्तुतकर्ता महेश शर्मा जी की आवाज में गांधी चर्चा का पांचवा भाग।

गांधी चर्चा में बापूजी की आत्मकथा से आज का प्रसंग है दुखद प्रसंग। हाई स्कूल में मेरे थोड़े से विश्वास पात्र मित्र थे। कहा जा सकता है कि ऐसी मित्रता रखने वाले दो मित्र अलग अलग समय में रहे। एक का संबंध लंबे समय तक नहीं टिका, यद्यपि मैंने उस मित्र को छोड़ा नहीं था। मैंने दूसरे की सोहबत की, इसलिए पहले ने मुझे छोड़ दिया। दूसरी सोहबत मेरे जीवन का एक दुखद प्रकरण है। यह सोहबत बहुत वर्षों तक रही। इस सोहबत को निभाने में मेरी दृष्टि सुधारक की थी। मैं देख सका था कि उसमें कई दोष हैं, पर मैंने उन्हें वफादार मान लिया था। मेरी माताजी, मेरे जेठे भाई और मेरी धर्म पत्नी तीनों को यह सोबत कड़वी लगती थी। पत्नी की चेतावनी को तो मैं अभिमानी पति क्यों मानने लगा। माता की आज्ञा का उल्लंघन मैं करता ही न था। बड़े भाई की बात मैं हमेशा सुनता था, पर उन्हें मैंने यह कहकर शांत किया, उसके जो दोष आप बताते हैं उन्हें मैं जानता हूं, उसके गुण तो आप जानते ही नहीं। वह मुझे गलत रास्ते नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसके साथ मेरा संबंध उसे सुधारने के लिए ही है। मुझे यह विश्वास है कि अगर वह सुधर जाए तो बहुत अच्छा आदमी निकलेगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे विषय में निर्भर रहें। मैं नहीं मानता कि मेरी इस बात से उन्हें संतोष हुआ, पर उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे मेरे रास्ते जाने दिया। बाद में मैं देख सका कि मेरा अनुमान ठीक नहीं था। सुधार करने के लिए भी मनुष्य को गहरे पानी में नहीं बैठना चाहिए। जिसे सुधारना है उसके साथ मित्रता नहीं हो सकती। मित्रता में अद्वैत भाव होता है। मेरी राय है कि घनिष्ठ मित्रता अनिष्ट है, क्योंकि मनुष्य दोषों को जल्दी ग्रहण करता है। गुण ग्रहण करने के लिए प्रयास की आवश्यकता है। जो आत्मा की ईश्वर की मित्रता चाहता है उसे एकाकी रहना चाहिए, अथवा समूचे संसार के साथ मित्रता रखनी चाहिए। मेरा अयोग्य घनिष्ठ मित्रता बढ़ाने का मेरा प्रयोग निष्फल रहा।

जिन दिनों मैं एक मित्र के संपर्क में आया उन दिनों राजकूट में सुधार पंथ का जोर था। मुझे इन मित्र ने बताया कि कई हिंदू शिक्षक छिपे छिपे मांसाहार और मद्यपान करते हैं। उन्होंने राजकोट के दूसरे प्रसिद्ध गृहस्थों के नाम भी दिए। मेरे सामने हाईस्कूल में कुछ विद्यार्थियों के नाम भी आए। मुझे तो आश्चर्य भी हुआ और दुख भी। अपने भाई की और इनकी मित्रता की तुलना में मैं बहुत दुबला था। उनके शरीर अधिक गठीले थे, उनका शरीर बल मुझसे कहीं ज्यादा था। वे हिम्मतवर थे। इन मित्र के पराक्रम मुझे मुग्ध कर देते थे। वे खूब लंबा और ऊंचा कूदा करते थे। मुझमें दौड़ने कूदने की शक्ति नहीं के बराबर थी। मैं सोचा करता था कि मैं भी इन मित्र की तरह बलवान बन जाऊं तो कितना अच्छा हो। इसके अलावा मैं बहुत डरपोक था। चोर, भूत, सांप आदि के डर से घिरा रहता था। ये डर मुझे बहुत हैरान भी करते थे। रात कहीं अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी। अंधेरे में तो कहीं जाता ही न था। दिए के बिना सोना लगभग असंभव था। कहीं इधर से भूत ना जाए, कहीं उधर से चोर ना आ जाए, तीसरी जगह से सांप ना निकल आए। इसलिए बत्ती की जरूरत तो रहती ही थी। पास में सोई हुई और अब कुछ सयानी बनी हुई पत्नी से भी अपने इस डर की बात मैं कैसे करता। मैं समझ चुका था कि वह मुझसे ज्यादा हिम्मत वाली है और इसलिए मैं शर्माता था। सांप आदि से डरना तो वह जानती ही न थी। अंधेरे में वह अकेली चली जाती थी। मेरे ये मित्र मेरी इन कमजोरियों को जानते थे। मुझसे कहा करते थे कि वे जिंदा सांपों को भी हाथ से पकड़ लेते हैं। चोर से वे कभी नहीं डरते, भूत को मानते ही नहीं। उन्होंने मुझे जचाया कि यह सारा प्रताप मांसाहार का है। मैं पिघला। मैं यह मानने लगा कि मांसाहार अच्छी चीज है, उससे मैं बलवान और साहसी बनूंगा। समूचा देश मांसाहार करे तो अंग्रेजों को हराया जा सकता है। मांसाहार शुरू करने का एक दिन निश्चित हुआ। मैं माता पिता का परम भक्त था। मैं मानता था कि वे मेरे मांसाहार की बात जानेंगे तो बिना मौत के उनकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। जाने अनजाने में सत्य का सेवक तो था ही। मैं ऐसा नहीं कह सकता था कि उस समय मुझे यह ज्ञान न था कि मांसाहार करने में माता पिता को धोखा देना होगा। ऐसी हालत में मांसाहार करने का मेरा निश्चय मेरे लिए बहुत गंभीर और भयंकर बात थी। निश्चित दिन आया। अपनी स्थिति का संपूर्ण वर्णन करना मेरे लिए कठिन है। एक तरफ सुधार का उत्साह था, जीवन में महत्व का परिवर्तन करने का कौतूहल था। मुझे याद नहीं पड़ता कि इसमें मुख्य वस्तु क्या थी। हम नदी की तरफ एकांत की खोज में चले। दूर जाकर ऐसा कोना खोजा जहां कोई देख न सके, और वहां मैंने कभी न देखी हुई वस्तु मांस देखी। साथ में भटियार खाने की डबल रोटी थी। दोनों में से एक भी चीज मुझे भाती नहीं थी। मांस चमड़े जैसा लगता था। खाना असंभव हो गया। मुझे कह होने लगी, खाना छोड़ देना पड़ा। मेरी वह रात बहुत बुरी बीती। नींद नहीं आई। सपने में ऐसा भास होता था मानो शरीर के अंदर बकरा जिंदा हो और रो रहा हो। माता पिता को धोखा न देने के शुभ विचार से मैंने मांसाहार छोड़ा, पर वह मित्रता नहीं छोड़ी। मैं मित्र को सुधारने चला था पर खुद ही गिरा, और गिरावट का मुझे होश तक न रहा। अभी आप बापूजी की आत्मकथा से दुखद प्रसंग का कथानक सुन रहे थे। व्रतों के बिना चरित्र का विकास नहीं होता। मेरी ऐसी मान्यता है, जैसे जहाज के लिए लंगर है वैसे ही मनुष्य के लिए व्रत है। और जैसे लंगर विहीन जहाज इधर उधर डोलता हुआ अंत में चट्टानों से टकराकर टूट जाता है, व्रतों से रहित मनुष्य की दशा भी वैसी ही होती है।

गीता की भक्ति कोई बावलापन नहीं है, अंधश्रद्धा भी नहीं है। गीता में बताई हुई भक्ति का बाहरी चेष्टाओं या क्रियाओं के साथ बहुत ही कम संबंध है। माला, तिलक, अर्ध्य आदि साधनों का भक्त प्रयोग भले ही करे, परंतु ये भक्ति के लक्षण नहीं है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो करुणा का भंडार है, जो अहम और ममता से मुक्त है, जिसके लिए सुख दुख गर्मी सर्दी समान है, जो क्षमतावान है, जो सदा संतुष्ट रहता है, जिसके निश्चय कभी बदलते नहीं, जिसने अपना मन और बुद्धि ईश्वर को अर्पण कर दिए हैं, जिससे लोग त्रस्त नहीं होते, जो लोगों से डरता नहीं, जो हर्ष शोक भय आदि से मुक्त है, जो पवित्र है, जो कार्यदक्ष होते हुए भी तटस्थ है, जो शुभ और अशुभ का त्याग करने वाला है, जो शत्रु और मित्र दोनों में समान भाव रखता है, जिसकी दृष्टि में मान और अपमान समान है, जो प्रशंसा से फूलता नहीं और निंदा से खिन्न नहीं होता, जो मौन धारण किए है, जिसे एकांत प्रिय है और जिसकी बुद्धि स्थिर है, वही भक्त है।

इसी के साथ ही आज की गांधी चर्चा अब संपन्न हुई। प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता महेश शर्मा।

0: अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा का पांचवा भाग, प्रवक्ता एवं प्रस्तुतकर्ता महेश शर्मा। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए गैर फिल्मी भजन। सबसे पहले लखवीर सिंह लखा व साथियों के स्वर में माता रानी का ये भजन हम आपको सुनवा रहे हैं इस अंतराल के पश्चात।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
0: लीजिए सुनिए लखवीर सिंह लखा व साथियों के स्वर में ये भजन।

लखवीर सिंह लखा और साथियों के स्वर में ये भजन आप सुन रहे थे। लीजिए सुनिए ये एक और भजन लता मंगेशकर के स्वर में।

इसी के साथ ही गैर फिल्मी भजनों का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं आपकी पसंद लेकर मैं हाजिर हूँ, आपका दोस्त राजेंद्र अहिरवार। सभी श्रोताओं का स्वागत है इस कार्यक्रम में और मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। श्रोताओं आप सभी ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी aircharpur1976@gmail.com aircharpur1976@gmail.com आप सभी इस पे मेल करके अपनी अपनी फरमाइशें सुन सकते हैं। ये पहला गाना आप सभी की फरमाइश पर दिल है कि मानता नहीं, इसमें आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की, फैज अनवर के बोल हैं, संगीतकार नदीम शुभन और खत आप सभी की जो मेल आप सभी ने किए हैं, हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद बक्कार, फरीदी इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी बिट्टू भैया, साजदरानी और हिना कौसर। और इसी गीत में ये मेल मिला हुआ है नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी, जोगेश कुमार, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, तुलसी, निषाद, दिशा गोस्वामी का, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवी जस्सी, सीता और गीता। और इसी गीत में ये मेल मिला हुआ है नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत, लखनलाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, जाजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और पोत्री गुरनोट सिंह, शुभदीप सिंह, लोहगढ़ ठाकुरा वाला जिला फिरोजपुर पंजाब से हमें मेल करते हैं, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। इसी गीत में ये मेल है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, ये मेल हमें मिला हुआ है नलेश्वर नगर नरमेल महाराष्ट्र से पीएस नुहाकर, निर्मला नुहाकर, विशाल और सोपान ताइडे, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्जे और आशीष मोरेकर। इसी गीत में ये मेल हमें प्राप्त हुआ है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से रोहित जयमंत्री वेलदार, फातिमा सोनम और आसमा वली वेलदार का। एक और मेल हमें मिला हुआ है दूल्हापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, कालच, काजल, मानवी, लक्ष्य और इनके परिवार वाले, भाटापारा दतरेंगी छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखीलाल वर्मा मेल करते हैं, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्वन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। इसी गीत को पसंद करते हैं महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहां, तलहत नाज, रिफत नाज, नुजहत नाज और

राजिया शाहीन। इसी गीत में मेल है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी। आप हैं मुन्ना भाई सोनकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू हकीकतपुरा मऊ से। अपनी फरमाइश के साथ जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल। और इसी गीत में जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो। एक और मेल हमें मिला हुआ है, लिख भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने। अक्टोहा लवकुश नगर छतरपुर से सुरेश कुमार साहू, कमलेश कुमार, देवेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, रवि कुमार, धर्मेंद्र, सोनू, राघवेंद्र, भावना, यश और इनके साथी। इसी गीत में संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया, बागपत यूपी से। एक और मेल मिला हुआ है हमारे इन मित्रों का, लिख भेजा है तालगांव भंडीर दतिया से मेहरबान सिंह नागल, संतोष कुमार और इनके साथ हैं गुड़िया छोटू नागल। गांव नवां शहर पंजाब से लिख भेजा है गगनदीप थांदी ने, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम और वामिका वाणी थांदी ने। और ये मेल हमें मिला हुआ है बसारी दरवाजा छतरपुर से राकेश वर्मा और कपूर सिंह घोष का। सरगुजा मेनपाट से रुबीना थापा, रेशमा थापा, डब्लू थापा, फातिमा और आदिबा थापा। इसी गीत को पसंद करते हैं लोहेड़ी महोबा से जयपाल यादव, इंद्रपाल राघवेंद्र, अरविंद्र, रागनी रिया, दिव्यांशी और रेणुका यादव। यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से और विनोद खड़से। एक और मेल है गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। आइए हम आप सबको सुना रहे हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर मिस्टर इंडिया इस फिल्म से गीत है। किशोर कुमार की आवाजें, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और आप सभी के फेसबुक पर जो कमेंट्स हैं उनको भी हम लेते हैं। श्रोताओं, आप आकाशवाणी छतरपुर के फेसबुक पेज आकाशवाणी छतरपुर भी लाइक और इसको फॉलो कर लीजिए ताकि आप आकाशवाणी के जो भी कार्यक्रम है उनकी जानकारी से जुड़ पाए। ये हमें कमेंट्स मिला हुआ है फेसबुक से। ऊपरकोट मोहल्ला चौकनोटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, सर नवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहान और जाना बान और इनके परिवार वाले। इसी गीत में ये हमें पत्र मिला हुआ है। विरखेरा जिला हमीरपुर से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु हिमांशु, निवेदिता पाल का आप हैं। राम चबूतरा कालपी से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिश्ता, मोहम्मद नसीम, पलक लुबना और यश मंसूरी। और इसी गीत में अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से चंद्रेश गौहर और श्रीमती वंदना गौहर। और ये मेल है लोकेंद्र सिंह गुर्जर, महिपाल सिंह, यशपाल सिंह, जयपाल सिंह गुर्जर, ग्राम बिडोरा, सिंहरा, दतिया से। और इसी गीत में ग्राम पोस्ट गोना कुसमार, थाना सौजना, तहसील मैरोनी, जिला ललितपुर से कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी रामदेवी, ब्रजेश कुमारी, अखिलेश, लखनलाल चाहना, आकाश रानी, परी सूरभी, पायल और इनके मम्मी पापा। इसी गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। ये हमें फेसबुक पर इनकी फरमाइश मिली हुई है। ग्राम बमना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल मंजू, वंदना प्रियल और दिव्यांश विश्वकर्मा। और यहीं से साधु बाबा वीरेंद्र सिंह तोमर, संजय दीपक, सोनू तोमर। और एक और ये मेल मिला हुआ है दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर और अंशराज सिंह गुर्जर का, ग्राम खकल तहसील कोच जिला जालौन से। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीतरानी जाजोरिया, गगनदीप आरजू, गुड्डू जाजोरिया। एक और ये फरमाइश हम तक आई हुई है भाऊखेड़ी जिला सीहोर से राजेश बनासिया। इसी गीत में ये मेल है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामरे, करुणा मीना अश्वनी और विपुल कामरे का। और इसी गीत में कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द और राहुल। और इसी गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। ये मेल हमें प्राप्त हुआ है, लिख भेजा है ग्राम ढकिया किरसपुर पीलीभीत यूपी से ए.के. राजपूत, अनिल कुमार, कैलाश चंद्र, रामेश्वर दयाल, सत्यपाल, भगवान दास, रवि कुमार, श्रीपाल, मनोज कुमार सक्सेना, छोटी गुड़िया और चंचल कुमारी। और इसी गीत में पारवाला बदायूं से सोपाली सिंह राजपूत, महिपाल सिंह, शिवम कुमार, रिंकू वर्मा, निर्मल वर्मा और रानी वर्मा। और ये हमें फरमाइश मिली हुई है, लिख भेजा है राजस्थान से राजू टूटेजा, खुर्शीद, उर्मिला टूटेजा, गुड्डू, जीनू, मनु, शिवू और इनके परिवार वाले। इसी गीत में ये फरमाइश हम तक लिख भेजिए हमारे इन श्रोताओं ने। मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुनरकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। डालडा जी चौबे, डालडी जी चौबे, रिमझिम और सक्षम चौबे, सागर, लखनऊ, मध्य प्रदेश से। और इसी गीत में अपनी फरमाइश के साथ आप हैं, लिख भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने।

हाँ, ये मेल हमें मिला हुआ है। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष, विश्वकर्मा, और इसी गीत में अपनी फरमाइश से जुड़े हुए हैं पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, और इसी गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। ये फरमाइश हम तक लिख भेजी है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुता सु, अर्णव और सत्यम आनंद, बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, इसी गीत को पसंद किया है गांव कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से रेवड़ भाविष्टे अनिष्ठा और राहुल भाविष्टे, इसी गीत को पसंद करते हैं बन बगेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, अनिल सारवा, नीलेश, अंजलि, रोशनी सारवा, उरेटा डोंडी लोहारा जिला बालोद से देवशंकर तामुरिया, प्रभादेवी तामुरिया, अजय तुषार और पूजा तामुरिया, इसी गीत में उत्तम कुमार जंघेर, रुक्मणी साहिल, भारती बघेल और इनके परिवार वाले लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से लिख भेजते हैं, और इसी गीत में अपनी फरमाइश के साथ आप हैं हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम से जगदीश धाकर, नायमा, रंजूबाई, युवराज सिंह और शिवांगी, इसी गीत में वीरपुर पोस्ट बिलसर तहसील अलीगंज एटा से विपिन कुमार शाह के सपना, रविन्द्र, राजेश, रमेश चंद्र, राजीव, प्रदीप, रंजीत, सिद्धार्थ, सुजाता और इनके मम्मी पापा, और इसी गीत में मझगुआ कला अम्बरौनिया जिला छतरपुर से लखनलाल यादव, नेहा, अनन्या, अनुष्का, अभिमन्यु यादव, इसी गीत में मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ यूपी से दिलशाद हुसैन और फातिमा सोगरा, अपनी फरमाइश के साथ ये है मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, रचना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी और नंदिनी कुमारी, और इसी गीत में लिख भेजा है आदर्श नगर मलूर पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, निवान, सौरभ और मेहंदी शर्मा ने अपनी ये फरमाइश हम तक लिख भेजी है। बुलढाणा महाराज से वासुदेव बोधबड़े, अनीता और रमेश राव बोधबड़े, पलेरा टीकमगढ़ से राजेश कुमार अकेला, यशोदा यादव, राजीव यादव, संजीव यादव, और इसी गीत में होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु और इनके परिवार वाले, इसी गीत में अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशास्ता, बिहानस और रिहान, और ये मेल है बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, वाखीर सविता माखीजा, स्वाति और इनके साथ है संध्या, इसी गीत में एक और फरमाइश हम तक आई है रघुनाथपुरा राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी की, इसी गीत को पसंद करते हैं हमारे ये मित्र फाजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, गीता और टिवांशी खेड़ा, अपने फरमाइश के साथ ग्राम लसूरिया पाता तहसील नरसिंहगढ़ राजगढ़ से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल और कृतिका, रमेश चंद्र डांगी अपनी फरमाइश लिखते हैं, और ये मेल है भगवानी सेन, संतोषी चिराग और गजेंद्र सेन का छत्तीसगढ़ भूर सुधा से अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं, और मृतला महोबा से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह और गुरु महाराज, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, इसी गीत में बीण शहर महाराज से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी और जयश्री मेहित्रे अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजती है, मारहटा नरवाजा एटा से अनम अब्बासी, सुहेल, यशब, शहनाज और रसीद वारसी, हम आप सबको सुना रहे हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे मिस्टर इंडिया फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं बाजीगर फिल्म का गीत विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की आवाजों में, अनु मलिक का संगीत, गीतकार गौहर कानपुरी। आप सभी के मेल हम तक प्राप्त हो रहे हैं। हमारा मेल आईडी आप सभी जानते हैं AIR76 1976@gmail.com। आप सभी अभी भी अपने ईमेल भेज सकते हैं। और ये मेल मिला हुआ है ग्राम बरगुआ तहसील माधवगढ़ जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हन्ना राम पुरबिया, वीर सिंह पुरबिया, संजीव पुरबिया, राहुल पुरबिया, मेहरबान सिंह नागल और इनके परिवार वाले। और एक और मेल हमें मिला हुआ है सत्येंद्र कुमार चंसोलिया आदर्श अलौकिक आराध्या चंसोलिया का पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से, जयमंत्री केवट, अंजलि रुद्राणी और कृष्णा केवट अनूपपुर मध्य प्रदेश से अपनी फरमाइश के साथ जुड़ी हुई हैं। और इसी गीत में ये हमारे मित्र अपनी फरमाइश भेजते हैं जलालाबाद वैश्य से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा, और गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश

शर्मा और राहुल शर्मा, और इस गीत में प्रदीप ताम्रकार, राधा ताम्रकार, प्रज्ञा ताम्रकार, मोती प्रतीक और पारस ताम्रकार हमें लिख भेजते हैं पटी राधा मुंसी, और इस गीत को परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, प्रज्ञेश, प्रीतेश और इनके साथी सुन रहे हैं। अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है हमारे इन मित्रों ने। आप हैं हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के और उत्तम, इस गीत में अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। लिख भेजा है ग्राम बछरे थाना नाराहट जिला ललितपुर से दिलीप कुमार नामदेव, राधा और रानी नामदेव, ग्राम सिद्धवाहा थाना महरौनी तहसील महरौनी जिला ललितपुर से पप्पू नामदेव, ममता, विनीता और राजकुमार नामदेव, ग्राम बधोरा, ग्राम भदोरा गुढ़ा तहसील महरौनी जिला ललितपुर से ब्रजकिशोर नामदेव, सुखवती, अमित कुमार, हेमलता, शिवम नामदेव भी मेल कर रहे हैं। और इसी गीत में गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान और डांगरी से बाबू राम जयपाल और इनके परिवार वाले, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा और इनके परिवार वाले, और इसी गीत में अपनी फरमाइश के साथ आदर्श कुमार भेज रहे हैं, ग्राम पोस्ट बहिरी तहसील नरेनी जनपद बांदा से लिख रहे हैं, और इसी गीत में रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इनके परिवार वाले, और इसी गीत को पसंद करते हैं, भाटीपुरा महोबा से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता और इनके परिवार वाले, और इसी गीत में अपनी फरमाइश के साथ लिखते हैं हमारे ये मित्र हैं। हाँ, ये मेल मिला हुआ है, लिख भेजा है हमारे इन साथियों ने, ये मेल है सोहन सिंह राजपूत का, मामना जिला महोबा से, ग्राम बनेका तहसील बांदा से हमें लिख भेजते हैं महेंद्र सेन और इनके परिवार वाले और इनके साथी। हम आपको सबको सुनवा रहे हैं अपनी पसंद पर, आपकी पसंद पर ये गाना।

इसी गीत के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र हरवार को। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 11 बजने को है। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी भोपाल से होगा।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आज का कार्यक्रम छाया पाठक की प्रस्तुति है।
1: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज आपके साथ हूं मैं छाया पाठक। श्रोताओं, हमसे बातचीत करने के लिए हमारा फोन नंबर है 2660902, भोपाल का एसटीडी कोड 0755। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से, और कार्यक्रम का प्रसारण होता है अगले दिन 11 से 12 बजे के बीच। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। आइए बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से।
2: हेलो।
1: हेलो
2: जी मैडम, नमस्ते।
1: नमस्ते,
2: समद सिंह बात कर रहा हूँ, एमपी धार से।
1: समद सिंह,
2: सौमत सिंह जी।
1: अच्छा, एक आध मत नहीं है, सीधे सौमत है।
2: सौमत है मैडम, बिल्कुल एकदम सही बात कही आपने, सीधे सौमत।
1: एक आध मत नहीं है, सीधे सीधे सौमत है। चलिए, आपके नाम के पीछे कुछ आपने कभी पूछा नहीं कि भाई ऐसा नाम क्यों रखा?
2: अब कभी सोचा तो नहीं, मैं मतलब यूं जनरल तो ख्याल आया, लेकिन कभी घर वालों से पूछा नहीं।
1: भाई इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है मेरे हिसाब से।
2: हाँ नहीं, बात तो आपकी बिल्कुल सही है।
1: सीधे ये मत से मतलब नहीं है, विचार से सौ मत।
2: नहीं, नहीं, मैं समझता हूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: चलिए,
2: मेरी किनसे बात हो रही है?
1: मैं छाया पाठक बोल रही हूँ।
2: अच्छा अच्छा जी, चलिए, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके।
1: जी, आज कार्यक्रम का नाम है फोन करें गीत सुने।
2: जी बिल्कुल।
1: हाँ,
2: तो आप मुझे सुनवाइए। अभी अभी सुमन कल्याणपुर जी हमारे बीच से गई हैं, तो एक इनका गीत है रफी साहब के साथ में, मोहब्बत इसको कहते हैं, फिल्म का गीत है वो। वो गीत आप मुझे सुनवाइए। खयाम साहब ने इसका संगीत निर्देशन किया है।
1: इसका कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
2: ठहरिए होश में आलू तो चले जाइएगा।
1: अरे बहुत बढ़िया गाना आपने पसंद किया।
2: हाँ वही तो कहा मैंने, मोहब्बत इसको कहते हैं फिल्म का गीत है ये।
1: कार्यक्रम का आरंभ भी इतने अच्छे गीत से हो जाए तो फिर कार्यक्रम का मजा दुगना हो जाता है ना?
2: जी जी,
1: मोहब्बत इसको कहते हैं, ठहरिए होश में आऊं तो चले जाइएगा।
2: हाँ, ठहरिए होश में आलू तो चले जाइएगा।
1: आपने फिल्म देखी है?
2: नहीं मैडम, मैं फिल्म सुनता हूँ। मैं शायद आपको याद नहीं होगा, पहले भी आपसे बात हुई है। मैं
1: हुई है
2: ना?
1: जी जी हाँ।
2: तो मेरा संगीत का क्षेत्र है और मैं टोटली ब्लाइंड हूँ मैं।
1: जी जी जी।
2: तो हम लोग को जब कोई भी फिल्म को हमें मतलब सुनते हैं तो हम उसको बिल्कुल ऐसे हिसाब से सुनते हैं कि हम लगता है कि हम उसको देख रहे हैं,
1: देख रहे हैं, फील करते हैं उसको।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और
1: जी,
2: अब आप यूँ समझे कि म्यूजिक का तो एक अपना जादू है, क्योंकि आप दूसरे रूम में अगर बैठे हैं और अगर कोई म्यूजिक चल रहा है तो म्यूजिक खुद अपनी कहानी कह देता है कि सीन क्या चल रहा होगा।
1: पहले के गीत इसी तरह बनते थे,
2: है ना?
1: सारा, हाँ, हम महसूस करते थे, उन गीतों को समझते थे, जैसे सारी

0: और एक कहानी बयां हो जाती थी,
1: बयां हो जाती
0: हाँ,
1: थी बिल्कुल।
0: आजकल के गीतों में वो बात नहीं है।
1: हाँ वो तो है, जीता जागता संगीत का अपना जादू था जो सारा चढ़कर बोलता था हमें।
0: जी जी जी
1: तो मैं इस गीत को मेरे मेरी श्रीमती जी अनुसुईया जी, मेरे मित्र हैं ब्रजमोहन जी, और भी मेरे जो चाहने वाले हैं उन सबको मैं सुनवाऊंगा आपके माध्यम से इस गीत को।
0: बिल्कुल सुनिएगा। फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार
1: जी। नमस्कार जी। नमस्कार।

प्यास आँखों की बुझा लो तो चले जाएगा, ठहरिए हो शुभ आलो।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते, अपना नाम बताएंगे?
1: मैडम जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
0: जी आज कार्यक्रम है फोन करें गीत सुने।
1: हाँ जी बिल्कुल मैडम जी। हाँ। आज जैसे कि कार्यक्रम की जब रिकॉर्डिंग हो रही है, कल 5 जून है विश्व पर्यावरण सुरक्षा।
0: पर्यावरण सुरक्षा जी जी, उस बारे में कुछ कहेंगे?
1: बचाना है हमें। और जो पेड़ है, एक पेड़ माँ के नाम, वो अभी बारिश का समय आने वाला है, तो सभी श्रोता मित्र और देशवासियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि एक पेड़ या पौधा जो भी अपने गार्डन है आसपास वहाँ जरूर लगाएं। एक एक पढ़ कर लगाएंगे तो ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ों पेड़ लग जाएंगे, और इस पर्यावरण से जो ये ग्लोबल वार्मिंग का जो परिवर्तन आ रहा है, गर्मी ज्यादा हो रही है, दिन प्रतिदिन जो वाहन है बहुत ज्यादा हो गए, जिससे धुआं निकलता है, उससे पर्यावरण को नुकसान होता है
0: जी।
1: अगर पेड़ अधिक से अधिक रहेंगे तो उससे पर्यावरण को भी हमें बचाना है। और जगह जगह आपके पास में गार्डन है कहीं पर, तो वहाँ पर पेड़ पौधे लगाना है,
0: कहीं ना कहीं तो लगाएं पेड़। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। पेड़ पौधों के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जिनसे हम पर्यावरण बचा सकते हैं।
1: हाँ जी मैडम जी बिल्कुल जी। अभी अपन जहाँ कॉलोनी में रहते हैं, कहीं भी आज नई कॉलोनी का निर्माण होता है तो वहाँ पर गार्डन जरूर बनाया जाता है। तो आसपास जब आप घर के सामने चाहते हैं कि हमारे गार्डन हो, तो गार्डन में आपको पौधा भी लगाना है, उसकी देखरेख भी करना है। जैसे हम हमारे छोटे बच्चे का देखरेख करते हैं, जैसे उस पौधे का
0: देखभाल जरूरी होती है,
1: वो बढ़ सकता है, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, उसको सिर्फ 4-5 साल सीखने की।

0: सकता है मैडम
1: जी, चलिए
0: जी मैडम
1: आपके विचार सब तक पहुंचे होंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, कुछ श्रोता तो जागेंगे इससे। बताएं,
0: हाँ जी
1: आज
0: मैडम
1: कुछ
0: जी
1: पर्यावरण से ही संबंधित गीत सुनना चाहेंगे क्या?
0: हाँ मैडम जी, गीत है, फिल्म का नाम है, आपको थोड़ा सर्च मारना पड़ेगा, थोड़ा पुराना गाना है, गाने के फिल्म का नाम है एक बार फिर।
1: एक बार फिर
0: हाँ,
1: जी।
0: और गीत के बोल हैं, ये पौधे ये पत्ते ये फूल ये हवाएं दिल को लुभाए मन।

0: नमस्कार
1: नमस्कार
0: जी, मैं तहसील चंदवा मध्य प्रदेश से देवीदास वरिल बोल रहा हूँ।
1: देवीदास जी
0: जी जी
1: जी बताएं कुछ अपने बारे में।
0: बढ़िया है मैडम जी, मौसम बदल रहा है।
1: मौसम बदल रहा है, कुछ ठंडक हुई आपके यहाँ?
0: हुई ना मैडम जी, एक दो बार हुई है अभी।
1: कल बारिश हुई आपके यहाँ?
0: हाँ।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। और आज कौन सा गीत आप पसंद करना चाहते हैं?
0: मुझे सुनना है मैडम जी, फिल्म का नाम है सरगम।
1: सरगम का
0: जिसके बोले कोयल बोली दुनिया डोली, जो दिल की बोली।
1: जी कोयल तो गर्मियों में ज्यादा बोलती है।
0: हाँ अभी भी कोयल बोल रही है मैडम जी।
1: अच्छा अभी कोयल बोल रही है, उसी को देख करके आपने गीत सुनना चाह रहे हैं? ये वाला
0: देखकर मैंने गीत चुना है
1: जी। चलिए तो सुनवाएंगे कल आपको ये गीत। नमस्कार
0: जी।

0: हेलो जी, नमस्कार मैम। राम बाबू मालवीय, कोलार रोड, भोपाल।
1: भोपाल से ही बोल रहे हैं आप? भोपाल से बहुत कम फोन लगते हैं हमारे पास।
0: हाँ, भोपाल से लगाते कम है क्योंकि मीडियम पे कम सुनते हैं, अपने एफएम पे ज्यादा सुनते हैं ना विविध भारती।
1: हाँ, ये जरूर हो गया। पर अब जब से मोबाइल पे आने लगा है तो श्रोता
0: एफएम सेट पे, जिस दिन एफएम सेट पे मीडियम वेव भी चलने लगेगा तो बहुत ज्यादा आएंगे भोपाल से।
1: हाँ, वो तो है, पर अब मोबाइल में सुविधा उपलब्ध हो गई है तो अब कोई दिक्कत तो है नहीं, कहीं भी कैसे भी आप सुन सकते हैं।
0: वो क्या आजकल सुनते नहीं ना भोपाल वालों को, आपको याद देना।
1: तो आप किस में सुनते हैं?
0: जी, मैं ऐप के माध्यम से सुनता हूँ, रेडियो भी है मेरे पास।
1: अच्छा, रेडियो भी है आपके पास?
0: हाँ, है ना, मीडियम वेव भी सुनता हूँ उसी से।
1: चले बताएं, आज गीत कौन सा सुनेंगे?
0: इश्क फिल्म का टाइटल सॉन्ग इश्क है।
1: इश्क फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुनेंगे?
0: जी जी,
1: ठीक है। फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार
0: जी मैम, नमस्कार।

0: हेलो
1: आदरणीय दीदी सादर नमस्कार।
0: नमस्कार, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी दीदी, मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति।
0: शारदा प्रजापति जी?
1: जी शारदा प्रसाद प्रजापति।
0: जी हाँ। अच्छा जी, बताएं क्या करते हैं आप?
1: दीदी मैं घर पर रहता हूँ, आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है, और थोड़ी दृष्टिहीनता का शिकार हूँ, इसलिए घर पर रहते हुए आकाशवाणी से जुड़ा रहता हूँ।
0: तो कुछ काम तो होगा आपका, कुछ
1: नहीं नहीं
0: व्यवसाय
1: कोई
0: कोई?
1: काम नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ रेडियो सुनना हूँ।
0: अच्छा, तो घर में कौन कौन है आपके?
1: मेरे दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, और बेटे दोनों सीनियर इंजीनियर हैं और अपना काम करते रहते हैं और हमारा भरण पोषण करते हैं।
0: अच्छा, तो आपने काम से विश्राम ले लिया मतलब, है ना?
1: जी, बिल्कुल,
0: अवकाश पे चल
1: मैं
0: रहे हैं।
1: पूरी तरह से सेवानिवृत्ति का आनंद ले रहा हूँ।
0: हाँ, पूरे सेवानिवृत्ति का पूरा आनंद ले रहे हैं जी।
1: जी,
0: बताएं आज कौन सा गीत सुनेंगे?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है गीत गाता चल, जसपाल सिंह साहब ने गीत गाया है, गीत गाता चल और साथी गुनगुनाता चल।
0: टाइटल सॉन्ग
1: जी,
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो
0: नमस्ते। हाँ,
1: जी। नमस्ते मैम जी। मैं
0: नाम बताएं अपना।
1: अरविंद अग्रवाल जी,
0: अरविंद अग्रवाल,
1: श्रीनगर
0: कहाँ से?
1: जिला महोबा उत्तर प्रदेश से। जी
0: श्रीनगर से। श्रीनगर जिला महोबा। अच्छा, आप महोबा से बोल रहे हैं, यूपी से बोल रहे हैं।
1: जी
0: चलिए, वहां पे आप क्या काम करते हैं?
1: मेरी किराने की दुकान है, वहीं बैठ के आपको सुनता रहता हूँ।
0: अच्छा, और कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: बस केवल फोन इन
0: सिर्फ फोन इन, ऐसा क्यों?
1: जी, और इतना टाइम नहीं है, बच्चे भी ले लेते हैं, मोबाइल चार्ज में भी लगाना पड़ता है फिर।
0: फोन से कार्यक्रम जब हम सुनते हैं तो उसमें कुछ टाइम थोड़ी देना पड़ता है। कहीं से भी सुने, रेडियो में सुने, श्रोता इसमें
1: रेडियो में नहीं आता ना आपका, भोपाल सीधा छतरपुर रिले करता है
0: नहीं।
1: 11 बजे।
0: वो तो आपने ठीक कहा, लेकिन जब हम फोन से भी सुनते हैं उसके लिए हमें अलग से टाइम थोड़ी देना है। वो चलता रहे अपने, भले चार्जिंग पे भी लगा है।
1: नहीं वो तो बनता नहीं है, अंदर लगाए हैं चार्जिंग का। सुनते
0: अच्छा, अंदर है।
1: हैं छतरपुर वंदना है, चिंतन है, ये सुन लेते हैं।
0: वो भी तो यहाँ से आता है, सुबह आकाशवाणी
1: जी
0: भोपाल से। वंदना, चिंतन सब यहाँ से भी आता है। उसे भी कभी सुनिए,
1: जी
0: ठीक है? तो गीत आपको जब बहुत पसंद है तो जो गाना आप आज सुनना चाहें जरा गुनगुना के भी बताएं।
1: जी हमराज फिल्म का है, तुम मेरी जिंदगी में आई, जिंदगी बदल दी जी।
0: नई वाली हमराज, मेरी जिंदगी में
1: उसके बाद
0: आकर।
1: लक्ष्य खन्ना, मनीष, वो हम अमीषा पटेल।
0: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।
1: नमस्कार मैम, धन्यवाद फोन लेने के लिए।

0: हेलो, फोन करेंगे सुने।
1: नमस्कार नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी जिला कोरट छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह
1: जी मैडम, और
0: जी।
1: मैं ड्यूटी परेड में हूँ मैडम, और आपका कार्यक्रम में फोन किया हूँ। और यहाँ तो मौसम कल पानी गिरा मैडम, और यहाँ तो एकदम उमस गर्मी भी है, धूप भी है, और हवा भी चल रहा है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है मैडम। इस टाइप का मौसम बना है, और बादल भी किनारे किनारे किया है मैडम। मौसम में तो परिवर्तन हुआ है यहाँ मैडम।
0: आप कोरबा में ही रहते हैं?
1: चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी, चिरमिरी
0: अच्छा,
1: कुरासिया कॉलोनी जिला
0: चिरमिरी।
1: कोरिया छत्तीसगढ़
0: अच्छा, छत्तीसगढ़ में। तो ये क्या जिला है?
1: जी, कोरिया जिला है
0: कोरिया जिला है।
1: जी।
0: तो आपके यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती है।
1: जी मैडम, यहाँ तो गर्मी खूब पड़ी मैडम। और कल तो मेरे को लगता है कल कल शायद नौतपा भी समाप्त हुआ है। कल
0: हाँ, परसों हुए नौतपा।
1: परसों
0: कल
1: परसों परसों परसों परसों
0: जी
1: नौतपा
0: जी
1: समाप्त हुआ,
0: हाँ,
1: बहुत
0: परसों
1: गर्मी
0: नौतपा।
1: बढ़ रहा था मेरे को।
0: गर्मी बहुत थी, पर कल थोड़ी बारिश हुई है। आपके इधर भी शायद हुई होगी।
1: जी इधर हुई है,
0: उससे
1: पानी
0: उससे
1: गिरी है,
0: थोड़ी सी
1: गिरा है
0: ठंडक तो आ गई।
1: जी।
0: बताएं, आज गीत बारिश
1: फिल्म का
0: से
1: नाम है
0: संबंधित ही
1: सर,
0: सुनेंगे।
1: फिल्म का नाम है सर।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: जी, नमस्ते मैडम, मैं जगदीश चौहान पेंटर मुखर्जी नगर इंदौर से बोल रहा हूँ।
0: कार्यक्रम में स्वागत है आपका
1: मैडम।
0: हाँ, गाना सुनवाने के लिए ही हम बैठे हैं, बताएं जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: ये कर्तव्य पिक्चर का।
0: कर्तव्य
1: मामा से प्यारा मेरा मामा।
0: जी, आप मामा बन गए लगता है।
1: जी मैंने आज पहली बार फोन लगाया, राजू अग्रवाल जी ने मेरे को नंबर दिए देवास से।
0: हाँ।
1: उन्होंने नंबर दिया था कि 10:30 बजे से 11 बजे तक की फरमाइश होती है, मतलब।
0: हाँ।

0: तो मैंने आज पहली बार फोन लगाया है।
1: पहली बार लगाया, पहली बार में लग गया।
0: जी जी जी
1: बहुत
0: मैडम, पहली
1: भाग्यशाली
0: बार
1: हैं आप
0: लगाया,
1: तो,
0: पहली बार।
1: नहीं तो लोगों का तो दिन भर लगाते रहते हैं, लगता नहीं है फोन। कई श्रोताओं की
0: नहीं
1: यही शिकायत रहती है कि हम हमेशा फोन लगाने का प्रयास करते हैं लेकिन लगता नहीं है।
0: हाँ,
1: जी चलिए, आपको पहली बार में लग गया, अब आप 1 हफ्ते बाद लगाएंगे, है
0: जी मैडम,
1: ना? ठीक है,
0: जी,
1: चलिए, नमस्कार।
0: थैंक यू मैडम।

0: जवाब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। जाए तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।
2: एक दिन दो

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं
1: हाँ जी, मैं श्रीपाद जाकरे बोल रहा हूँ, पुणे महाराष्ट्र से। पुणे
0: जी?
1: से बोल रहा हूँ मैं,
0: हाँ, पुणे
1: महाराष्ट्र से।
0: महाराष्ट्र से
1: श्रीपाद
0: बोल रहे हैं। नाम फिर से बताएं अपना।
1: जाकरे, श्रीपाद
0: श्रीपद जाखड़े
1: जाकरे। हाँ जी,
0: जी, पुणे में रहते हैं आप?
1: हाँ जी, पुणे में रहते हैं। पुणे में वृद्धाश्रम में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं मैडम जी।
0: तो वहां कार्यक्रम सुनते हैं आप, आकाशवाणी मध्य प्रदेश?
1: हाँ, बहुत दूर का तो नहीं आता है, कभी कभी आता है। मतलब
0: तो वहां कब से रह रहे हैं आप आश्रम में?
1: आश्रम में रह के मुझे 11 साल हो गए मैडम जी। हम वैसे इंदौर भोपाल के रहने वाले हैं,
0: भोपाल के रहने वाले हैं तो
1: इंदौर।
0: आपके आप अकेले हैं?
1: हाँ, यहाँ आश्रम में तो अकेले रहते हैं ना, अभी घर में कोई नहीं है। अभी
0: वैसे आपके परिवार में और कोई?
1: कोई नहीं है, अभी सब चले गए, जब भी तो आश्रम में रहना पड़ रहा है मैडम।
0: जी,
1: आज मजबूरी है,
0: तो
1: वर्क लाइफ है
0: आश्रम में अच्छा
1: थोड़ा।
0: लगता है आपको?
1: हाँ जी,
0: आपको अच्छा लगता है आपके साथी, आपकी हम उम्र सब रहते होंगे तो, है ना?
1: हाँ, वैसे तो हमसे सभी बड़े ही हैं, मैं ही सबसे छोटा हूँ
0: जी
1: हाँ,
0: जी
1: उम्र में।
0: चलिए, तो ये जो भी आप गीत आज सुनेंगे वो सबको सुनाइएगा
1: जी,
0: और
1: जरूर।
0: सबको भी कहिएगा फोन लगाने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताएं कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: हाँ, मुझे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में शिकारी फिल्म का गाना सुनना है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने गाया हुआ।
0: उसके तो बहुत से गाने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी ने गाए। आपको शिकार करने
1: नहीं,
0: को आए शिकार हो गए वो,
1: शिकारी,
0: वाह।
1: नहीं, शिकारी फिल्म का
0: हाँ, शिकारी का ही ये गाना है, तो आप बताएं कौन सा सुनेंगे?
1: मतलब। हाँ जी, अगर मैं पूछूं जवाब दोगे,
0: जी
1: दिल क्यों मेरा तड़प रहा है, ये वाला गाना है।
0: ठीक है, सुनवाएंगे आपकी पसंद का गीत। सबको सुनवाइएगा
1: जी,
0: आप ये गीत और सब लोगों को भी प्रेरित करिएगा।
1: आप कौन बोल रहे हैं मैडम जी?
0: मैं छाया पाठक बोल रही हूँ।
1: हाँ जी, तो हम तो वैसे बहुत रोज में फोन करते हैं, तो हमको सुनने को मिलेगा ना कल? जी,
0: बिल्कुल मिलेगा, कल आप सुनेंगे आपकी पसंद का ये गीत।
1: एक बात कहना चाह रहे हैं आपसे, निवेदन है, मतलब हमारा सुनवाइएगा। कारण पहले हमारा 3-4 बार ऐसा हुआ है कि हमारा बजाया ही नहीं, प्रसारण हुआ ही नहीं
0: नहीं, कई
1: हमारा।
0: बार ऐसा होता है देखिए कि श्रोता, हम जैसे कुछ एक्स्ट्रा में भी कॉल हम रिसीव कर लेते हैं, कभी किसी का कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण उनका नहीं ले पाते हैं, या कभी समय ज्यादा हो जाता है। 1 घंटे का टोटल प्रोग्राम बनता है हमारा, तो कभी समय ज्यादा हो जाता है, कोई गीत लंबा हो जाता है, तो इस वजह से कई बार कोई श्रोता छूट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका इंटेंशनली नहीं लेते हम।
1: वो 3-4 बार हुआ है, तो अभी
0: नहीं,
1: मतलब टाइम क्या है वैसे आप कह रहे रिकॉर्डिंग का,
0: ग्यारह
1: कोई
0: से
1: सा
0: बारह आपको सुनवाएंगे कल ये गीत।
1: मिलेगा ना सुनने
0: जी
1: को
0: बिल्कुल
1: आप?
0: बिल्कुल मिलेगा आपको, बिल्कुल सुनवाएंगे।
1: ओके, हाँ
0: हाँ, 11 से 12 पूरा सुनिएगा।
1: जी,
0: चलिए,
1: जरूर।
0: फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद।

0: आज कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए गीतों और नए श्रोताओं के साथ। आज्ञा दीजिए छाया पाठक को कार्यक्रम से। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया है। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम की बैठक कल इंदौर में आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे। इस फोरम में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के 15 देशों के वरिष्ठ राजनयिक भी शामिल होंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भोपाल स्थित स्मार्ट सिटी पार्क में पौधरोपण किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया और पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत

का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान की काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को साधना जैन का नमस्कार और विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। पहला गीत हमने आपके लिए लिया है ब्लैकमेल फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण ने इसका गीत लिखा है और कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया है। इस गीत को पसंद किया है सोनागिर दतिया से शशि जैन, श्रेयांश जैन, विपिन जैन और खंडवा से बबली वंदना जैन, डॉक्टर प्रतीति जैन, संदीप जैन और माघदी जैन ने। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश और मैं हूं आपके साथ साधना जैन। इस समय दोपहर के 12:06:07 हुए हैं। अगला गीत हमने लिया है बंदनी फिल्म से। एसडी बर्मन ने इस गीत को गाया है, शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सवारा है एसडी बर्मन ने। इस गीत को पसंद किया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने बहुत दूर से। दोस्तों, जब हम मोबाइल ऐप पर आ गए हैं तो बहुत दूर दूर से भी, सात समंदर पार से भी लोग हमें सुन रहे हैं और अपनी फरमाइश हमारे लिए भेज रहे हैं। तो इस गीत का बंदनी फिल्म को सुनना चाहा है वॉस्टन यूएसए से डॉक्टर विजय प्रकाश जैन, डॉक्टर प्रियंक जैन, डॉक्टर पुनीता जैन, आर्य अंकुर जैन। आपने वॉस्टन यूएसए से ये गीत पसंद किया है। इसी गीत को पसंद किया है प्रीत बिहार दिल्ली से, ज्योतिष आचार्य बिंदु जैन, पंडित अशोक जैन शास्त्री, नमन जैन, शुभम जैन ने। तो आप सभी के पसंद पर बंदनी फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: पुरे माजी

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश। सूरज फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। गीत लिखा है हसरा जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का। इसकी फरमाइश इस गीत के बाद हम आपको बताएंगे।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश साधना के साथ। अगला गीत हमने लिया है धरती फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज है, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है शंकर जयकिशन का। दोनों ही गीतों की मिली जुली फरमाइश इस तरह से है। अशोकनगर से ममता राकेश जैन, कोटा से सरोज सुरेश योगी, रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने, पालीताना से शशि जैन ने इस गीत को पसंद किया है। इन दोनों गीतों को पसंद किया था हमारे इन सभी श्रोताओं ने। राजाराम नगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, उपाध्याय नगर देवास से मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा, सुपरमार्केट देवास से प्रकाश चंद जसवानी, पंकज जसवानी, सनी जसवानी और मोहसिनपुरा देवास से जमील खान, इमरान और फुरखान ने इसी गीत को पसंद किया है। गंगेड़ी जिला उज्जैन से गोपाल बागवान गोविंद, सालग राम, दशरथ बागवान और लोकेंद्र वर्मा ने इसी गीत को पसंद किया है आप सभी ने। तो आइए आपको धरती फिल्म का ये गीत आपको सुनवाते हैं, अपने साथियों के साथ सुनिएगा।

और लीजिए कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं तीसरी मंजिल फिल्म में आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफी को। गीत लिखा है मजरू ने, संगीत है आर डी बर्मन का। इस गीत को पसंद किया है लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। और इसी गीत को पसंद किया है सिंधी कैंप पक्की खोली अकोला से आशा संतानी, श्यामली संतानी, नैन्सी संतानी और संतानी सभी सखियों ने। तो आप सभी की पसंद पर भेज रहे हैं।

0: कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सिसकियों का भाग 10।
1: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

तो प्रस्तुत है धारावाहिक की 10वीं कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना, सारे और मुश्ताक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। फाता के न चाहने पर भी उनका मिलना जारी रहता है। सारे बगावत पर उतर आती है और रसूल के जुल्म सहने से इनकार कर देती है। मुश्ताक सायरा को तलाक दिलवाने के लिए वकील के पास जाता है। और अब आगे

0: वकील साहब, तो क्या रसूल और साराय का तलाक हो जाएगा?
1: मुश्ताक, कानूनी तौर पर तलाक की कोई वजह होनी चाहिए।
0: तो तलाक की वजह है? साराय खुद चाहती है कि वो रसूल के साथ ना रहे।
1: ये कोई सटीक वजह नहीं, कुछ और सोचना होगा।
0: वकील साहब, जब साराय उसके साथ रहना ही नहीं चाहती, तो इससे ज्यादा तलाक की और क्या वजह होगी?
1: तलाक के लिए कोई ठोस वजह चाहिए भाई, इसके बिना तलाक संभव नहीं है।
0: वकील साहब, रसूल से सारे प्यार नहीं करती, रसूल सारे को मारता पीटता रहता है, क्या ये बड़ी वजह नहीं है तलाक के लिए?
1: ये तो सारे कह रही है, रसूल क्या कहता है हमें ये भी जानना होगा। एक पक्ष की बात पर हम केस नहीं जीत सकते।
0: वकील साहब, रसूल सारे को तलाक नहीं देगा।
1: अगर रसूल तलाक को राजी नहीं, तब तो मुश्किल है, क्योंकि रसूल साराय का शौहर है और उसके कहे पर ही अदालत कार्रवाई करेगी।
0: लेकिन वकील साहब, रसूल अच्छा आदमी नहीं है, उसके कई औरतों से शहर में ताल्लुकात है, वो नशा करता है, मारपीट करता है, क्या इस वजह पर साराय को तलाक नहीं मिल सकता?
1: देखो मुश्ताक, मर्द अगर घर से माह दो माह के लिए बाहर रहे तो ऐसा संभव है, फिर भी आपको सबूत के तौर पर उन औरतों को अदालत में गवाही के लिए लाना होगा। अगर वो औरतें ये कबूल करें कि रसूल से उनके संबंध हैं, तो शायद तलाक मिल जाए। लेकिन एक दिक्कत और होगी, अगर रसूल ये साबित कर दे कि सारे उसके शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं करती और वो इसलिए उन औरतों से संबंध रखता है, तो सारे को तलाक नहीं मिल सकता।
0: लेकिन वकील साहब, ये सब साबित कैसे होगा?
1: अच्छा एक बात बताओ, सारे का कोई बच्चा है?
0: नहीं।
1: सारे कभी गर्भवती हुई?
0: नहीं।

0: सारे ने कभी रसूल को औरतों के साथ हम बिस्तर होते देखा है?
1: वकील साहब, ये लोग कहते हैं, सारे ने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन हम ये जानते हैं कि रसूल के ताल्लुकात औरतों से हैं।
0: मुश्ताक, अदालत सबूत देखती है, अगर तुम सबूत ला सको तभी ये संभव है, और बिना सबूत के अदालत सारे को तलाक नहीं दिला सकती।
1: वकील साहब, तो क्या अदालत सारे के जज्बात को नहीं सुनेगी?
0: मुश्ताक साहब, अदालत भावनाओं पर नहीं चलती, अदालत सबूत देखती है, और बिना सबूत के अदालत कोई फैसला नहीं करती। अगर आप चाहते हैं कि सारे का तलाक हो जाए तो ठोस सबूत के साथ आइए, तभी तलाक हो सकता है।
1: ठीक है वकील साहब, अच्छा मैं चलता हूं।
0: ठीक,
1: खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज।
1: वकील साहब ने तो मना कर दिया, अब ऐसा करता हूं कि मौलवी साहब के पास जाता हूं, देखता हूं उनकी क्या राय है। हाँ, ये ठीक रहेगा।

0: अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब।
1: वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे।
0: मौलवी साहब, एक जरूरी मसले पर आपसे मशवरा लेना था।
1: आओ आओ बैठो। कहो क्या बात है?
0: वो तलाक के सिलसिले में।
1: तलाक? किसका तलाक?
0: सारे और रसूल का।
1: तलाक कौन देना चाहता है?
0: जी सारे
1: है? और रसूल?
0: रसूल नहीं चाहता मौली साहब।
1: ओ, तो ये मुश्किल है। देखो भाई, रसूल की इजाजत के बगैर सारे को तलाक नहीं मिल सकता।
0: लेकिन मौलवी साहब, सारे उसके साथ नहीं रहना चाहती।
1: देखो, एक बार निकाह हो जाने के बाद जब तक मर्द ना चाहे तलाक नहीं मिल सकता।
0: सारे उसके साथ खुश नहीं है मौलवी साहब, और रसूल कई औरतों से ताल्लुकात रखता है और सारे से अच्छा सलूक भी नहीं करता।
1: देखो भाई, हमारे इस्लाम धर्म के कानून के मुताबिक तलाक मर्द की इच्छा पर मुनसर करता है, और एक मर्द अगर चार निकाह भी कर ले तो भी वो जायज है। जायज है। औरतों को पाक साफ होना चाहिए। ऐसे में सारे को तलाक नहीं मिल सकता। अरे हम इस्लाम मजहब के खिलाफ नहीं जा सकते। और सुनो, औरतों का अपना धर्म है, उसे निभाना चाहिए। और अगर कोई औरत उसे नहीं निभाती तो धर्म उसकी रक्षा नहीं कर सकता। और जहां तक मैंने सुना है, सारे रसूल को छोड़कर किसी और के साथ रहना चाहती है। अरे अरे, ये तो मजहब के खिलाफ है। एक औरत को ऐसी आजादी नहीं दी जा सकती।
0: कोई और रास्ता है मौलवी साहब?
1: देखो भाई, अगर सारे का खामिंद उसे तलाक देने को राजी हो तभी हो सकता है, लेकिन उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो तलाक नहीं माना जाएगा।
0: तो क्या एक औरत को आजादी से रहने का हक नहीं है?
1: देखो मुश्ताक, एक औरत की आजादी उसके परिवार वालों के हाथ होती है। उसका खामिंद अगर चाहे तो आजादी दे, नहीं तो उसके कहने पर चले। ये हमारा इस्लाम।

0: जब कहता है और हम उसी मजहब पर चलते हैं। और सुनो, इस्लाम मजहब को छोड़कर हम कोई और बात नहीं कर सकते, और अगर कोई औरत हमारे मजहब के खिलाफ जाती है तो हमारा मजहब सख्त सजा की वकालत करता है।
1: अच्छा मौलवी साहब, आपकी सलाह के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज।

0: तो क्या हमारा मजहब एक औरत को जुल्म सहने के लिए ऐसे छोड़ सकता है? सारे तो तुम यहां और...
1: आओ अंदर आओ।
0: तुम्हारी ये हालत
1: वो
2: रसूल ने मारा है बेटा, लेकिन अब ठीक है। मुश्ताक बेटे, तलाक की क्या बात हुई? कब तक काम हो जाएगा?
0: अब्बू, जब तक रसूल तलाक देने को राजी नहीं होता तब तक तलाक नहीं हो सकता। हमें रसूल से कबूल करवाना होगा कि वो सारा को तलाक दे।
2: बेटा, मदरसे में जाकर मौलवी साहब से कुछ मशवरा करते, शायद वो हमारी कुछ मदद करें।
0: मैं उनसे मिल चुका हूं अब्बू। उनका कहना है कि अगर रसूल तलाक देना चाहे तभी सारे को तलाक मिल सकता है। वो हमारे बीच मजहब को आड़े ला रहे हैं, ऐसे में हम कभी भी नहीं मिल सकते अब्बू।
2: तब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है बेटा, कि हम रसूल से बात करें।
0: ठीक है अब्बू, ये काम आप खुद करें तो बेहतर होगा।
2: हाँ बेटा, मैं खुद ही रसूल से बात करता हूं।

0: ऐसा हरगिज नहीं हो सकता।
1: क्या?
2: लो चाय पियो।
1: देखो रसूल, मैं साफ साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ कि तुम सारे को तलाक दे दो।
0: मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता।
2: अम्मा मियाँ, पागल हो गए हो क्या? अपनी बेटी को तलाक दिलवाओगे?
1: हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। मुझे बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। अरे, तुमने तो सारे को जीते जी मारने का काम किया है, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा।
0: मैं सारे को तलाक नहीं दे सकता।
1: रसूल, सारे अब तुम्हारी बी बनकर नहीं रह सकती। सारे तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए अब तुम सारे को तलाक दे दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा।
0: जब तक सारे को मैं तलाक ना दूं, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और सारे को पाने के लिए मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं। फाता फाता, तुम क्यों नहीं बोलती? मैंने तुम्हें कितना पैसा दिया है, और इसी लालच में तुमने अपनी बेटी सारे का निकाह मुझसे करवाया, और अब तलाक देने को कहती हो?
1: देखो रसूल, अगर तुम सारे को तलाक देने को तैयार हो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ।
0: सारे का हुस्न तो मेरा हो ही गया था, अब उसे छोड़ने के लिए देखो भाई, कम से कम 10,000 रुपए दो तो मैं सारे को तलाक दे दूंगा।
1: ठीक है, मैं जल्दी ही 10,000 रुपए तेरे हाथ में दूंगा।
0: तो ठीक है, जिस दिन पैसा दोगे उसी दिन तलाकनामे पर दस्तखत करूंगा मैं।
1: ठीक है, मैं अभी जाके मुश्ताक को बताता हूँ कि हमें जल्द से जल्द 10,000 रुपयों का इंतजाम करना होगा, ताकि हमें इस नामुराद से छुटकारा मिल सके।

0: मुश्ताक बेटा।
1: हाँ अम्मी।
0: खाना खा ले।
1: अम्मी रख दो, मैं खा लूंगा, पहले काम खत्म कर लूं।
0: अरे क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, अपनी सेहत का तो ख्याल कर।
1: अम्मी मुझे जल्द ही 10,000 रुपए जमा कर रसूल को देने हैं।
0: मुश्ताक बेटा, मुझे तो लगता है रसूल सबको झांसा दे रहा है, वो ठीक आदमी नहीं है बेटा।
1: अम्मी उसने सारे को तलाक देने के बदले 10,000 रुपए मांगे हैं।
0: अल्लाह तेरी मुराद पूरी करे बेटा, जल्दी से सारे का तलाक हो जाए, पर अपनी सेहत का भी तो ख्याल रख। चल खाना खा ले।
1: अम्मी तू बस अल्लाह से दुआ कर कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं।
0: हाँ हाँ अल्लाह तेरी मुराद जल्द पूरी करेगा। तू सिर्फ सारे को ही नहीं बचा रहा बेटा, बल्कि उस जैसी कई औरतों के लिए एक नया रास्ता बना रहा है। लोग रिश्तों पर यकीन करें, उनमें एतबार बढ़े और वो एक दूसरे के जज्बात समझने की कोशिश करें, तो फिर किसी भी औरत की हालत सारे जैसी नहीं होगी।
1: अम्मी कोशिश तो मेरी यही है, पर पहले पैसे का इंतजाम हो जाए।
0: अकेला कितने पैसों का इंतजाम कर पाएगा, इसमें तो बहुत देर हो जाएगी बेटा।
1: अम्मी मेरे साथ हसन मियां भी तो हैं, वो भी पैसे का इंतजाम कर रहे हैं, जिससे मेरा काम और आसान हो जाएगा।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हसन भाई जान ने भी बहुत दुख देखे हैं, चलो अब उन्हें भी थोड़ी राहत मिल जाएगी।
1: अम्मी अब तू जा, थोड़ी देर सो ले, अभी मुझे बहुत काम करना है।
0: ठीक है, पर खाना खा लेना।
1: हाँ हाँ खा लूंगा।
0: हाँ
1: तू जा।
0: रख दिया है।
1: सलाम अब्बू।
2: वालेकुम सलाम। अरे मुश्ताक आओ बेटा आओ, कैसे हो?
1: मैं ठीक हूँ अब्बू, आप कैसे हैं?
2: खैरियत है।
1: अब्बू आपने जैसा कहा था, मैंने कुछ पैसों का इंतजाम कर लिया है, अब हमें रसूल को पैसा देकर तलाक नामे पर उसके दस्तखत ले लेने चाहिए।
2: मैंने भी कुछ पैसों का इंतजाम कर लिया है बेटा।
1: अब्बू फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए।
2: हाँ मैं अभी उसके पास जाता हूँ और तलाक नामे पर उसके दस्तखत लेकर आता हूँ।
1: अब्बू आज मेरे लिए बहुत ही मुबारक दिन है।
2: हाँ बेटा, सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, मेरे और सारे के लिए भी मुबारक दिन है। आज से सारे के दुखों का अंत हो जाएगा, आज वो रसूल के जुल्म और सितम से मुक्त हो जाएगी।
1: अब्बू ये आप जैसे पाक दिल अब्बू की दुआ है कि हम फिर से एक बार मिल पाएंगे।
2: हाँ बेटा, ये तो तुम्हारी और सारे की पाक मोहब्बत है जो एक बार फिर तुम दोनों एक हो रहे हो। अल्लाह ताला तुम्हारी मोहब्बत को बरकरार रखे। अच्छा बेटा तो मैं रसूल के पास जाता हूँ और उसे पैसे देकर आता हूँ।
1: हाँ, मैं आपका यही इंतजार करता हूँ।
2: ठीक है बेटा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना। इस मुबारक

0: दिन का इंतजार मुझे भी था। जाता हूँ बेटा,
1: इंशाल्लाह। तलाक नामे पर दस्तखत तो करवा लिए, लेकिन सारे मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा।
2: सुनो भाई।
3: हाँ,
2: तुम एक काम करोगे?
3: रसूल भाई, जैसा कहो करूंगा।
2: तुम्हें एक आदमी को खत्म करना है
3: भाई। पैसा खर्च करो तो काम हो जाएगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस काम में माहिर हैं।
2: लेकिन इस काम को गुप्त तरीके से करना होगा कि हम पर किसी को शक भी ना हो।
3: इन वादियों में ऐसी घटना आम बात हो गई है। आप फिक्र ना करें, काम हो जाएगा।
2: तो ठीक है, काम के बाद पैसे मिल जाएंगे। फिलहाल ये रखो।
3: ठीक है, लेकिन मारना किसको है?
2: सारे और मुश्ताक को।
3: भाई, लेकिन सारे तो आपकी बीवी है।
2: बीवी थी, मुझसे तलाक लेकर उस मुश्ताक से निकाह कर बैठी। आज तक औरतों को अपने पैर की जूती के नीचे रखता आया हूं, पर इस सारे ने मुझसे तलाक लेकर मुश्ताक से निकाह कर लिया।
3: ये तो बहुत बुरी बात है, एक औरत की इतनी हिम्मत कि मर्द के फैसलों के खिलाफ जाए। अरे, उसे तो घर का काम करना है और शोहर की देखभाल करनी चाहिए, और वो आपको छोड़कर दूसरे के साथ चली गई। ये तो बहुत बुरा है। आप फिक्र ना करें, हम आपका काम करवा देंगे।
2: ठीक है, अब जाओ, काम होने के बाद मिलना।
3: लेकिन वो लोग मिलेंगे कहाँ?
2: हसन भट्ट की कोठरी में वो दोनों होंगे। आज ही उनका काम तमाम कर दो।
3: ठीक है, हो जाएगा।
2: जाओ।

0: कौन? मुश्ताक, आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी।
1: सारे सारे, आज हम एक बार फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर पाएंगे।
0: अब मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं?
1: नहीं सारे, नहीं। बस हमने अपनी परेशानियों को खोलकर नहीं रखा और यही वजह थी कि हमारे बीच दूरियां बढ़ी।
0: अब ऐसा कभी नहीं होगा मुश्ताक, मैं तुमसे वायदा करती हूँ। अब हम अपने परिवार को संभालने की कोशिश करेंगे।
1: सारे, परिवार की ताकत को समझो। अगर तुम्हारे अब्बू और मेरे अम्मी अब्बू ने हमारी मदद ना की होती तो शायद हम कभी ना मिल पाते।
0: हाँ मुश्ताक, ये मुझे एक खौफनाक ख्वाब सा लगता है, पर अब ऐसा नहीं होगा मुश्ताक। हम एक रहेंगे, हम हर हाल में एक रहेंगे, मैं वायदा करती हूँ मुश्ताक।
1: सारे सारे, हमें एक दूसरे पर एतबार रखना होगा, तभी हम अपने ताल्लुकातों में आने वाले पलों को अपने हिसाब से रख पाएंगे। हाँ। और इसी से हमारे बीच कभी दूरियां नहीं आएंगी।
0: आप ठीक कहते हैं मुश्ताक, पर एक बात मैं जानती हूँ कि आपका प्यार जहाँ भी होगा वहाँ हम हर मुश्किल को आसान कर लेंगे। पर वायदा करो कि तुम मुझ पर भरोसा रखोगे और मुझे इसी तरह प्यार करते रहोगे।
1: सारे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, और इसके लिए मुझ पर किसी का दबाव नहीं है, और मैं तुमसे कभी जुदा नहीं होऊंगा।
0: मुझे विश्वास नहीं होता कि हम फिर से एक हैं। हमारे जीवन में ये मुबारक दिन भी आएगा, मैं तो इसका विश्वास ही खो बैठी थी मुश्ताक।
1: आज हमारे लिए मुबारक दिन है, बहुत मुबारक दिन।
0: मुश्ताक, आज अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो मैं कभी की मर गई होती।
1: सारे, इस मुबारक घड़ी में ऐसे तो ना बोलो।
0: आप नहीं जानते मुश्ताक, ये दिन मैंने किस तरह गुजारे हैं।
1: वो सब एक बुरा ख्वाब समझकर भूल

0: सारे, अब हमें अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी है और पुराने दिनों को याद कर यूं दुखी होने की जरूरत नहीं है।
1: मुश्ताक, अगर मुझे आपका प्यार ना मिला होता तो रसूल के जुल्म और उसके लिए जख्मों को मैं कभी ना सह पाती।
0: छोड़ो भी ये सब बातें, अब हमें नई जिंदगी शुरू करनी है। और ये देखो, ये लाल रंग का फैन मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसे मैंने अपने इन्हीं दोनों हाथों से तैयार किया है। जाओ जाओ, जल्दी से इसे पहन लो।
1: इसे आपने बनाया है?
0: हाँ सारे, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: इसकी क्या जरूरत थी?
0: नहीं, तुम्हें हो या ना हो, पर मुझे थी। मैं चाहता हूँ कि दुनिया की सारी खुशी तुम्हारे कदमों में रख दूँ।
1: ऐसा ना कहो।
0: क्यों ना कहो, आखिर तुम मेरी बेबी हो।
1: मुश्ताक, आप अब मेरा साथ कभी ना छोड़ना। मैं अपने रास्ते से भटक गई थी और उसका नतीजा मैं भुगत चुकी हूँ।
0: अरे अरे सारे, तुम रो रही हो।
1: नहीं मुश्ताक, मैं रो नहीं रही, ये तो खुशी के आंसू हैं।
0: तुम ऐसा ना सोचो सारे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
1: ये आपका ही तो विश्वास है कि सारे आज आपके सामने खड़ी है, वरना मैं तो कभी की हिम्मत हार चुकी थी।
0: ओहो सारे, अब यूं ही बातें करती रहोगी या ये फिर पहन कर भी दिखाओगी?
1: हाँ, मैं अभी इसे पहन कर आती हूँ, बस अभी आई।
0: सच कहूँ सारे, इस जोड़े में तुम बिल्कुल रानी लग रही हो। खुदा किसी की नजर न लगाए।
1: ओहो, देखो तो कौन आया है।
0: हाँ देखता हूँ।
2: तुम मुश्ताक हो?
0: जी कहिए।
2: और घर में कौन कौन है?
0: घर में मैं और मेरी बीवी सारे है।
1: मुश्ताक,
2: भी मारो।
0: सारे
1: अरे
3: संग्रहालय से इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक सिसकियां की 10वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है। भारत और लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम की बैठक कल इंदौर में आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे। इस फोरम में लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन देशों के वरिष्ठ राजनयिक भी शामिल होंगे। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है, वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया और पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में शाम 3:30 बजे से खेला जाए।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए बहनों का कार्यक्रम महिला सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की है।

क्यों न थोड़ा सा अलग बने, खुश रहने की सलाह न देकर खुश रहने की वजह बने। और देखिए आपके होठों पर एक मीठी सी मुस्कान सजाने हम लेकर एक बार फिर हाजिर हैं, आपका अपना कार्यक्रम महिला सभा। तो स्वीकार कीजिए हेमलता खरे का प्यार भरा नमस्कार। वृक्ष, नदियां और ये नीला आकाश धरती माँ का है मानो आशीर्वाद। जो करे निस्वार्थ प्रेम उससे, उसे प्रकृति सब कुछ दे देती है। अपने आंचल में हमें ममता से ढक लेती है। हाँ बहनों, प्रकृति ने स्वच्छ पर्यावरण के रूप में हमें मानो अपना आशीर्वाद दिया है। ये पर्यावरण ही है जो हमारा संरक्षण करता है, हमें जीवन देता है। मगर हम ही ना जाने क्यों स्वार्थवश पर्यावरण का विनाश करने में लगे हुए हैं। प्रकृति तो अपना प्यार दुलार हम पर लुटाती ही है और हमें ये सीख देती है कि खुशियाँ बांट देने से खुशियाँ कम नहीं होती। प्रकृति का हर रंग एक नई कहानी सुनाता है, जो दिल से महसूस कर सके वही समझ पाता है। आज हम अपनी खुशी के खातिर न केवल पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि अपने अस्तित्व को ही समाप्त करने में लगे हुए हैं। हाँ बहनों, यही वजह है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने, उसकी सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी और 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तभी से यह समुद्री प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, टिकाऊ विकास और वन्य जीव अपराध जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का एक मंच रहा है। वास्तव में पर्यावरण प्रकृति का हिस्सा है और मानव जीवन प्रकृति के साथ अनुकूलता में ही संभव है। हम प्रकृति के पोषण और संरक्षण के साथ ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, न कि उसे क्षति पहुंचाकर। इसीलिए पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी हो जाता है। हमारी अच्छी आदतें जैसे वृक्षों को सहेजना, जलवायु प्रदूषण रोकना, साथ ही हमारी बुरी आदतें जैसे पानी प्रदूषित करना, बर्बाद करना, वृक्षों की कटाई, प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण को प्रभावित करता है, जिसका नतीजा हमें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करके भुगतना ही पड़ता है। तो बहनों, आज केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे, पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाना होगा। पौधारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा बचत, प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे, हरित क्षेत्र बढ़ाने होंगे और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन पर भी रोक लगानी होगी। हमारे पूर्वज प्रकृति को ईश्वर स्वरूप मानकर पूजते थे, उसका संरक्षण करते थे, मगर आज आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी संस्कृति और संस्कार मानो भूलते से जा रहे हैं। हमें एक बार फिर अपनी सनातन संस्कृति की ओर लौटना होगा, अपनी परंपराओं की ओर लौटना होगा, तभी हम पर्यावरण के प्रति अपना कर्तव्य निभा पाएंगे, प्रकृति का ऋण चुका पाएंगे। तो क्यों न सहेज कर रख लें इस प्रकृति को आने वाले कल के लिए, आने वाले अपनों के लिए। और आज बदलते परिवेश और बदलते समय में क्यों ना एक बार फिर संवार लें हम ये रिश्ते, ये मौसम और ये पल।

अभी बहनें सुन रही थी मोनाली ठाकुर के स्वर में लुटेरा फिल्म का ये गीत। गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया था अमित त्रिदेव ने। खिलते हुए फूलों में रंग हजार नजर आते हैं, खिलते हुए फूलों में रंग हजार नजर आते हैं, प्रकृति के खूबसूरत से नजारे सीधे दिल में उतर जाते हैं। सुबह की ठंडी हवा जब चेहरे को छू जाती है तो रूह तक में एक नई ताजगी सी उतर आती है। हाँ बहनों, ईश्वर ने प्रकृति के रूप में अनमोल धरोहर हमें सौंपी है और प्रकृति की ये खूबसूरती हमारे मन को सुकून देती है, शांति देती है। आज हर मन अवसाद, तनाव और निराशा से भरा है और हर कोई शांति चाहता है, सुकून चाहता है, और हमें ये सुकून मिलता है प्रकृति की छाया में, प्रकृति की पनाहों में। मेघ के साये में पर्वतों की बाहों में, मेघ के साये में पर्वतों की बाहों में सुकून यहाँ बसता है प्रकृति की पनाहों में। और यदि हम प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करें तो शायद कुछ पल के लिए ही सही तनाव से दूर रह सकते हैं। आज हम छोटे छोटे घरों, बालकनी या योगा सेंटरों तक सीमित हो गए हैं। काम के दबाव और समय की कमी ने हमें प्रकृति से दूर सा कर दिया है, तो चलिए थोड़ा सा समय ही सही खुद के लिए जरूर निकालें। तो चलिए फिर से एक बार प्रकृति की ओर लौटिए। खुला आसमान आपका इंतजार कर रहा है और सूरज, चांद, सितारे आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे। पंछियों की चहचहाट आपकी मेडिटेशन प्रक्रिया में सुधार करेंगे। खुले आसमान के नीचे ध्यान लगाने का अर्थ है प्रकृति की गोद में बैठकर ध्यान लगाना। दुनिया भर के विशेषज्ञ कहते हैं इस तरह ध्यान से तनाव कम होता है। यह आपके मन को स्थिर करने और एकाग्रता बढ़ाने में भी मदद करता है और वहीं यह प्रकृति के साथ आपका एक गहरा संबंध स्थापित करता है और यही दृष्टिकोण हमें सकारात्मक बनाता है और एक सकारात्मक सोच हमारे पूरे जीवन को सुंदर बनाती है। एक शांत और खुली जगह पर बैठें जहां आप प्रकृति को महसूस कर सकें। आंखें बंद करके चित्त को शांत होने दें, आसमान को महसूस करें, खुले विशाल आकाश के नीचे खुद के व्यक्तित्व को महसूस करें। हवा की सरसराहट, पंछियों की आवाजें, प्राकृतिक प्रतिध्वनियां, इन्हें जज करने की बजाय इन्हें अपने ध्यान का हिस्सा बनाएं।

0: सुबह ध्यान में सूर्य की गर्माहट और रात में चांद की शीतलता को गहराई से महसूस करें। अब धीरे से आंखों को खोलें और आकाश की ओर देखें और महसूस करें कि मन को एकाग्र करना इतना भी मुश्किल नहीं है। तो रोज सूरज, चांद, सितारों पर ध्यान केंद्रित करें और प्रकृति से कहें धन्यवाद। कहीं बर्फ की चादर, कहीं हरियाली का नजारा है। कहीं बर्फ की चादर, कहीं हरियाली का नजारा है। कुदरत का हर एक रंग यहाँ कितना प्यारा है। धरती का श्रृंगार है वृक्ष, जीवन का आधार है वृक्ष। ऋषि मुनियों की इस धरती पर ईश्वर का अवतार है वृक्ष। हाँ बहनों, हमारी संस्कृति में वृक्षों को हमेशा से ही देव स्वरूप मानकर पूजा जाता रहा है। तो चलिए, इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हम आपको सुनवा रहे हैं यह वार्ता, वृक्ष हमारे पूज्य। वार्ताकार हैं सर्व मंगला रिशारिया।
1: बहनों, भारतीय संस्कृति में वृक्षों का विशेष महत्व है, क्योंकि वे हमारे जीवन के प्राण हैं। पुराणों तथा धर्म ग्रंथों में पेड़ पौधों को बड़ा पवित्र और देवता के रूप में माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में से सिर्फ पृथ्वी पर ही मानव जीवन है, और उसकी वजह है पंच तत्वों से इसका निर्माण होना। पंच तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है वायु, और वायु हम प्राप्त करते हैं हरे भरे वृक्षों से। ईश्वर ने हमारी पृथ्वी को भरपूर प्राकृतिक वातावरण से सुसज्जित किया है। सारी धरती को हरियाली यानी हरे भरे वृक्षों की कीमती सौगात प्रदान की है, जिसकी बदौलत मानव एक स्वस्थ जीवन जी पाता है। जब से वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि पौधों में भी जीवन होता है, लोक विश्वासों में दृढ़ता आई है। इसलिए पाप और पुण्य की अवधारणा भी इसके साथ जुड़ गई, और देवतुल्य वृक्षों का संरक्षण पुण्य व उनका विनाश करना पाप स्वरूप समझा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य वृक्षों का आरोपण करता है, वृक्ष परलोक में उसका पुत्र होकर जन्म लेता है, और जो वृक्षों के पुष्पों को दान करता है वह समृद्धशाली होता है। आदि काल से ही मानव का प्रकृति के साथ गहरा संबंध रहा है। मनुष्य ने प्रकृति की गोद में ही जन्म लिया और इन वृक्षों के मीठे मीठे फलों को खाकर अपनी भूख को शांत किया, और सूर्य की तपन से बचने के लिए इन्हीं वृक्षों को अपना आश्रय बनाया। सबसे महत्वपूर्ण प्राणदायिनी वायु यानी ऑक्सीजन भी इन्हीं वृक्षों से लेकर मानव ने अपनी निरंतरता को जीवित रखा। जैसे जैसे मनुष्य सभ्यता की सीढ़ियां चढ़ता गया, वैसे वैसे वृक्षों का उपयोग भी बढ़ता गया। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वृक्षों की उपयोगिता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अगर इस जगत में पेड़ पौधे न होते तो कुछ भी न होता। जी हाँ, वृक्षों के महत्व एवं गौरव को समझाते हुए हमारे पूर्वजों ने भी इसकी उपयोगिता एवं आराधना पर बल दिया है। बहनों, हमारी धार्मिक सभ्यता में हर वृक्ष की अलग अलग तरह से पूजा की जाती है। जैसे वट सावित्री के अवसर पर स्त्रियां अटल सौभाग्य देने वाले वट वृक्ष की पूजा करती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से परिवार के सदस्यों की आयु बढ़ती है। इसी तरह से पीपल के वृक्ष में भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पर जल चढ़ाने से व इसकी पूजा करने से संतान सुख मिलता है। इसके तने पर सूत लपेटना व परिक्रमा लगाने का विधान शास्त्रों में भी बताया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे दीपक रखने से मानव जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयां दूर होती हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने भी इसे 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष बताया है। बहनों, इसके अतिरिक्त तुलसी की नित्य पूजा करके जल चढ़ाना, उसके पास दीपक जलाकर रखना भारतीय नारियों का एक धार्मिक कृत्य है। तुलसी को विष्णु भगवान की प्रिया मानकर इसकी पूजा की जाती है। तुलसी दल का भी विशेष महत्व माना जाता है। यह अकाल मृत्यु तक को हर लेती है। यहाँ तक कि हम अपनी हर पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग करते हैं। ऐसा भी कहा गया है, जब तक पूजा और प्रसाद में तुलसी पत्र न रखा जाए तो भगवान भी उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं। बहनों, हम देखते हैं कि तुलसी का कितना महत्व है। इसके अतिरिक्त इसे औषधि के रूप में भी माना जाता है। तुलसी का उपयोग हम दवाइयों एवं लेप के रूप में भी करते हैं। प्रतिदिन 5 पत्ती तुलसी की खाने से हम बीमारी से दूर रहते हैं। सर्दी खांसी में भी तुलसी की पत्ती की चाय बनाकर पीने से खांसी सर्दी दूर हो जाती है। यहाँ तक कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में भी खाने की वस्तुओं एवं पानी में तुलसी डाल देने से अशुद्ध नहीं होता है। बहनों, हम देखते हैं कि हर वृक्ष का अपना अलग अलग महत्व है, और हर जगह वृक्ष को अलग अलग तरीके से पूजा जाता है। जैसे गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके पत्ते पर भोजन करना शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि केरल जैसे राज्य में भोजन थालियों में न परोसकर केले के पत्ते में खाना शुभ माना जाता है। इसी तरह से

0: अशोक अष्टमी के दिन अशोक वृक्ष की पूजा दुख को मिटाकर आशा को पूर्ण करने के लिए की जाती है। बहनों, इसके अलावा आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास मानकर कार्तिक मास में इसकी पूजा परिक्रमा करके स्त्रियां सुहाग का वरदान मांगती हैं तथा कार्तिक महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना भी शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त आम के वृक्ष के पत्ते, मंजरी, छाल और लकड़ी यज्ञ और अनुष्ठानों में उपयोग की जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि वृक्षों का उपयोग धार्मिक दृष्टि ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नीम। नीम एक ऐसा वृक्ष है जिसकी हर एक चीज उपयोगी है। जैसे नीम की पत्ती हम दवाई के रूप में करते हैं, ये कीटाणु नाशक होती है। साथ ही नीम की छाल एवं नीम की दातुन भी उपयोग में लाते हैं तथा नीम की पत्ती को चबाकर खाने से हमारे रक्त की शुद्धि होती है। अतः हम देखते हैं कि वृक्ष हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। औषधि के रूप में एवं धार्मिक दृष्टि से ये अपनी महत्वता बताते हैं। यहाँ तक कि ये हमें खाद्य पदार्थ तथा हमारे जीने के लिए उपयोगी प्राण वायु प्रदान करते हैं। अतः वृक्ष हर रूप में हमारे लिए उपयोगी है। बहनों, इन उपयोगों के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन वृक्षों का विनाश होता जा रहा है। आज मनुष्य अपनी जरूरतों के लिए वृक्षों की कटाई करता जा रहा है। कभी आपने ये सोचा है कि वृक्षों का दिन प्रतिदिन कटना हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या बना सकता है? अगर प्राथमिक स्तर पर इसका परिणाम देखें तो हमारे लिए आवश्यक प्राण वायु ऑक्सीजन दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैस जिसे वृक्षों द्वारा अवशोषित किया जाता है वह वृक्षों के कटने से बढ़ती जा रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं और ऐसी ही समस्याएं आगे चलकर बहुत बड़ी हानि का कारण बन सकती है। जैसे हम देख रहे हैं कि वृक्ष के कटने से वर्षा भी अनियमित होती जा रही है, क्योंकि वर्षा का सबसे बड़ा स्रोत वृक्ष ही है। वृक्ष ही बारिश का काम करते हैं, को आकर्षित करते हैं, और जब वृक्ष ही न होंगे तो प्रकृति का असंतुलित होना स्वाभाविक है। अतः हम सभी यह जानते हुए भी अपनी शक्तियों को बढ़ावा देते जा रहे हैं और जिससे हमें जीवन मिलता है उसको हम काटते जा रहे हैं। बहनों, अपनी थोड़ी सी जरूरतों के लिए हम पृथ्वी का विनाश करते जा रहे हैं। आज जिस तरह से अपने लाभ के लिए वृक्षों को काटकर प्रकृति से खिलवाड़ किया जा रहा है, बिना यह सोचे कि आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। बहनों, जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वृक्ष लगातार कम होते जा रहे हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है तथा प्रदूषण, अनियमित वर्षा जैसे कई कारण सामने आते जा रहे हैं। अगर आज का मानव चाहे तो वह इस संतुलन को बिगड़ने से बचा सकता है, जैसे वृक्ष की कटाई कम करके, वृक्षारोपण करके। अतः वृक्ष हमारे जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी ही नहीं बल्कि हमारा जीवन ही है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए जागरूक करें। अतः इसी प्रवृत्ति को प्रबल करके इसकी वृद्धि और संरक्षण में सहयोग करें। इसके अलावा हम हर माध्यम से बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी को वृक्ष आरोपित करने के लिए जागरूक करें और उन्हें इससे होने वाली समस्याओं के बारे में बताएं, जिससे आने वाले वक्त में हम अकाल तथा महामारी जैसे प्रकोपों से बच सकें। बहनों, अतः हम यह प्रण करें कि जितने वृक्ष काटे जाएं उससे ज्यादा लगाए भी जाएं, ताकि प्रकृति की सुरक्षा के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता भी सुरक्षित रहे। कहा जाता है कि वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है, तो क्यों न हम वृक्ष लगाकर असंतुलित होते पर्यावरण और पृथ्वी के विनाश के संकट को कम करने में सहयोग करें। इसके अलावा हमारी हिंदू सभ्यता में ऐसे कई वृक्ष जैसे बेल, जामुन, महुआ, छेवला, पलाश की पूजा की जाती है और भी बहुत से उपयोग में लाया जाता है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम वृक्षों को काटने से बचाएं, ताकि हमारी प्रकृति फिर से वैसी ही सुंदर और सुसज्जित दिखे।
1: अभी बहने सुन रही थी ये वार्ता वृक्ष हमारे पूज्य। वार्ताकार थी सर्व मंगला रिचारिया। और लीजिए अब सुनिए पहली फिल्म का ये गीत सोनू निगम, श्रेया घोषाल, मधुश्री और साथियों के स्वर में। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है MM करीम ने।
2: कंगना रे, तेरे नो से सब रंगना रे।

बहनों, हर किसी को साफ सफाई बेहद पसंद होती है। साफ सुथरा घर, सलीके से सजा हर सामान हमारे मन को खुश कर देता है और हम बहनों को तो साफ सफाई बेहद पसंद होती है, मगर आवश्यकता से अधिक साफ सफाई की आदत कभी कभी समस्या भी बन जाती है, या यूं कहें ओवर क्लीनिंग की आदत कभी कभी थकान और अवसाद का कारण बन जाती है। घरेलू महिलाएं हों या फिर कामकाजी, ये प्रभाव कई स्तरों पर दिखाई देते हैं, जैसे दिनचर्या पर प्रभाव, शारीरिक मानसिक थकान, तनाव, चिंता, साथ ही नींद और मनोदशा भी प्रभावित होती है, साथ ही परिवार से दूरी भी देखने को मिलती है। अधिक साफ सफाई की वजह से दूसरों को काम न करने देना या किसी का भी काम ना पसंद आना, इसके अलावा ओवर क्लीनिंग की वजह से सामाजिक अलगाव भी देखने को मिलता है, जैसे समारोहों और यात्राओं से बचना क्योंकि घर गंदा ना हो जाए। ऐसी सोच हमारे मन पर हावी हो जाती है और अक्सर तनाव का कारण बनती है। इन आदतों से आत्मविश्वास भी कम होने लगता है, जो कभी सुकून का प्रतीक हुआ करता था वही चिंता का कारण बन जाता है। घर की सफाई को लेकर बच्चों पर भी हम प्रतिबंध लगाते हैं, जिससे वे भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। घर है, घर में लोग हैं तो गंदा तो होगा ही, तो साफ सफाई करें मगर तनाव न लें। सफाई जब मन की शांति छीनने लगे तब रुक कर जरूर सोचें। घर तभी सुंदर है जब तक उसमें ऊर्जा, प्रेम और संतुलन है। यदि अधिक सफाई की आदत आपको उलझन में डाल रही है तो मनोचिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। साथ ही अधिक समय सफाई को न देकर परिवार के साथ समय बिताएं, योग, ध्यान, प्राणायाम के लिए भी समय निकालें। घर जीने के लिए होता है, दिखाने के लिए नहीं। थोड़ा बिखराव जीवन का हिस्सा है, विफलता का नहीं। बहनों, साफ सफाई तो बहुत जरूरी होती है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, मगर खुद को तनाव देकर नहीं। घर को स्वच्छ सुंदर जरूर बनाएं, मगर अपनों के साथ मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मुस्कुराने से मन के नकारात्मक विचार निकल जाते हैं और मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इसीलिए घर की साफ सफाई के साथ साथ मन की सफाई पर

भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि मन और मकान को समय समय पर साफ करना जरूरी होता है, वरना मकान में बेमतलब का सामान और मन में बेमतलब की बातें जमा हो जाती हैं। इसीलिए बहनों अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें, क्योंकि सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर, और तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचें और खुश रहें। फिलहाल अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अगली मुलाकात तक के लिए अब अनुमति दीजिए हिमलता खरे को। नमस्कार।

0: अभी बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम महिला सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की थी।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुछ पर्यावरण गीत। पहले सुनते हैं चंद्रभूषण पाठक के स्वर में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा ये गीत। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे कुछ पर्यावरण गीत। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं सतीश भूतानी। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की है। इनकी आवाज में आज आप सुनेंगे गीत, गजल और भजन।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, जब पेड़ मुस्कुराते हैं तो ऋतुएं गुनगुनाती हैं, और जब नदियां बहती हैं तो जीवन का संगीत सजता है। हरियाली धरती का श्रृंगार है, नदियां उसकी धड़कन और आकाश उसका विस्तार है। प्रकृति का ये अनुपम काव्य जीवन के होठों पर गीत सजाता रहे, इसी कामना के साथ विश्व पर्यावरण दिवस पर सुनिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम।

की छांव में शीतलता है, फूलों की खुशबू में जीवन का उत्सव है। जब वृक्ष खिलखिलाते हैं तब जीवन गुनगुनाता है। नदियों की कलकल, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों का मधुर गान, यही तो वो संगीत है जिसके सुरों पर जीवन मुस्कुराता है।

0: sharing life, no papa. Open your mouth, ha ha ha.
1: तो श्रोताओं, फूलों की सुगंध, बादलों की छांव और वृक्षों का स्नेह मनुष्य को मिलता रहे, इसी कामना के साथ आइए संकल्प लें कि धरती को हम उतना ही सुंदर बनाकर रखें जितनी सुंदर ये हमें विरासत में मिली है। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इजाजत दें अपने दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर हैं। सूरत में वे 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, बिजली और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और 220 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं शाम को दमन में नामो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल और नामो अस्पताल सहित करीब 3,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के लिए 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एयर ट्रंक कंपनी भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करेगी। श्री मोदी ने कहा कि यह देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे भारत क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक केंद्र के रूप में और मजबूत होगा तथा रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने पहले समारोह में 66 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार कला, विज्ञान, खेल, चिकित्सा और

0: सामाजिक कार्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए गए। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा और रोपे गए पौधों की जियो टैगिंग कर उनकी निगरानी की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में भी पौधरोपण संगोष्ठी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा,
1: आज के समय में पर्यावरण को लेकर हमारी सनातन संस्कृति की जो मूल अवधारणा या जीवन पद्धति थी, सृष्टि में हमारे कदम कदम पर हर शास्त्र में विस्तार से इसमें व्याख्या भी कही गई। अगर हम अपने इस चारों तरफ के वातावरण को देखें तो हमारी तो कोई भी पूजा पद्धति संध्या वंदन दीप प्रज्वलन के साथ सूर्योदय देखेंगे तो सूर्य अर्घ्य देने के साथ भगवान को भोग भी लगाएंगे तो तुलसी दल के बिना भोग नहीं लगता है।
0: विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैतूल में माचना नदी घाट पर केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री दुर्गादास उइके की मौजूदगी में पौधरोपण और जल संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं रायसेन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद पौधरोपण किया गया, जबकि गुना में एनसीसी इकाइयों ने पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली। जबलपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। वहीं सतना के बगहा में जिला स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंदौर में 9 जून से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने कल इंदौर पहुंचकर आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां आज भी जारी है। झाबुआ में सुबह तेज बारिश हुई, जबकि सीहोर रायसेन और कई अन्य जिलों में भी मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने आज भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के 45 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नीमच मंदसौर श्योपुर सहित 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। केरल में मानसून 4 जून को पहुंच चुका है और प्रदेश में मानसून के 20 से 22 जून तक के बीच दस्तक देने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में मलेरिया निरोधक माह के तहत कल बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है संदेश के साथ एक प्रचार रथ को रवाना किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य प्रियंका नुंगो ने नर्मदापुरम प्रवास के दौरान विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिव्यांगजनों को कौशल विकास प्रशिक्षण तथा बैंक ऋण से जोड़ने के निर्देश दिए। प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग प्रोग्राम 3.0 के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में स्नातक 18 से 30 वर्ष तक के युवा 16 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा 1 जुलाई को होगी। और प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, उसके उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि छोटे तालाब जिनका किसी नदी से कोई संबंध नहीं है उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2

0: 1970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदम द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष पहली अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व

0: पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
2: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
1: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
3: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे यस एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
4: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलार ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ है उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
5: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं।
6: लोकल फॉर वोकल है, दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां

0: रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, दोपहर 2:30 का ये वक्त जबकि कुछ फुर्सत जिंदगी चुरा ही लेती है, जी हाँ, तो इन फुर्सत के लम्हों में आइए कुछ सुरीले नगमे आपकी ही फरमाइश पर आप तक भेजते हैं। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है सरस्वती चंद्र फिल्म से, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की हैं, गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। अनुरोध आप सबका है, चारमीनार चौक गंदई पंडरिया से दरियानामल, पार्वती मोटवानी, राजेश, रेशम, मुकेश, भावना, सोमेश और यशराज। निंगोरा से अशोक देशमुख, शरद देशमुख, बवन जोशी। शिवाजी चौक बुराला खुर्द से आदिनाथ वाघ का ये वक्त जबकि कुछ फुर्सत जिंदगी चुरा ही लेती है, जी हाँ, तो इन फुर्सत के लम्हों में आइए कुछ सुरीले नगमे आपकी ही फरमाइश पर आप तक

भेजते हैं। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है सरस्वती चंद्र फिल्म से, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की हैं, गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। अनुरोध आप सबका है, चार मीनार चौक गंदई पंडरिया से दरियानामल पार्वती मोटवानी, राजेश रेशम मुकेश भावना सोमेश और यशराज, निंगोरा से अशोक देशमुख शरद देशमुख बबन जोशी, शिवाजी चौक बुराला खुर्द से आदिनाथ वाघ अमोघ वाघ, जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट आरती पूजा जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट, घंटाघर चौक खंडवा से इसी गीत को पसंद करते हैं संजय पंचोलिया प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया, और ये खत आया हुआ है सोनुआ झारखंड से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी बंदिनी संतोषी दीपक संतोष राहुल अनु तनु और इनके परिवार के सभी सदस्य।

आपकी फरमाइश की अगली पेशकश हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता गौरव और गरिमा शर्मा, नेपानगर से सुदर्शन शाह, ताविश शाह, कुंज शाह, पल्लवी सुरभि, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, गौतमनगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जूंधले और आरती जूंधले, और ये खत आया हुआ है मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल की ओर से। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं पालकी फिल्म का गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की हैं, गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद। छिपाना था तुम्हें पहले ही रोज, अब किया पर्दा तो क्या पर्दा किया।

0: श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत बस कुछ ही पलों बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

सुरक्षा कवच देश का संबल, तीनों भारतीय सेनाएं ध्वज तिरंगा विश्व पटल और गगन पर, तीनों भारतीय सेनाएं भारत माँ की आन पर।

0: दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है ये

इस अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी फरमाइश कार्यक्रम में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है बहू बेगम। आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की हैं, बोल साहिर लुधियानवी की और धुन रोशन की। अनुरोध आप सबका है, ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, संगीता सरिता साहू, नेतराम और भूपेंद्र साहू। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। इसी गीत को पसंद करते हैं डोंडी लोहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय रोशनी, बेबी पूजा, तुषार और प्रभा देवी तामुरिया। ग्राम सौगा मगरलोट धमतरी से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन। और प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से ये हमारे श्रोता हैं, बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं बहू बेगम फिल्म का ये गीत। ताउम्र तेरा इंतजार कर लेंगे, मगर ये रंज रहेगा कि जिंदगी कम है।

श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ें उसके पहले एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। ये कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग, प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। ये सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों और आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइट्स पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in और hopairbhopal@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई। और अब आइए एक बार फिर गीत संगीत की ओर चलें। आपको सुनवाते हैं हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत। कमर कॉलोनी बड़वाह से ये चिट्ठी आई है। प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली की ओर से। आदर्श नगर मलोट पंजाब से ये खत आया हुआ है। राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा इसके लिखने वाले हैं। सारणी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि, पंजाब राव और संदीप पाटिल की ये चिट्ठी है। सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन की भी यही फरमाइश है। बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया, जानवी, तृप्तेश और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ये चिट्ठी आई हुई है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले श्रोता हैं सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी और लोकेश जोशी। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी को फिल्म बॉयफ्रेंड में। गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। उनकी नजर की जुम्बिश से बन जाते हैं शोले शबनम, सारी दुनिया भूल गई है, याद करें अब किस किस को हम।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।
1: पिंकी चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चूचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो, जंगल जंगल ही तो लाता मंगल।

0: सब मिलकर बरसेगा फिर पानी जमकर नदी ताल में होगा पानी फुर होगी चूचू की परेशानी।
1: आओ मिलकर पेड़ लगाए धरती की खुशियां लौटाएं।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर हैं। सूरत में वे 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, बिजली और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और 220 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एयर ट्रंक कंपनी भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करेगी। श्री मोदी ने कहा कि यह देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने पहले समारोह में 66 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए गए। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैतूल में माचना नदी के घाट पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री दुर्गादास उइके की मौजूदगी में पौधरोपण और जल संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इंदौर में 9 जून से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने कल इंदौर पहुंचकर आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। अब एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी छतरपुर द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 5:33, 6:30, रात 8:35 और रात 9:45। शाम 6:00 होगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। रात 8:00 आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार की 12 वर्ष के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित कार्यक्रम। खेल जगत कार्यक्रम में रात 9:30 पर आप सुनेंगे नावेद इशरत की वार्ता फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026। आपकी फरमाइश प्रसारण समय रात 10:00 और राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे पंडित राम स्वरूप रतौनिया का तबले पर बजाया रूपक ताल। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर किसान भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। आज किसान भाई सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का निर्धारित क्रम आपकी पाती आपकी फिल्मी गीत। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल वेब्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 3:02 हो चुके हैं मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5:00 अपनी सांधिकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

444 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में हम भोपाल से लेकर आएंगे युवा साथियों का मनचाह कार्यक्रम युववाणी। उसके पहले आप सुने न्यूज हेडलाइंस भोपाल से ही।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत पहुंच गए हैं, जहां वे आज 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने आज हजीरा का दौरा किया और औद्योगिक तथा अवसंरचना कार्यों की समीक्षा की। वे आज एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पौधा लगाया और लार्सन एंड ट्रूबो के आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से विश्व पर्यावरण दिवस पर जल, जंगल और जमीन के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में कहा कि पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत और वन्य जीव हमारे जीवन के आधार हैं। प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और जुड़े जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी प्रोग्राम 3.0 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में स्नातक 18 से 30 वर्ष तक के युवा 16 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां आज भी जारी हैं। मौसम विभाग ने भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के 45 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

साथियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के खास युववाणी कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं, साथ ही भेंट वार्ता और होंगे मनोरंजन के लिए गीत भी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारी इस चर्चा के साथ, जिसका विषय है विश्व पर्यावरण दिवस। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 1972 में की गई थी और पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सन 1973 को मनाया गया था। यह दुनिया भर में सबसे बड़ा पर्यावरण जागरूकता मंच है, जिसमें 140 से अधिक देश आधिकारिक रूप से भाग लेते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वच्छ हवा, पानी और सुरक्षित जैव विविधता के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती।

0: जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्लास्टिक प्रदूषण और वनों की कटाई जैसी गंभीर समस्याओं को नियंत्रित करने पर इस दिन विशेष मंथन होता है। हर वर्ष एक खास थीम निर्धारित की जाती है, जैसे प्लास्टिक प्रदूषण का अंत, ताकि एक निश्चित लक्ष्य पर काम किया जा सके। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए इस दिन व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाए जाते हैं और लोगों को पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह सिर्फ सरकारों का नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य तय करता है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करें और कचरे का उचित निपटान करें। यह दिन हमें वनों, प्राकृतिक संसाधनों और लुप्त प्राय जीव जंतुओं के संरक्षण के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का संदेश भी देता है। स्कूलों, कॉलेजों और कॉरपोरेट कार्यालयों में रैलियों, निबंध प्रतियोगिताओं और सेमिनारों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता है। इसका मूल मंत्र आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और हरा भरा ग्रह बचाना है, ताकि वे भी सुरक्षित वातावरण में सांस ले सके। साथियों, ये तो थी हमारी एक छोटी सी चर्चा विश्व पर्यावरण दिवस पर। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेकर चलते हैं आपको वार्ता की ओर। वार्ता का विषय है रील्स बनाम रियल और हमारा युवा। वार्ताकार हैं अदिति शुक्ला। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अदिति और आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 675 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो आज हर युवा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, रील्स की दुनिया, जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। यही रील्स की दुनिया का हमारे रियल लाइफ में क्या असर पड़ता है, आज हम बात करेंगे रील्स वर्सेस रियल की। दोस्तों, आज का समय डिजिटल युग का समय है। मोबाइल फोन अब केवल बातचीत का साधन नहीं रह गया है, बल्कि हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन गया है। सुबह आँख खुलते ही लोग सबसे पहले मोबाइल खोलते हैं और रात को सोने से पहले आखिरी बार भी मोबाइल ही देखते हैं। इन सब के बीच जो खाली समय मिलता है वो भी मोबाइल देखने में ही चला जाता है। और इस सब में सबसे ज्यादा अगर युवाओं को कोई चीज आकर्षित कर रही है तो वो है सोशल मीडिया रील्स। कुछ सेकंड की छोटी छोटी वीडियोस आज लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। मनोरंजन, फैशन, डांस, कॉमेडी, फिटनेस, शिक्षा, यात्रा, खाना बनाना, हर तरह की जानकारी अब रील्स के माध्यम से ही मिल रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम रील्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर रील्स धीरे धीरे हमें नियंत्रित करने लगी हैं? क्या यह केवल मनोरंजन है या फिर हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही हैं? आइए आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। श्रोताओं, अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो लोगों के पास खाली समय में करने के लिए अलग अलग चीजें हुआ करती थीं। कोई किताबें पढ़ता था, कोई दोस्तों के साथ समय बिताता था, कोई खेल खेलता था या फिर परिवार के साथ बैठकर बातें किया करता था। लेकिन आज की स्थिति काफी बदल गई है। जैसे ही लोगों को खाली समय मिलता है वे तुरंत मोबाइल खोलकर रील्स देखने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि केवल 2 मिनट के लिए मोबाइल खोलते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा निकल गया। यही रील्स की सबसे बड़ी ताकत है। ये वीडियो इतनी तेजी से बदलती है कि हमारा दिमाग लगातार नई चीजें देखने का आदि हो जाता है। वैसे रील्स का सकारात्मक पक्ष भी है। आज बहुत से युवा अपने हुनर को दुनिया के सामने ला पा रहे हैं। छोटे शहरों और गांवों के युवा भी अपनी प्रतिभा दिखाकर पहचान बना रहे हैं। कोई गाना गाकर लोकप्रिय हो रहा है, कोई डांस से लोगों का दिल जीत रहा है, तो कोई शिक्षा से जुड़ी जानकारी देकर दूसरों की मदद कर रहा है। आज कई शिक्षक भी रील्स के माध्यम से कठिन विषयों को

0: करियर बनाया है। कुछ लोग कंटेंट क्रिएटर्स बने, कुछ वीडियो एडिटर्स, तो कुछ डिजिटल मार्केटर्स और सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इससे यह साफ है कि अगर सही तरीके का उपयोग किया जाए तो सोशल मीडिया युवाओं के लिए नए अवसर के दरवाजे खोल सकती है। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। रील्स की दुनिया जितनी आकर्षक दिखाई देती है, वास्तविक जीवन उतना आसान और परफेक्ट नहीं होता। सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों की जिंदगी का केवल एक अच्छा हिस्सा दिखाई देता है। महंगे कपड़े, शानदार होटल्स, घूमना फिरना, लग्जरी गाड़ियाँ, हमेशा खुश रहने वाले चेहरे, ये सब देखकर कई युवाओं को लगता है कि उनकी जिंदगी दूसरों से कम अच्छी है। धीरे धीरे तुलना करने की यह आदत आत्मविश्वास को कमजोर करने लगती है। लोग सोचने लगते हैं कि वो दूसरों जितने सफल या सुंदर नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली जिंदगी पूरी सच नहीं होती। कैमरे के पीछे का संघर्ष, तनाव और मेहनत भी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। आज कई युवा केवल लाइक्स और व्यूज पाने के लिए अपनी असली पहचान बदलने लगे हैं। कुछ लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो केवल लोगों का ध्यान खींचे और दूसरों की नकल करते करते वो अपनी असली पहचान खोने लगे हैं। दोस्तों, आपने शायद ध्यान दिया होगा कि अब लोग किसी भी खूबसूरत जगह पर या तो घूमने जाएं या फिर परिवार के साथ बैठें, कैमरा पहले खुल जाता है। धीरे धीरे हम अपने पलों को जीने की जगह उसे रिकॉर्ड करने में ज्यादा व्यस्त हो रहे हैं। इसका असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ रहा है। पहले परिवार के लोग साथ बैठकर बातें किया करते थे, लेकिन अब कई घरों में सभी लोग एक ही कमरे में बैठकर भी अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। दोस्ती भी अब ऑनलाइन चैट और इमोजी तक सीमित होती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकता है। हर समय फोन चेक करना, नोटिफिकेशन का इंतजार करना और दूसरों से अपनी तुलना करना तनाव और चिंता को बढ़ा सकता है। कई युवाओं में अकेलापन की भावना भी बढ़ रही है। श्रोताओं, हमें यह समझना होगा कि तकनीक हमारे लिए ही बनी है, हम तकनीक के लिए नहीं। मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग तभी तक अच्छा है जब तक वह हमारी जिंदगी को आसान बनाए, ना कि हम पर हावी हो जाए। इसीलिए जरूरी है कि हम सोशल मीडिया का उपयोग संतुलित तरीके से करें। अगर आप रील्स देखते हैं तो अपने समय की सीमा तय करें। हर समय फोन हाथ में रखने की आदत को कम करें। दिन का कुछ समय मोबाइल के बिना बिताने की कोशिश करें। दोस्तों और परिवारों के साथ आमने सामने बैठकर बातचीत करें, किताबें पढ़ें, खेल कूद में हिस्सा लें, संगीत सुनें और प्रकृति के बीच में समय बिताएं। अपनी वास्तविक जिंदगी को सोशल मीडिया की दुनिया से ज्यादा महत्व दें। और सबसे जरूरी बात, खुद की तुलना किसी और से मत करिए। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है, हर किसी का संघर्ष अलग होता है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। दोस्तों, रील्स की दुनिया हमें मनोरंजन, जानकारी और अवसर देती है, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि हम उसका उपयोग समझदारी से करें। तकनीक तभी फायदेमंद है जब हमारे नियंत्रण में रहे। हमें डिजिटल दुनिया और वास्तविक जीवन के बीच सही संतुलन बनाना सीखना होगा, क्योंकि असली खुशियाँ लाइक्स और व्यूज में नहीं, बल्कि परिवार के साथ बिताए समय, सच्ची दोस्ती, अच्छे स्वास्थ्य और मन की शांति में होती है। तो आइए हम सब भी यह संकल्प लें कि सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे, लेकिन उसे अपनी जिंदगियों पर हावी नहीं होने देंगे। रील्स देखेंगे, नई चीजें सीखेंगे, लेकिन अपने वास्तविक जीवन और रिश्तों को कभी नहीं भूलेंगे। इसी संदेश के साथ मैं अदिति आप सभी से विदा लेती हूँ। यह कार्यक्रम सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
1: दोस्तों, अभी हमने सुनी ये वार्ता जिसका विषय था रील्स बनाम रियल।

और हमारा युवा, जिसमें वार्ताकार थी अदिति शुक्ला। आइए साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको लेकर चलते हैं हमारी अगली चर्चा की ओर, जिसका विषय है प्राकृतिक खेती। यह खेती रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और बाहरी आदानों यानी इनपुट्स पर निर्भरता को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखती है। इसका मुख्य उद्देश्य जैविक कचरे और प्राकृतिक पोषक तत्वों का उपयोग करके मिट्टी के स्वास्थ्य और सूक्ष्म जीवों को पुनर्जीवित करना है। इसमें फसलों की वृद्धि और कीट नियंत्रण के लिए गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़ और बेसन से बने जीवामृत तथा बीजामृत का प्रयोग होता है। यह प्राकृतिक दृष्टिकोण किसानों की खेती की लागत को लगभग शून्य कर देता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। यह विधि पर्यावरण के अनुकूल है, जो भूमिगत जल को प्रदूषित होने से बचाती है और जैव विविधता को बढ़ावा देती है। खेत की नमी को बनाए रखने और खरपतवार को रोकने के लिए मिट्टी को कार्बनिक पदार्थों से ढकने की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रणाली में पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, जिसमें वर्षा जल का अधिकतम और कुशल उपयोग सुनिश्चित होता है। प्राकृतिक तरीके से उगाई गई उपज रसायन मुक्त, पौष्टिक और मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। इसमें कम से कम जुताई की जाती है, जिससे मिट्टी की प्राकृतिक संरचना और केंचुए जैसे मित्र जीवों को नुकसान नहीं पहुंचता। इसमें मुख्य फसल के साथ अन्य सहायक फसलें और पेड़ भी उगाए जाते हैं, जो मिट्टी की नाइट्रोजन क्षमता को प्राकृतिक रूप से बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये तो थी एक छोटी सी चर्चा प्राकृतिक खेती पर। आइए श्रोताओं, आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी हमने जो ये गीत सुना ये था फिल्म रश से, जिसके गायक थे ऐश किंग, मुअज्जम और रिजवान अली खान, जिसके गीतकार थे आशीष पंडित और संगीत से सजाया था प्रीतम ने। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको लेकर चलते हैं हमारी अगली चर्चा की ओर, जिसका विषय है गांव के विकास में युवाओं की भूमिका। युवा किसान वैज्ञानिक तरीकों, जैविक खेती और ड्रम सीडर या ट्रैक्टर जैसे उन्नत उपकरणों का उपयोग करके कृषि उत्पादन को कई गुना बढ़ा सकते हैं। गांव में युवाओं द्वारा ग्रामीणों को डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन सरकारी सेवाओं जैसे आधार अपडेट, बिल भुगतान के बारे में जागरूक किया जा सकता है। शिक्षित युवा अपने गांव के बच्चों को मुफ्त ट्यूशन और मार्गदर्शन देकर शिक्षा का स्तर ऊपर उठा सकते हैं और ड्रॉप आउट दर को कम कर सकते हैं। युवा बढ़ईगिरी, सिलाई, कंप्यूटर जैसे प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करके अन्य ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। युवा स्वच्छता अभियान चलाकर शौचालय निर्माण को प्रेरित करके और स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर गाँव को बीमारियों से मुक्त रख सकते हैं। वृक्षारोपण, जल संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त गांव का अभियान चलाकर युवा पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। स्थानीय उत्पादों जैसे हस्तशिल्प, शहद, अचार को ऑनलाइन माध्यमों और सोशल मीडिया से जोड़कर युवा उन्हें उचित बाजार दिला सकते हैं। गांव में खेल के मैदानों का विकास करके और टूर्नामेंट आयोजित कर युवा पीढ़ी को नशे और गलत आदतों से दूर रखा जा सकता है। युवा ग्राम पंचायत और सरकारी अधिकारियों के बीच की कड़ी बनकर ग्रामीणों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिला सकते हैं। युवा वर्ग बाल विवाह, दहेज प्रथा और लिंग भेद जैसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। किसी भी प्राकृतिक आपदा या संकट के समय युवा दल वॉलंटियर के रूप में आगे आकर गांव की सुरक्षा और राहत कार्यों में भी अहम योगदान दे सकते हैं। कुछ इन कार्यों के द्वारा गांव के विकास में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बन सकती है। युवाओं को इस बारे में सोचना चाहिए। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी गांव के विकास में युवाओं की भूमिका विषय पर। आइए अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी हमने ये जो गीत सुना ये था फिल्म बॉबी से, जिसमें आवाज थी शैलेंद्र सिंह की, जिसके गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए साथियों, अब आपको दे देते हैं रोजगार सूचना भी। एसएससी सीजीएल यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन योग्य उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है ग्रुप बी एंड सी। पदों की संख्या है 12,256, जिसमें आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 32 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है, जिसकी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट यानी www.ssc.gov.in पर विजिट भी कर सकते हैं। ना चाहते हुए भी वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। दीजिए अनुमति अपने मित्र अनुपम खरे को। नमस्कार।

0: आकाशवाणी छतरपुर के योगदान के अंतर्गत कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था।
1: पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष भेंटवार्ता। पत्रकारिता से जुड़े संतोष कुमार गंगेले के साथ बातचीत कर रहे हैं महबूब आलम खान। तो लीजिए सुनिए ये विशेष भेंटवार्ता।
2: श्रोताओं, हर एक इंसान स्वस्थ रहने के लिए अपने स्तर से प्रयास करता है, चाहे वह व्यायाम के माध्यम से हो, खेलकूद के माध्यम से हो, योगा हो, और या फिर हरे भरे शुद्ध पर्यावरण के लिए यानी हरियाली हो, शुद्ध ताजी हवा हो। तो हरियाली हर एक इंसान चाहता है कि वो अपने आसपास लगाए, पेड़ पौधे लगाए, क्योंकि आजकल हम अपने आप ही यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कैसे, पेड़ काट करके। लेकिन पेड़ पौधों को लगाने के लिए हम पीछे हैं, जिससे पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। क्योंकि हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री संतोष कुमार गंगेले जी को, जो कि समाज सेवी हैं, तो उनके विचार हम जानेंगे। गंगेले जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: आदरणीय एम आलम साहब जी, आपका स्वागत और आकाशवाणी परिवार का धन्यवाद जो मुझे आज यहाँ कार्यक्रम में बोलने का अवसर मिला।
2: गंगेले जी, हमारे श्रोताओं को बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में थोड़ा सा विस्तार से।
3: सभी श्रोताओं को संतोष गंगेले कर्मियों का नमस्कार प्रणाम करता हूँ, और आपसे मेरा बहुत पुराना परिचय है, क्योंकि मैं 20 वर्षों से लगभग इसी क्षेत्र में काम कर रहा हूं। विद्यार्थी जीवन में गांव-गांव जाकर वृक्षारोपण करवाना, बच्चों को सफल संकल्प दिलाना, क्योंकि 1974 से सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से ये शुरू हुआ था
2: जी।
3: ये पूरे 143 देशों ने चिंता की कि भौतिकवादी युग में धीरे धीरे वृक्षों का विनाश हो रहा था
2: जी,
3: तापमान बढ़ रहा था और आवागमन के रास्ते बनने कारण वृक्षों की कटाई हुई, तो उस पर एक नियम बनाया गया जिसको भारत सरकार ने भी स्वीकार किया, और भारत सरकार के माध्यम से इसमें भारत सरकार में और प्रदेश सरकारों में वन पर्यावरण मंत्री होते हैं
2: जी,
3: केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, तो ये विभाग अलग होता है पर्यावरण संरक्षण का
2: जी।
3: इसमें साथ में प्रदूषण विभाग भी होता है
2: जी,
3: तो जिसमें हमारा जल, जलवायु, प्राकृतिक मौसम, इन सारी चीजों के लोगों को अवगत कराते हैं। और आकाशवाणी एक ऐसी संस्था है जो लगभग 100 वर्षों से इसी का काम करते थे। पहले आकाशवाणी पे लोग बहुत विश्वास करते, सारी चीज खारी कृषि काम करना, खेती लगाना, पौधे लगाना, कृषि का काम जो बताते थे विज्ञान, आकाशवाणी होती, तो मैं बचपन से सुनता था
2: जी, जी।
3: तो आज मुझे आकाशवाणी में अपने किसान के बेटे के होने के कारण मुझे अवसर मिला है
2: जी, जी।
3: तो मैं बताना चाहूँ कि पर्यावरण प्रकृति का वही कहा गया जैसे पुत्र है
2: जी, जी।
3: एक पुत्र को तो एक पुत्र ही होता है,
2: लेकिन
3: कहा गया है अपने बुंदेलखंड में कि एक पुत्र 100 पुत्रों के समान होता है।
2: बिल्कुल
3: ये, क्योंकि इसकी सताई होती है, इसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, ये दुर्घटना में नष्ट होता है।
2: बिल्कुल,
3: तो प्रकृति के द्वारा जो बनाया गया, और हमारी परंपराओं में, हमारे भारत की संस्कृति में वृक्षों का पूजन संरक्षण अनादि काल से रहा है। वट वृक्ष का पूजा होना, रक्ति की पूजा होना, बराबर सात की पूजा होना, और देखिए बेल की पत्ती का संरक्षण करना, नीम की पत्ती का संरक्षण करना, आम की पत्ती का औषधि करना, तो जितने फलदार हैं, इमारती हैं, कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण में एक पूर्ण सहयोगी है। लेकिन वर्तमान युग में मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही, आवागमन के रास्ते हो रहे, औद्योगिकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, विकास हो रहा है, तो जो गांव के लोग शहर की ओर आ रहे हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं कि आसपास के पेड़ों को ही नष्ट करते हैं
2: जी, जी।
3: कोई प्लाट खरीदा, उसमें 3 पेड़ लगे
2: जी,
3: पेड़ लगा नष्ट कर दिए,
2: मतलब गांव से चल करके जो शहर में आ रहे पलायन कर रहे हैं वो,
3: हाँ, वो पर्यावरण को नष्ट करते हैं
2: जी, जी।
3: और उसके साथ साथ उनके लगाने का उनका कोई दायित्व नहीं।

0: है, ये सरकार की पॉलिसी है। जैसे कोई टू लाइन बनती है, फोर लाइन बनती है, सिक्स लाइन बनती है,
1: जी जी,
0: तो उसके रास्ते में जितने पेड़ जाते हैं वो सरकार एग्रीमेंट तो करती है, लेकिन जो ठेकेदार होते हैं, मैंने देखा, मैं चूंकि मीडिया से भी जुड़ा व्यक्ति हूँ, समाज से भी हूँ, पूरे बुंदेलखंड का दौरा किया है, तो जितने पेड़ जो लगते हैं वो उस तरह के पेड़ नहीं लगते हैं। पेड़ लगते हैं जिस तरह के पशु पक्षी खाना पान पौधे फूल तो देते,
1: पहले जो पेड़ लगते
0: सारे इमारती थे,
1: जी जी,
0: इमारती लकड़ी होती थी, उसका काम होता था, उपयोग होता था, हर काम में आते थे, और उनकी 2700 साल की 200 साल की उम्र होती थी।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: मैंने एक जतारा तहसील में एक गांव है लिधौरा के बाद बारी,
1: जी
0: बारी में मैं हमारे परिवार के लोग रहते थे, तो हम वहां गए तो एक वृक्ष का पेड़ लगभग 3 एकड़ में फैला था, बरगद का,
1: जी जी जी,
0: उसके एक पेड़ की 15 पेड़ हुए
1: जी,
0: और कम से कम बहुत फैला था। ऐसे कई पेड़ हैं, जैसे आम है, आम बहुत बड़ा पेड़ होता है, जामुन का पेड़ है, जैसे भीषण गर्मी पड़ रही, तापमान अभी बुंदेलखंड का 48 पहुंच गया, बांदा का
1: जी जी,
0: नौगांव का 47, खजुराहो 47,
1: जी
0: इसका जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं
1: जी,
0: वो केवल वृक्षों को नष्ट करना और वृक्षों का संरक्षण न करना, दोनों कारण है
1: जी जी।
0: अगर हम वृक्ष काटते हैं तो एक वृक्ष काटे तो उसकी जगह 2 लगाने का संकल्प हो, हमारी
1: कोशिश तो यही करना चाहिए हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को, कि वो कम से कम अपने जीवन में एक पेड़ एक पौधा तो लगाए।
0: देखिए आदरणीय आलम साहब जी, मैं बताऊं, मेरी धर्म पत्नी का निधन हुआ
1: जी,
0: मैंने सबसे पहले संकल्प लिया कि उनको कैसे याद करें, कैसे जीवन करें
1: जी।
0: तो हमने अपने गृह ग्राम बीरपुरा में शमशान घाट मुक्ति धाम कहते हैं
1: जी,
0: वहां पर सबसे पहले उनके नाम से एक पेड़ लगाया
1: जी,
0: फिर उसके साथ हर साल एक पेड़ लगाने का प्रयास किया
1: जी,
0: पिताजी माता जी, तो हमने उनकी पुण्य स्मृति, जितने हमारे पूर्वज थे
1: जी,
0: उनको जीवंत रखने के लिए हमने पहाड़ियों पर वृक्षों लगाए, उनका संरक्षण किया
1: जी, जी।
0: मजदूर लगा के पानी किया और उनको बारी लगा संरक्षण, आज वो वहां पर हरियाली होगी
1: जी।
0: हमारे बीरपुरा गांव के ही एक ललित नायक जी हैं
1: जी,
0: वो एक स्कूल भी चलाते हैं, उन्होंने भी ये प्रेरणा लेकर के और पूरा संरक्षण किया। हमारे गांव के सरपंच श्री गोविंदा जी यादव थे, गोविंद यादव के नाम से थटेवा के, उनसे हमने सलाह ली सरकार की योजना के अनुसार, तो पूरे पहाड़ की फेंसिंग करवाई, आज वहां पर लगभग 500 पेड़ छोटे मोटे तैयार हो चुके हैं, पर्यावरण को संरक्षण दे रहे हैं
1: जी।
0: तो हम सुधरेंगे एक सुधरेगा, हम बल देंगे एक बल देगा,
1: बिल्कुल
0: अपना सुधार। इसलिए हमारा सभी जो श्रोता बंधु हैं जो सुन रहे हैं उनसे सबसे निवेदन, हाथ जोड़ प्रार्थना है कि आपके घर में कोई बालक का जन्मदिन हो तो आतिशबाजी और जो भोजन व्यवस्था करा तो ठीक अच्छी बात है, लेकिन उनके दाम जिस दिन पेड़ा हो उसे पौधे का रोपण करा
1: जी। अच्छा, बहुत से ऐसे भी पौधे हैं जैसे फलदार पौधे हैं या औषधीय पौधे हैं जिन्हें मतलब हम पहचानते ही नहीं है, तो ऐसे मतलब पौधों के लिए हम क्या कर सकते हैं?
0: देखिए जो अपने आयुर्वेद में व्यवस्था है दवाइयों की
1: जी,
0: इसकी एक चरक संहिता आती है
1: जी,
0: कहीं भी मिल जाती है, आजकल सारी चीज गूगल पे है, गूगल से आप पूछ लीजिए, तो जो पेड़ उनकी पहचान भी है, उनकी जानकारी भी उनको देखने का है। आज कितने भी आयुर्वेदिक में दवाइयां ऐसी हैं जो किसी बीमारी को ठीक नहीं कर पाती
1: जी,
0: लेकिन एलोपैथी में जो दवाइयां नहीं है वो आयुर्वेद में, जो आयुर्वेद में एलोपैथी नहीं, इसलिए दोनों सबसे ज्यादा जो थी आयुर्वेदिक में वृक्षों की पत्ती से ही काम होता था, वृक्षों की जड़ों से काम होता था, जो काढ़ा बनाया जाता था कोई भी होता था तो वृक्षों से होता है, जैसे त्रिफला है, हर बहेरा आंवला, ये त्रिफला आम चीज है बेट की जड़ के ठीक कर ली, तो ये हमारे बुंदेलखंड गौशाला नौगांव में है, वहां पर संजीव पाठक ने जब से काम संभाला था उन्होंने लगभग 500 पेड़ लगाए, हर तरह के पेड़ लगाए, एक भगवान सिंह परमार जी है ना उदय विद्यालय नौगांव सामने, उन्होंने भी 100 तरह की वैरायटी लगाई, एक गरौली के राजा थे भूतपूर्व विधायक श्री नन्नी राजा प्रताप सिंह जी, उन्होंने 500 वैरायटी के वृक्ष अपने बहुत बड़ी लंबी जमीन थी उसमें लगाया है
1: जी, जी।
0: तो बहुत लगाते हैं। एक छतरपुर में श्री राजेश अग्रवाल जी हैं जिन्होंने लगभग अपने जीवन में अभी 4.5 लाख पौधों का वितरण किया,
1: बहुत अच्छा,
0: ये मतलब परोपकार भी है
1: जी, जी।
0: और प्रेरणा देने वाला भी, तो ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए कि अपनी पुण्यतिथि जन्मतिथि शादी की सालगिरह में वृक्षारोपण करें, और जहां भी मकान बनाते हैं उसके आसपास में थोड़ी जगह छोड़ के रखें और गार्डन बनाए, वातावरण शुद्ध रहेगा, स्वच्छ रहेगा। जैसे नागफनी होती है, अगर हमने नागफनी लगा दी तो कोई नांग घर में नहीं आएगा, तुलसी का पौधा होता उससे मच्छर नहीं आते बैठते हैं ना कोई खाता है, तो कई सी ऐसी जैसे आपने कहा औषधियां भी हैं, तो औषधि भी है और इमारती लकड़ी भी है, तो हर तरह के वृक्षों की जानकारी और हर जगह बनवाग, जैसे अपने छतरपुर मध्य प्रदेश में श्री दिलीप अहिरवार जी वन पर्यावरण मंत्री हैं।

0: जी। तो जब से वो मंत्री बने वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारा मध्य प्रदेश का अच्छा हो, वनों की संरक्षा हो, कई केस भी उन्होंने दर्ज कराए हैं
1: जी जी।
0: तो इस पर भी पहल होना चाहिए।
1: अच्छा, शुरू में आपने बताया था कि मैं बचपन से ही मतलब समाज सेवा में लगा रहा, और तो कहाँ कहाँ आपने पौधरोपण करवाए, कितने पौधरोपण अब तक हो चुके हैं?
0: देखिए, हम जहां भी जिस हम चूंकि मेरा मोटिवेशन का काम है
1: जी,
0: स्कूलों में जाते, कॉलेजों में घर जाते हैं, तो हम जो बोलते शपथ लेना
1: जी,
0: और शपथ पर पालन के सबसे बड़ा अपराध और पाप मानते हैं हमें सामाजिक रूप से, ये कानून रूप से हो ना हो
1: जी जी,
0: तो हम बच्चों से बोलते हैं कि यदि आपने शपथ ली है
1: जी,
0: तो उसका पालन करिए।
1: बिल्कुल।
0: तो इस बहुत से स्कूलों में हमने पौधारोपण कराए, और हम जहां जाए बच्चे के जन्म हम साथ में भी ले गए तो वहां कराओ। आजकल तो सरकार ने नीति बना दी, चाहे यूपी हो चाहे एमपी, कहीं भी स्कूलों का बाउंड्री वाल संरक्षण होगा, तो काफी पौधारोपण वृक्षों के हो रहे, स्कूलों में बढ़िया बन गए। तो लगभग हम 11 जिलों में घूमे और हर स्कूलों में हमको पौधारोपण करवाया है और करवाते भी हैं, और जब तक जीवन रहे कराते भी रहेंगे। तो ये पहल होना चाहिए सभी की
1: जी,
0: हर विद्यार्थी की और हर शिक्षक की, हर मास्टर की, हर प्रोफेसर की, कि विद्यालय हरा भरा रहे, उसमें वातावरण अच्छा रहे, पर्यावरण संरक्षण रहेगा। एक आता है दूषित वातावरण, तो उसके लिए जैसे वर्तमान में प्लास्टिक चल गया
1: जी,
0: तो प्रदूषण को बहुत ज्यादा फैलाता है, नालियां चौक करता है, गंदगी फैलाता है, हर चीज कर रहा है। तो रीड्यूज मतलब कम उपयोग करें, रीयूज पुनः उपयोग करें, रिसाइकल पुनः उसका निर्माण किया जा सकता है। जैसे अपना जैसे उसमें आता है कागज है, धातु है और प्लास्टिक है, इनको उपयोग भी कर लेते हैं और इसको वैज्ञानिक तरीके पुनः उसका उपयोग करते हैं। लेकिन जो इसमें अपन डस्टबिन में चाय, उसमें कप में चाय पीते थे, उसका एक अलग मजा होता था। आज का जो डिस्पोजल में चाय पीते हैं उसमें कहीं ना कहीं केमिकल कुछ ना कुछ तो रहते ही है।
1: तो
0: धीरे धीरे स्लो पॉइजन जैसे बोलते हैं, धीमी गति से जहर देना
1: जी,
0: तो ये चीजें सामने आ रही हैं, इनसे बचना चाहिए
1: जी।
0: कम से कम अपने जो पत्ते होते थे वो करें, या बरगद के पत्तों की पत्तल बनाए, दोने बनाए, घर में उपयोग करें। अधिकांश था जैसे भी नौगांव नगर पालिका में एक अभियान शुरू किया आरएफसीडी ने, तो उन्होंने इसके थालियां, गिलास, कप, प्लेट सब वो स्थाई रखे, कभी कोई कार्यक्रम हो तो ले जाइए, जमा कर जाइए, स्टोर उन्होंने किया है इस तरह का, तो आने जाने का। तो ये कई जगह हुआ, कई समाज वाले लोग करते हैं, हर समाज में भी होते हैं, शादियां बहुत बड़े हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख, सबके यहाँ बर्तनों का स्टोर होता है समाज का, उसको ले जाए, साफ करके वापस कर जाइए। तो इसका बहुत अच्छा उपयोग करता है, इसलिए इस पर भी चलन पे ध्यान देना चाहिए कि इस पर हो। और विद्युत है, बिजली की बचत करना, ये भी बहुत जरूरी है, पर्यावरण में आता है कि बिजली का खपत कम है, जैसे आजकल पेट्रोल डीजल की बड़ी दिक्कत जा रही है, गैस की जा रही है, अब गैस पर काम पानी कम करना है, पानी गर्म कर लिया और जल रही गैस, तो धीरे धीरे ये मत सोचो, धीरे छोटी छोटी सी बचत, जैसे चींटी होती है, चींटी का एक काम है जो अपने जीवन का एक पर्यावरण उसका पर्यावरण है, संरक्षण है, कि वो अपना भोजन बरसात के दिनों के इकट्ठा अंदर जमीन में करके रखती है और समय पर काम आता है। तो जब हमारे जीव जंतु अपना जीवन समझते कैसे जीना है,
1: उनसे सीख लेना चाहिए,
0: तो उनसे सीख मनुष्य को भी लेना चाहिए कि भाई हमको भविष्य में हमारे बच्चे क्या करेंगे, अगर हम गंदगी फैलाएंगे, पर्यावरण नष्ट करेंगे, पौधे नहीं लगाएंगे, वृक्ष तैयार है, तो कैसे होगा
1: जी। अच्छा, बीच में आपने जल संरक्षण की भी बात की थी कि बहुत से ऐसे पौधे हैं जो पानी ज्यादा मतलब लेते हैं और पानी बेकार जाता है कई पौधों में, तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पौधों जो ऐसे बहुत से पौधे ऐसे हैं कि जिनको लगा दो एक बार
1: जी,
0: और बरसात तैयार हो जाए फिर वो सूखते नहीं है, और बहुत से पौधे जिनको अपन को देख रेख करना पड़ती है। तो जब तक जैसे अपन बच्चा है छोटा, तब तक वो आंचल में माँ के है, तो माँ उसका ध्यान रखती है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है, तो उसको देखने की आवश्यकता स्वयं हो जाती है। तो पानी कम खाने वाले पौधे अधिकांश अपनी बुंदेलखंड में पाए जाते हैं
1: जी,
0: जो पानी को बचाते हैं। जैसे एक कहावत है कि बुंदेलखंड एक तुलसी बिरवा, बिरवा माने बाग, तुलसी बिरवा बाग के सींचत में कुमलाएं और राम भरोसो वे रहे सो पर्वत पे हरियाणा, पहाड़ों पर बड़े बड़े आपने देखा वृक्ष लगे, वहां कोई पानी देता है
1: नहीं, कोई
0: गति देती है, लेकिन उनको हम नष्ट कर देते हैं, उनका तो उसके अंग भंग कर देते हैं, पेड़ वृक्ष के तो सूख जाते हैं,
1: वो सूख जाते,
0: तो इसलिए उसको अंग भंग नहीं करिए। जो प्रकृति ने जिसका स्वरूप दिया है, अपने शरीर में जितने भी अंग है, वो अभी हमें भी अर्थ नजर नहीं आता, वो 206 अंग हो चाहे कितने भी हो, कितने भी अंग है, इस प्रकार से वृक्ष भी एक पुत्र के समान है। उस पौधे का संरक्षण करना, उनका पालन पोषण करना, उनको तैयार करना, और वृक्ष

0: ऐसे हैं कि आप पत्थर मारो तो फली देते हैं। कहा है कि खल के वचन संत जैसे बूंद गां सहेंगर कैसे, पेड़ पौधे तो अपन को ऑक्सीजन भी देते हैं, फल भी देते हैं, प्रकृति देते हैं, लकड़ी भी देते हैं। लकड़ी हर काम में आती है, क्यूलाई बनता है, जमीन बनती है, फर्नीचर बनता है, लेकिन उनका विनाश ना हो,
1: विनाश ना हो,
0: इसलिए उसको संरक्षण करना है। कई सी प्रजातियां खत्म हो रही हैं तो उन संरक्षण करना है। बड़े बड़े बाग बगीचा होते थे, अमरूद आते थे, आम आते थे, बेर होते थे, मकुनिया होती थी, खजरी होती थी, तेंदू होते थे, ये अपने क्षेत्र से विलुप्त हो गए। क्यों हो गए? धीरे धीरे काट दिए, लगाए नहीं। ते प्रजातियां सब केवल इतिहास में किताबों तक देखने को मिलती है।
1: जी जी। अच्छा, और क्या उपाय हम कर सकते हैं इनको, पर्यावरण को बचाने के लिए?
0: देखिए, पर्यावरण के लिए सरकार की योजना है और भारत सरकार की योजना चल रही है। सरकार जनभागीदारी के माध्यम से भी पेड़ लगाते हैं, नगरपालिका भी करती है कि पेड़ का संरक्षण करिए, गार्डन हम देंगे।
1: जी।
0: इससे अच्छी सुविधा क्या होना है?
1: बिल्कुल।
0: अब सरकार की योजना है, आप उसको ले आइए, जनभागीदारी कहलाती। पेड़ आप ले आए और लगा लें, संरक्षण के लिए सरकार पैसा देती है। बड़े बड़े अभियान चल रहे हैं, छतरपुर जिला कलेक्टर महोदय हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, डीआई छतरीपुर के हैं, उन्होंने संरक्षण शुरू किया, पर्यावरण संरक्षण पर काम कर रहे, गोष्ठियां करा रहे, स्कूलों में जागरूकता फैलाई जा रही है, महाविद्यालय फैलाई जा रही है, लोगों को किसी भी कार्यक्रम होती है, राष्ट्रीय सेवा योजना है, एनसीसी है, एनएसएस है, जिसके माध्यम से बच्चों को जागरूक करते वृक्षण के। यहाँ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, उसमें हमने देखा है स्वयं जाकर के, हजारों पेड़ लगा दिए गए, बाउंड्री वाल भी करोड़ों रूपये लगाकर बाउंड्री वाल बनाई, तो वो पेड़ जो अंदर लग गए उनको केवल देखना है और समय पर पानी देना है, जब तक वो पर्वत स्वयं नहीं हो जाते। उसके बाद पेड़ अपने लिए छाया भी देंगे, फल भी देंगे, सुरक्षित रहेंगे। इन पे ध्यान देना जरूरी है। और बस भर हमारा ये कहना है बुंदेलखंड वासियों से कि आकाशवाणी के माध्यम से जो आपको जानकारी मिले उनको लिख लिया करे, या पेन और डायरी लेके बैठो, अगर कोई अच्छी बात आती है तो लिखिए। मैं यही करता हूँ, अगर कोई विद्वान कोई बोलता है तो उसको पेन और डायरी हमारे साथ में कलम में रहती है, पत्रकार तो रहते ही है, तो अच्छा लगा तो वो शब्द लिख लिया, वो उस पर काम आएगा। इसलिए मील का पत्थर जो होता है वो रास्ता तय करने के लिए आपको मार्गदर्शन देता है।
1: बिल्कुल।
0: तो आकाशवाणी का जो रेडियो स्टेशन छतरपुर है वो व्यक्ति को मील का पत्थर है।
1: जी, जी, जी।
0: जीवन जीने की कला सिखाता है, आपको सांस्कृतिक ज्ञान देता है, संस्कृति ज्ञान देता है, अध्यात्मिकता ज्ञान देता है, आपको खेती किसानी कैसे करना है, बच्चों को पढ़ाई कैसे करना है, ये सारी गतिविधियां आकाशवाणी से है और आकाशवाणी के माध्यम से सब चीज मिलती है।
1: अच्छा, जैविक खेती की बात की जाए, यानी ये भी एक पर्यावरण का एक अभिन्न
0: अभिन्न। बिल्कुल, जैविक खेती का मतलब ये है कि हमारे जो बाप दादा थे, पुरखे थे
1: जी,
0: वो अपने घर में जानवर पालते थे
1: जी,
0: और बकरियां रहती थी, गाय रहती, सब रहती थी
1: जी,
0: वो साल भर उसका खाद इकट्ठा करते थे। और जब वो इस समय जैसे गर्मी हो गई, किसान फुर्सत में हो गया, तो उसको बैलगाड़ियों के माध्यम से या किसी माध्यम से ट्रैक्टर के माध्यम से खेतों में उसको खाद को डाला करते थे, और डालते जब पानी गिरता था तो वो सड़ जाता था, पहले सड़ता फिर सड़ता। और ये होता था, हमने देखा अपने, हमारे जो दादाजी वगैरह थे, नानाजी वगैरह थे, कि एक बार किसी खेत में अगर देसी खाद गिर जाता था, गोबर का खाद, लाख का खाद, जली हुई लकड़ी का खाद, ये खाद, तो पांच पांच साल तक अपने को खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। एक खुड्डी होती थी
1: जी,
0: खेतों को खुदवाई जाती थी, तो उसमें जो जैसे पहले शौचालय होते थे
1: जी,
0: तो इसमें शौचालय का जो होता था वो उसमें उसका खाद बना के उसको भी डालते, तो जैविक खाद। अब जैविक खाद बना रहे लोग, अभी काम काम चल रहा है, केंचु का बनाना खाद, उसका बनाना बाजार में महंगा बिकता है जो उसकी, लेकिन उसकी सब्जियां हैं जो तीन गुनी महंगी हैं।
1: जी जी। अच्छा, बीच में बात आई थी पर्यावरण की, तो चूंकि पर्यावरण पे बात चल रही है और पॉल्यूशन पे, प्रदूषण पे, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं, उनका जो पोल्यूशन का जो धुआं निकल रहा है, मतलब फैक्ट्रियों का, और उनका जो पानी, केमिकल का जो पानी निकल रहा है, तो उससे भी पर्यावरण पर गहरा असर पड़ रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
0: इस पे सरकार के नियम बहुत कठोर बने हैं, कड़े बने हैं
1: जी,
0: लेकिन उसका हर अधिकारी पालन कराने में थोड़ा पीछे ऐसे हट जाते हैं कि इतनी फैक्ट्रियां लग गई, इतनी प्रदूषण फैल चुका है चारों शहरों में, हर चीज का उत्पादन हो रहा है, बड़े बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, बड़े उद्योग फैक्ट्री लगी हैं, सबसे ज्यादा ये पन्नी का सिस्टम बदल गया, हर काम पन्नी में है, जबकि सरकार चाहती है और हम लोग समाज का पहले थैला लेते थे, हर चीज कपड़े का होते थे, छाता होते, सब चीज आजकल हर चीज प्लास्टिक की आ रही है,
1: विलुप्त हो रही है,
0: विलुप्त हो रही है, तो उसको बचा

0: आने का फिर से एक अभियान होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा कपड़े का थैला उपयोग करें, बरसाती ना लेके आए। अगर सब्जी ले जाते तो आपने 10 तरह की सब्जी ली तो 10 पॉलीथिन आपके घर में आ गई, और वो थैला होता था उसमें एक तरफ टमाटर डाल लो, धनिया डालो, मिर्च डालो, ना खराब होते थे ना कुछ होते थे ना उगलते थे। अभी आपको बताया हमें एक बहुत बड़ी उदाहरण है, जैसे मार्केट से आप जलेबी खरीदे और तो उसको तुला लीजिए और बरसाती में रख दीजिए, घर आते आते वो हलवा बन जाते, लग जाते पूरे समोसे हैं कोई, उसका पूरा स्वाद ही खत्म हो जाता
1: है।
0: तो ये बहुत उसका जो प्रदूषण फैल रहा है, छोटी छोटी बातों को ध्यान देना होगा हमें सबसे पहले प्रदूषण बंद करने का।
1: कोशिश हमारी ये होना चाहिए कि हम हर एक पौधा लगाएं, तो पर्यावरण को और संरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय हम लोगों को करना चाहिए ये थोड़ा सा बताइए।
0: देखिए सबसे पहले जो नीतियां हैं कि हम जैसे कोई भी कोई खेती अपने पास है या जमीन है मकान है तो उसमें सबसे पहले जो बाजार मार्केट जो नर्सरी होती है नर्सरी में जाइए, आपको हर तरह के पौधे मिलेंगे। उन पौधों में से आपको च्वाइस करना है कि हम कौन से पौधे घर में लगाना है, क्या करना है। जैसे आपने नींबू का पौधा लगा दिया तो नींबू भी अच्छे देगी, फल भी है उसका, रसायन भी होता है, उसके वातावरण भी लगता है, अमरूद भी हैं, आम भी हैं, जामुन भी है, इमली है, अतूत है, जितने भी चीज है, महुआ है, महुआ सबसे कठोर माना जाता है, उस बहुत बड़ा वृक्ष होता है, लेकिन उसमें सब तरह की उसमें उत्पादन भी है, महुआ का फूल का भी उत्पादन है, फल का भी उत्पादन है, उसकी गुली आती उसका तेल बनता है उसका भी उत्पादन है, इसी आम का भी देखो उत्पादन चल ही रहा है, जामुन का भी गुठली का है, छार बनता है पेट की दवाएं। तो ऐसी कोई वृक्ष भारत में नहीं है, दो चार वृक्ष जो हो सकते, जैसे आपने पहले कहा है कि पहचान कैसे हो, तो कुछ पेड़ों की भी जो जहरीले होते हैं उनकी पहचान करके उनसे दूर रहने का जरूरी है, जैसे नांग से सांप से जहर से दूर रहते हैं ऐसे उनसे बचे। बाकी 99% पौधे समाज को देश को मनुष्य के जीवन के लिए दिए। देखिए भगवान राम 14 साल वनवास पर रहे, उनने कभी रोटी नहीं बनाई, न चावल बनाए, ना उनने कभी दाल बनाई, वो तो फल फ्रूट खा के ही रहे 14 साल रहे। और अभी भी बहुत से वनवासी हमारे जो है आदिवासी परिवार हैं वो जंगलों में रहते हैं, इतने तरह के इमारती वृक्ष पौधे 12 महीने पौधे होने वाले हैं, उनका उपयोग करते हैं। तो वृक्ष लगाना चाहिए, मैंने कहा कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम तो हमने तो भैया अपने बच्चों के हर बर्थडे पे लगाते, अपने भी हमारे बच्चा हमारे बर्थडे पे पौधे लगाते, हमारे जितने परिवार में गमी उनके पुण्यस्मृति लगाते हैं और संरक्षित करते हैं। आज हमने आपको दिखाया है कि हम हमारे बीरपा की पहाड़ी है उस पर सैकड़ों पेड़ खड़े हैं, और जहां जहां हम जाते बहुत से लोग ऐसा नहीं है अपनी हम क्या अपनी कहें, पूरे बुंदेलखंड में वृक्षों की कमी नहीं है, लेकिन वृक्ष सबसे ज्यादा हाईवे पे काटे जा रहे हैं।
1: जी जी,
0: इसको सरकार को भारत सरकार को चिंता का विषय है, हमसे उन्हें एग्रीमेंट करें कि 160 फुट के बाद वो पेड़ लगाने का उनका नियम है, मध्य सड़क से 160 फुट दूर लगाएं, क्योंकि इसलिए सरकार नीति करती है कि पौधे पेड़ लगा दिए, हाईवे गाड़ी 100 की स्पीड गिरेगा, आंधी में टूट जाएगा, दुर्घटना होगी, तो उनका छोटे पेड़ लगा दे। लेकिन उसका यह है कि एक संरक्षण भी किया जाए, कहीं कन्या कहीं इसके बदले में इमारती वृक्षों के लिए प्रोत्साहन दे, जैसे जिससे कि जो जिसके यहाँ जितने बगीचे हों और अच्छे इमारती पेड़ तो उनको प्रोत्साहन करने किसान की योजना भी चलाना चाहिए। तो अगर पर्यावरण संरक्षण में पहले जब हम लोग रोडों में जाते थे तो दोनों तरफ पेड़ इतने सुंदर स्वच्छ बड़े बड़े होते थे कि पता ही नहीं चलता था गर्मी है, और बस चाह जाए सो जाओ। अच्छा, सोने के लिए आम का वृक्ष, नीम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, जामुन का वृक्ष, ये सबसे लाभदायक होते थे। तो पर्यावरण का सबसे जो सबसे बड़ी जड़ है वृक्षारोपण ना करना, और वृक्षारोपण केवल करना, फोटो खिंचवाना, वीडियो डालना, रील बना के डालना, इससे आपको व्यूजर तो मिल जाएंगे, दर्शक मिल जाएंगे, लेकिन समाज का और राष्ट्र का विकास होने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों हमारा कहना है कि वीडियो फोटोग्राफी से बचे, हम इसके खिलाफ नहीं है, फोटोग्राफी करें, वीडियो करें, लेकिन उसको जीवन में पालन करें। अगर आप
1: यानी आपने पौधा अगर लगाया है उसका, तो उसकी देखभाल करें
0: बस बच्चे की तरह।
1: जी जी बिल्कुल,
0: जिस प्रकार से बच्चे को कष्ट नहीं कर दे, सदा करत तिनकी रखवाली जिन बालक राखत मेहता, जैसे माँ बच्चे को रखती है, तो जो भी लगाता है पौधा उसको अगर लगाते हुए ईमानदारी से तो उसका संरक्षण मत करिए।
1: जी, यानी पहले जो कच्चे मकान हुआ करते थे तो हर एक आंगन में एक पेड़ लगा ही रहता था, और वो मतलब साया देता था, हवा देता था, और शुद्ध हवा देता था, व्यक्ति शुद्ध मतलब स्वस्थ रहते थे। और अपने पर्यावरण को भी देखभाल करते रहते थे।
0: बिल्कुल अच्छी आपने

0: बात की
1: जी।
0: मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे घर में भी सब कच्चे मकान थे, मैंने कच्चे मकान सोया हूँ। हमारे बब्बा लोग जो दादाजी लोग थे वो हर जगह नीम का और आम का और महुआ के पेड़ लगाते थे। उससे क्या फायदा होती थी कि मकान में करी बनाना, पटिया निकालना, बैलगाड़ी चलाना, बैलगाड़ी बनाना वो भी होती थी
1: जी, जी।
0: साथ में मकान की छुड़ाई होती थी। दूसरा ईंट भट्टा पाटना है, खपरा फाते जाते थे, ननिया पाती जाती थी बुंदेली भाषा में, वो उसी लकड़ी से होती थी
1: जी।
0: और उस पेड़ को छटाई करते थे और फिर से वो उगे आते थे। और अगर जो पेड़ गिर गया आंधी तूफान में उखड़ गया तो उसकी जगह एक की जगह दो पेड़ लगाते थे,
1: दो पेड़ लगाए जाते।
0: तो ये परंपरा हमारे पूर्वजों की थी
1: जी, जी।
0: अब पूर्वजों का ना तो कोई ध्यान दे रहा, अगर हम किसी बच्चे से पूछे कि आपके ग्रैंडफादर का नाम क्या, तो उसको वही पता नहीं, मालूम नहीं। जब जिसे अपने दादा दादी का नाम याद नहीं है, नाना नानी का नाम याद नहीं है, तो वृक्षों की परंपरा सदर उधर कैसी कहे। तो ये हमारे अभी हमने परसों एक वीडियो डाला है
1: जी, जी, जी।
0: हमने उससे निवेदन किया कि भैया कि कम से कम संयुक्त परिवार प्रथा भी लागू करिए, आप कितना ही पैसा कमाइए लेकिन शाम का एक टाइम का भोजन पति पत्नी बच्चों के बीच बैठे, उनकी समस्याओं को सुने, पर्यावरण के बारे में बताएं, जीवन के बारे में बताएं, योग करें, निरोग रहें और सवेरे का घूमना सबसे बड़ा। जैसे मेरी ही उम्र देखिए अभी 70 साल की हो गई, निरोगी होना, हमें कोई से शुगर नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं, इसलिए 70 साल की उम्र कोई बीमारी इसलिए नहीं है कि हम प्रकृति के साथ चलते हैं, पर्यावरण के साथ लेके चलते हैं। और हमने कई पेड़ लगाए, हमने घरों के आसपास भी पेड़ लगा रखे और नीम की पत्ती लगा रखी, तो नीम की पत्ती खाना, पेड़ों को लगना, घूमना, संरक्षण करना, ये हमारा काम है। तो हर व्यक्ति को ही करना, हम अपना सुधार सबसे बड़ा, जीवन है सबसे बड़ी पूंजी है
1: जी, जी। यानी पहला सुख निरोगी का है,
0: निरोगी का। दूसरा धन संपत्ति आया, तीसरा सुंदर नारी, चौथा पुत्राज्ञाकारी। बुंदेलखंड में आज विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून पर हम यही चाहते हैं, सबको संदेश देना चाहते हैं आकाशवाणी छतरपुर के माध्यम से कि आप भैया हरो सब लोग, हम और एम आलम साहब बैठे हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, काल करे सो वाज करो, आज करे सो अब, अपना पल में पल रहो, बाहर करेगा कब, क्योंकि जिंदगी का ठिकाना नहीं,
1: कोई ठिकाना।
0: लेकिन ये स्टैचू और फोटो पे मरने के पहले एक वृक्षारोपण कर जाओ, पेड़ पड़ेंगे, हजारों लोग उसका लाभ उठाएंगे और आपका नाम भी होगा।
1: तो श्रोताओं, आदरणीय गंगिले जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी पर्यावरण विषय के संबंध में, उसके फायदे के बारे में बताया, उसके नुकसान के बारे में बताया, ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताया, और इसके अलावा जो लाभ हैं वो भी बताए, औषधि के बारे में बताया। तो हम और आपको ये प्रयास करने होंगे और जरूर करने होंगे कि हम और आप एक पौधा जरूर लगाएं, और ये कोशिश करें कि खाली फोटो न खिंचाएं, बल्कि ये कोशिश करें कि हम उसको पौधे को लगाएं और उसका पालन पोषण करें, और जब वो पेड़ बन जाए तब अपने आप पे छोड़ दें, ठीक है, लेकिन उसकी देखभाल जरूर करें। तो आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू, आपको भी बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस पर पत्रकारिता से जुड़े संतोष कुमार गंगिले से मरगूब आलम की बातचीत। मीडिया वेब पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में शाम 6 बजे हम भोपाल से लेकर आएंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। उसके पहले भोपाल से ही सुनिए न्यूज हेडलाइंस।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया अभूतपूर्व चुनौतियों के दौर से गुजर रही है। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है और गैस सप्लाई चेन चरमरा रही है। मुझे इस बात का संतोष है कि 140 करोड़ भारतीयों की साझा प्रयासों से देश ऐसे हर संकट का मजबूती से सामना कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में अधोसंरचना विकास को पर्यावरणीय संवेदनशीलता और दीर्घकालिक सतत विकास की अवधारणा के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश सरकार की प्राथमिकता आधुनिक सड़क एवं परिवहन नेटवर्क के निर्माण के साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और हरित विकास को बढ़ावा देना है। भारत के यात्री वाहन बाजार में मई माह में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री दर्ज की गई है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद यह वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन अगले महीने की 31 तारीख तक खुले रहेंगे। गृह मंत्रालय

ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं जो 15 मार्च से शुरू हुई हैं वे केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी और प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और इनसे जुड़े जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
1: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
1: और डोंडी दोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मीराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे नामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
1: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शैडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
1: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
2: जी,
1: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
2: जी,
1: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
2: जी,
1: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
2: श्रोताओं, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
1: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
2: क्या बात है।
1: इसीलिए तो यहाँ कुछ

0: वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
1: क्या बात है श्रोताओं, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया की सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
0: और श्रोताओं ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
1: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
0: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है। यहाँ आज भी लोग पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं। इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
1: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है। यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800044559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
0: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है। नकली हीरे।

0: आनंदपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की
3: जय। अच्छे से शासन कर रहे
4: खास ऐलान।
1: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
5: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए,
1: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
5: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
6: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
7: निसंदेह महाराज, आप संसार में बुद्धिमान, सारे संसार

0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
2: जी महाराज।

0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
2: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
2: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
2: धन्यवाद महाराज।
0: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
2: भाई, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
3: मुझे भी कैसे हो सकता है?
2: क्या क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली? तुम
3: नकली
2: फिर आया था?
3: नकली हीरा तो सकता?
2: नकली कैसे हो गया? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया,
3: सभी ने बोला कि नकली है।
4: महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय!
1: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
2: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ लें। महाराज
1: कहिए। मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
2: धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरो की जांच जोहरी से कराई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरो तो नकली है महाराज।
1: क्या? और कोई शंका?
2: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
1: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सर

0: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
1: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलारू मैं, चंचलू मैं, जल्दी सीख भी जाती हूँ।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्ता पूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन

ना चुटता है, उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है, इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं, इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं, पूरे घर की सफाई की जाती है, इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं, नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उपनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं, उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।

समय पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है मुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। आज इसमें कलाकार हैं बबली शमा और गफूर खान। तो लोकधारा कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं बबली शमा और गफूर खान से ये युगल लोक शैलीबद्ध गीत।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: लोकधारा में लीजिए अब सुनिए एक और लोक शैलीबद्ध गीत बबली शमा और गफूर खान से।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: इस अंतराल के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको अब सुनवाते हैं एक और ये युगल गीत बबली शमा और गफूर खान की आवाज में. तो लीजिए सुनिए ये लोकगीत.

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: लोकधारा कार्यक्रम में लीजिए सुनिए बबली समाज से ये कछियाई।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: लीजिए अब सुनिए बबली शमा से ये चेतावनी।

इसी लोकगीत के साथ बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा समाप्त होता है। आज इसमें कलाकार थीं बबली शमा और गफूर खान। ढोलक पर संगत कर रहे थे मुन्ना विश्वकर्मा और बैंजो पर संगत कर रहे थे राजा राम विश्वकर्मा। बांसुरी पर थे मनोज कुमार। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब आपको बता देते हैं आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ देर बाद शाम 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। इसमें आज मुख्य आकर्षण होगा मानस प्रवचन। प्रवचनकर्ता होंगे महेश कुमार अवस्थी और प्रसंग होगा राजा दशरथ का पुत्रोत्पत्ति यज्ञ। साथ ही सुनेंगे एक भेंटवार्ता, पशुपालक अनिरुद्ध सिंह से बिरजू भैया की बातचीत और आज की सीख में सुनेंगे जिनके मन है लालची गिनना ठोर कुठोर कंचन मन में भी मिले तुरंत उठावट दौर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए रात 8:35 पर और 9:30 पर। 10:00 सुनेंगे नाटक फिल्मी चक्कर। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में सुनिए राग शुद्ध नट मल्लिका अर्जुन मनसूट का गायन। ये तो थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। अब कल आप सुनेंगे प्रातः 7:20 पर बुंदेली सुगंध में सुनिए संतोष सिंह राय से वार्ता बुंदेली का पाठ। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए सुबह 7:00

तीस मिनट पर, शाम 5:30 पर और रात 8:35 पर। सुबह 8:30 पर सुनिए कार्यक्रम गीत गुंजन। 9 बजे लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में कलाकार होंगे अनिरुद्ध सिंह राय। 9:30 पर सुनिए आपके पत्र और ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का साप्ताहिक संयोजित कार्यक्रम जब आप गुनगुना उठे, प्रस्तुति रविन्द्र प्रजापति की होगी। 10:05 पर रसावतरण में सुनिए कवि गोष्ठी। कल आकाशवाणी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम प्रसारित करेंगे 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात हम आपकी गीत हमारे कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनेंगे। दोपहर 12 बजे और 2:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से 12:30 पर तीनों कार्यक्रमों की प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की होगी। महिला कार्यक्रम सुनिए दोपहर 1 बजे, प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की होगी। 1:30 पर लोक संगीत और 1:45 पर होगा सुगम संगीत। दोनों कार्यक्रमों में प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की होगी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए दोपहर 2 बजे। शाम 5 बजे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की होगी। शाम 6 बजे सुनिए सुगम संगीत, इसमें कलाकार होंगे चंदू आत्मा। 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों कार्यक्रम लोकधारा में कल कलाकार होंगी ब्रजलता मिश्रा। शाम 7:20 पर होगा कार्यक्रम ग्राम सभा, इसमें आप सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स और पत्रों पर फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम हेलो लोकरंजन, प्रस्तुति रामकुमार प्रजापति की होगी। साथ ही होगी आज की सीख। कल रात 8 बजे से विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष युवा शक्ति आकाशवाणी की भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। रात 9:30 पर राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10 बजे से हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अब आपको दे देते हैं गुमशुदा सूचना। गुमशुदा हुई व्यक्ति महिला का नाम है महक, ये बालिका का नाम है महक, ये इनके पिताजी का नाम है जावेद अली। सूर्यनगर उरई तहसील उरई थाना कोतवाली उरई जिला जालौन की निवासी हैं। ये जालौन से ही इंटर कॉलेज से 9 मई 2026 को लापता हो गई हैं या किसी के साथ चली गई हैं। तब से ये स्कूल गई थी तब से इनकी कोई सूचना नहीं है। इनका हुलिया हम बता दें तो ये इनकी उम्र 16 वर्ष है, रंग गोरा है, लंबा चेहरा है, लंबाई करीब 5 फुट 2 इंच है और आंख कान नाक गोल हैं। और जब ये लापता हुई थी तो उन्होंने काले रंग का नकाब या कहें कि बुरका पहना हुआ था। जिस किसी को भी ये दिखाई दें, इनके बारे में कोई भी सूचना मिलती है तो आप इस नंबरों पर सूचना दे सकते हैं। पहला नंबर है 9777073490। दूसरा नंबर है 9369092359। इसके साथ ही एक गुमशुदा सूचना और है। गुमशुदा हुई बालिका का नाम है राधा देवी, ये निवासी महेवा थाना कालपी जनपद जालौन की हैं और इनके पिताजी का नाम जन्मेजय है। ये 6 मई 2010 को इनका जन्म हुआ था। इनकी उम्र 16 वर्ष है, ऊंचाई 5 फीट 2 इंच है, शरीर की बनावट सामान्य है, चेहरा गोल है और रंग गोरा है, इनके घने काले बाल हैं। और जब ये लापता हुई थी तो उन्होंने काला लोवर और पेंसिल रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। मानसिक स्थिति ठीक है। ये 12 मई 2026 से लापता हैं अपने घर के आसपास से ही। जिस किसी को भी ये दिखाई दें या कोई सूचना मिलती है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचना दे सकते हैं। नंबर इनके पिताजी का 6386992833। दूसरा नंबर है कोतवाली का कालपी का 7355435048। एक नंबर और है 9454403596। जिस किसी को भी इनको इनके बारे में कोई भी सूचना मिलती है, कहीं भी दिखाई देती है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो गुमशुदा सूचना अब समाप्त हुई। मिनी वेब पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कुछ ही पल में भोपाल से सुनिए प्रादेशिक

0: समाचार।
1: यार सच बताऊं,
2: अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में 18,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने वन मंत्री भूपेंद्र यादव का लेख साझा किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरगन ने आकाशवाणी परिसर में पौधा लगाया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल में किया एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ। और इंदौर में 9 जून से होगा अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन, तैयारियां अंतिम चरण में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर सूरत पहुंचे श्री मोदी ने कहा कि गुजरात ने नवीकरणीय ऊर्जा में कई साल पहले ही बड़े कदम उठा लिए थे और देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क भी यहीं के पाटन जिले में लगाया गया था।
1: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था।
0: सूरत के बाद श्री मोदी दमन भी जाएंगे, जहां करीब 2,970 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य और विमानन क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। इसके अलावा वे लक्षद्वीप के लिए कई अहम समुद्री परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया। इस लेख में श्री यादव ने पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जनभागीदारी की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरगन ने नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस के राज्यस्तरीय समारोह में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 8 श्रेणियों में 11 राज्यस्तरीय पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए गए। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा और रोपे गए पौधों की जियो टैगिंग कर उनकी निगरानी की जाएगी। डॉ यादव ने भोपाल स्थित अपेक्स बैंक परिसर में हरित सहकार अभियान की भी शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कोलारस की चीनी फैक्ट्री को दोबारा चालू करने और किसानों को एमएसपी से अधिक दाम दिलाने का ऐलान भी किया।
2: हॉर्टिकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्री और बाकी लोग भी सहकारिता के माध्यम से किसानों की समृद्धि का मार्ग खोज रहे हैं। ऐसे में जब हमारी सरकार आगे बढ़ रही तो कोलारस में शकर की फैक्ट्री क्यों नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगेगी और चलेगी भी सही, एक नहीं दो दो लगाएंगे। आप गन्ना भी लगाओ और अब तो पार्वती काली सिंह चंबल के माध्यम से उधर का क्षेत्र और हरा भरा होने वाला है। लगातार हमारी सरकार किसान समृद्धि के लिए काम कर रही है।
0: वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैतूल में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके की मौजूदगी में माचना नदी के घाट पर पौधरोपण और जल संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो झाबुआ में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में वन विभाग परिसर में वृहद पौधरोपण किया गया। वहीं बुरहानपुर के शाहपुर में नगर परिषद ने 2,000 से अधिक पौधे लगाए, जबकि रायसेन में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। नीमच में विधायक दिलीप सिंह परिहार ने ग्रामीणों से खेतों की मेड़ों पर पौधे लगाने की अपील की। गुना में एनसीसी ने जागरूकता रैली निकाली और सिंहवासा तालाब परिसर में जिला प्रशासन ने पौधरोपण किया। जबलपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान बताए गए। वहीं देवास, अशोकनगर, इंदौर, शिवपुरी और धार में भी जिला प्रशासन की अगुवाई में पौधरोपण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने पहले समारोह में 66 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं।

वहीं दूसरी तरफ पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है और अगले महीने की 31 तारीख तक आवेदन किए जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगरतला के ऐतिहासिक पुष्पबंता पैलेस को हेरिटेज होटल में बदलने की परियोजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह और पूर्व राजघराने के सदस्य प्रद्योत विक्रम माणिक्य भी मौजूद रहे। इस परियोजना से त्रिपुरा और पूरे पूर्वोत्तर में पर्यटन को नई गति मिलेगी। बुजुर्गों के अधिकारों और सम्मान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 जून को प्रदेशभर में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठजन दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए सामाजिक न्याय विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। वृद्धाश्रमों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर रैली, नुक्कड़ नाटक, स्वास्थ्य शिविर और सम्मान समारोह जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। युवाओं और बुजुर्गों के बीच संवाद बढ़ाने के लिए अंतरपीढ़ी संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। डिंडौरी के पाटनगढ़ गांव के गोंडी चित्रकारों की कला अब अमेजन ई कारीगर प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर तक पहुंचेगी। इसके लिए आजीविका ग्राम संगठन और डॉट्स एंड डैशेस संस्था के बीच एमओयू साइन किया गया है। गांव के 157 परिवार सीधे इस कला से जुड़े हैं, जिसमें 85 महिला और 72 पुरुष कलाकार शामिल हैं। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि इस कला को जीआई टैग दिलाने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। भोपाल में बाल कल्याण समिति के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए 13 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 134 प्रतिभागी 4 बैचों में हिस्सा लेंगे। प्रशिक्षण में किशोर न्याय अधिनियम, मिशन वात्सल्य योजना और संकटग्रस्त बच्चों की पहचान जैसे विषयों पर व्यावहारिक जानकारी दी जा रही है। रायसेन जिले के सेमरी गांव की बेटी अंजना यादव ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। आज उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से समत्व भवन में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस अद्भुत उपलब्धि के लिए अंजना को बधाई दी और उनके हौसले की तारीफ की। इंदौर में 9 जून से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने कल इंदौर पहुंचकर आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। इस सम्मेलन में इंदौर को वैश्विक स्तर पर अपनी कृषि और नवाचार उपलब्धियां प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और उनसे जुड़े जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि ऐसे छोटे तालाब जिनका किसी नदी से संबंध नहीं है, उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में मलेरिया निरोधक माह के अंतर्गत जिला चिकित्सालय परिसर में जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी द्वारा 2 दिवसीय पंडित कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन 6 और 7 जून को देवास में किया जाएगा। अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवी ने आज जिले में खाद वितरण व्यवस्था, ई टोकन प्रणाली और जैविक खेती को बढ़ावा देने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आगरमालवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वृद्धाश्रम में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और झाबुआ में 7 जून को समान नागरिक संहिता पर उच्च स्तरीय समिति की जन परामर्श बैठक का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में 18,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने वन मंत्री भूपेंद्र यादव का लेख साझा किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरगन ने आकाशवाणी परिसर में लगाया पौधा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल में किया एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ और इंदौर में 9 जून से होगा अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन, तैयारियां अंतिम चरण में। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

वीडियो वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। ग्रामीण भाई सुने अपना मनचाहा कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: ग्राम सभा सुनने वाले सभी पंचमी ने कहा जमुना भैया की दो हाथ जोड़ के राम राम पहुंच जावे। भैया रो देखो आज 5 जून है और हर साल 5 जून का पूरी दुनिया में का भैया पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाओ जात है। जो दिन भैया लोगन का पर्यावरण संरक्षण के लाने जागरूक करबे और ये पूरी पृथ्वी का संतुलित रखबे के लाने प्रेरित करबे के लाने एक वैश्विक अभियान भी है। और भैया जितने अपन अभियान की बात करें तो ई में हमारे सभी जन को कर्तव्य है पर्यावरण का बचावे के लाने हमारी प्रमुख भूमिका है। भैया रो हम सभी जन को कर्तव्य है कि भैया अगर अपन पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो पेड़ काटबे को अपन का अधिकार बिल्कुल नहीं है। तो भैया हमारे सभी जन से कहो है कि अपने पर्यावरण का हम बचाएं और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो एक वृक्ष जरूर लगाएं। और भैया देखो अपन का जीवन जीवी के लाने शुद्ध वायु की जरूरत है भैया। तो अपन का ऑक्सीजन चाहने हैं, शुद्ध हवा चाहने हैं, खान पान जल सभी चीजें भैया ये पर्यावरण से अपन का मिलती हैं। तो अपनो सभी भैया बहन से कहो है कि एक वृक्ष जरूर लगावे। कैसे भैया पर्यावरण हमारे चारों ओर को वह प्राकृतिक आवरण है जिसे हम रात हैं और जीवन जीवी के लाने अपन का शुद्ध हवा पानी भोजन सभी कछु प्रदान करते हैं। यही से भैया इका सुरक्षित रखवो हमारे सभी जन की जिम्मेदारी है। और भैया देखो अपने जो पंच भैया हैं बहुत से पंच भैया क्या करते हैं कि अपने घर में आंगन में बाग बगीचा लगा होते हैं तो बहुत सुंदर लगाते हैं। भैया देखो घर में जो आंगन है उनमें अपन पंच भैया बाग बगीचा लगाएं, फूल फुलवाद लगाएं और ज्यादा जगह हो भैया देखो अपन कछु ऐसे सब्जी भाजी भी उगा सकते हैं जिनमें अपन का आमदनी भी हो और अपने घर की साग सब्जी भी चले और सुंदरता भी लगा था। देखो बैठे उठे में भी अच्छे लगा थे, चार भैया लोग आउ थे और बैठे थे तो कितनों अच्छो नोनो लगा थे। तो अपनों सभी भैया से कहबू है कि बाग बगीचा लगाए और देखो सुंदरता जिते होते तो होते अच्छो भी लगा थे और मन चंगा तो कटौती में गंगा का हथिया भैया सब जगह नोनो उमदा लगत रहा थे। और देखो भैया बतकाव तो अपनों चल रही है, उसे पहले अपन थोड़ी सो रुकत भी है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंसर हिल्स।
0: भैया बहनों देखो आज है शुक्रवार तो अपने भैया बहन सभी जने बैठे हुए मानस प्रवचन के लाने। तो भैया अपने पंचन का अपन सुनवा रहे हैं मानस प्रवचन। प्रसंग है राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ। प्रवचन करता है महेश कुमार अवस्थी। तो भैया अपन सुने और अपने पंच भैया सुने।

प्रिय श्रोता महानुभाव, भक्त सज्जन, माताएं बहने, मानस प्रेमियों, आइए आज के रामचरित मानस का प्रसंग श्रवण करते हैं। राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ।

ही दशरथ नाउ। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका बड़े बड़े संतों के प्रति बड़ा प्रेम, बड़े ज्ञानी, उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले श्री भगवान के प्रति उनकी बड़ी ही भक्ति और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी।

उनकी जो अर्धांगिनी कौशल्या आदि प्रिय रानिया सभी पवित्र आचरण वाली थी और वे विनीत और पति के अनुकूल थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था।

एक बार राजा के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरण कमलों में प्रणाम करके और बड़ी विनती

और सुनाते हैं अपना जो भी उनके जीवन में कष्ट था कि मेरे कोई संतान नहीं है, हे गुरुदेव क्या कारण है, कौन सा मैंने जीवन में ऐसा पाप कर्म किया, कौन सा मेरे जीवन में ऐसा पाप आ गया जो कि मेरे संतान नहीं।

निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, अपने जीवन का यही। महाराज दशरथ जी सुनाते हैं गुरु वशिष्ठ जी के चरणों पर। गुरु वशिष्ठ जी ने तुरंत ही कहा, धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जैसे ही राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया, गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धारण करो, तुम्हारे चार पुत्र होंगे जो तीनों लोक में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। तो तुरंत ही गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाया।

वशिष्ठ जी ने तुरंत ही श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुति देने पर अग्निदेव प्रसन्न हो जाते हैं, हाथ में चरु लिए हुए प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं।

वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा है, अग्निदेव प्रसन्न होकर के कहते हैं तुम्हारा वह काम सब सिद्ध हो गया है। हे राजन, तुम यह प्रसाद हवि का प्रसाद यज्ञ का प्रसाद लेकर के जाओ, जिसको जैसा उचित हो वैसा ही भाग बना करके बांट दो अपने

अग्निदेव सारी सभा को समझा करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। महाराज दशरथ राजा परमानंद में मगन हो जाते हैं और उनके हृदय में इतना प्रेम हर्ष हुआ जिसका कोई वर्णन नहीं।

उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया और कौशल्या आदि सब वहां पर चली आई। राजा ने आधा भाग तो कौशल्या को दिया और शेष आधे में के दो आधे भाग अपनी और पत्नियों को दिया।

0: अभी अपने पंचवे सुन रहे थे मानस प्रवचन। प्रसंगतो राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ और प्रवचन करता है महेश कुमार अवस्थी। भैया देखो अपनो बतकाओ आगे चल है, उसे पहले अपन थोड़ी सो रुकत हैं।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंसर हिल्स।
0: भैया बहनों देखो अगर अपन बात करें अपने देश की, तो भैया देश में जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ रही है, तो इको भैया सबसे अगर अपन बात करें बढ़ती जनसंख्या के लाने, तो भैया बढ़ती जो जनसंख्या है उसका रोक भी के लाना है। सबसे पहले भैया देखो बात आउट है शिक्षा की, शिक्षा को प्रसार, और दूसरी बात है परिवार नियोजन के साधन की उपलब्धता, और तीसरी बात है महिला सशक्तिकरण प्रभावी उपाय है। तो भैया जी कहा है जैसे अपन बात करें शिक्षा को प्रसार, तो शिक्षा भैया लोगों की जो रूढ़िवादी सोच है उखा बदलत है और उन्हें परिवार नियोजन के महत्व का समझने में मदद करत है। और भैया अगर अपन बात करें विशेष रूप से महिला अगर शिक्षित है तो जनसंख्या वृद्धि दर का कम करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाउत है। और दूसरी बात है परिवार नियोजन की, तो भैया परिवार नियोजन का सीमित रकबे के लाने आधुनिक गर्भ निरोधक साधन की जो आसान और मुफ्त उपलब्धता जो होते हैं, और ई के लाने सरकार द्वारा भी विभिन्न परिवार कल्याण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। और तीसरी बात आते हैं महिला सशक्तिकरण और अभियान की, तो भैया महिलाओं का आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर बनाव और समाज में उनकी स्थिति में सुधार करना अति आवश्यक है। ई के लाने भैया जैसे कि बाल विवाह है पूरी तरह से ही पर रोक लगाव चाहिए, और प्रशासन भी देखो भैया पर रोक लगाव थे, लड़कियों का जो शादी की उम्र है उस समय पर शादी करें, और अगर कम उम्र में शादी कर रहे तो भैया कानूनी ई पे कार्रवाई भी है, तो इसे भैया उनको पालन जरूर करें और अपनी बढ़ती जनसंख्या का रोकें, सीमित परिवार खुशी परिवार भैया अपनो बनाए। और देखो अब अपने पंचन का अपन सुनवा रहे हैं एक भेंट वार्ता पशुपालक अनिरुद्ध सिंह से बिरजू भैया की बातचीत, तो भैया अपन सुने और अपने पंच भैया सुने।
3: पंचो आज अपने स्टूडियो में आए हैं पशुपालक भैया जिनको नाम है अनिरुद्ध सिंह लोधी। आज अपन का बहुत नौनी और उमदा जानकारी देवे जा रहे हैं कि पशुपालन कौन तरीका से करो जाए जिसे अपने भैया हरे अधिक से अधिक लाभ कमाएं। तो अनिरुद्ध जी राम राम।
4: राम राम।
3: अपन जैसे पशुपालक हैं पशु पाले हैं तो अपने पास कितने नंग गैया भैंसियां हैं?
4: हमारे पास 5 गैया और 6 भैंस।
3: कौन कौन सी प्रजाति की हैं?
4: उसमें गैया जो है गिरगाय है और एक दो अपनी साहिवाल है, इस पर 5 गाय हैं और 4 मुर्रा हैं और 2 भैंस देसी हैं।
3: अच्छा अच्छा। तो जी अपन ने कहाँ चलाई थी?
4: जी राजस्थान से आती है जी, यहाँ से, और जी अपने हरियाणा से जो मैं आती है मेले में।
3: हाँ,
4: उस मेले से ली।
3: अच्छा, जो मेला लगत रहा था पशुगन के उतरे से अपन ने ली थी। तो अपन खां कितो दूध मिल जाती एक टाइम में?
4: एक टाइम में अपन को एक गाय 5 लीटर दूध देती है, और अपने जैसे 5 गाय लगती है तो उसको मिला के 25 लीटर दूध हो जाता है।
3: अच्छा अच्छा।
4: और भैंसे हैं, भैंसे अपने 6-7 लीटर दूध देती है।
3: अच्छा।
4: हाँ, एक टाइम में।
3: सो
4: वो भी दूध अपना 42 लीटर दूध हो जाए।
3: अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो जो दूध को उत्पादन होते है तो इको का अपन करत हो, घर में उपयोग करत हो के बाजार में बेचत हो?
4: अपन दूध डेयरी पे देती है।
3: अच्छा अच्छा। तो कौन हिसाब से डेयरी पे जाते हो?
4: जो फैट के हिसाब से डेयरी पे जाता है। इसको
3: 7
4: रुपया फैट लगता है।
3: अच्छा।
4: जो अपन दूध डेयरी पे देते हैं फैट के हिसाब से दूध अपना डेयरी पे बिकता है।
3: अच्छा चलो, जा तो आपने अपनी दूध के उत्पादन के बारे में जानकारी दी। अब बात आउ जा के जो अपन पशुपालन कर रहे हैं तो पशुपालन कौन तरीका से अपन कर रहे हैं कछु हमारे और पशुपालक भैया का जानकारी बताओ।
4: पशुपालन अपन को सबसे पहले तो उसके देख रेख करना चाहिए, समय समय पे उसको टीका लगवाना चाहिए जिससे बीमारी ना आ सके, और उसको डिवर्मिंग जैसे अंतरकृमि या बाह्यकृमि रोग ना हो सके, जैसे कृमि हो उससे भूख कम लगती है पशुओं को, उससे दिक्कत हो दूध कम हो जाता है, वो भी डिब्रांग करवाना चाहिए, और टीका जो हर जुलाई में या जून में टीका लग जाए तो अब जो बीमारियां हैं उसकी रोकथाम हो जाती है। जो खतरनाक बीमारी है वह अपने पशुओं को नहीं आ पाती है, जिससे अपन को हानि नहीं हो पाती है। जैसे अपन को मान के चलो अगर एक गाय या अपन रोगग्रस्त हो गई है, उसमें पैसा भी लगता है और फिर ठीक भी नहीं हो पाती है और दूध भी उसका चला जाता है। इसी प्रकार पर समय समय पर उसका टीकाकरण होना चाहिए और समय पर दूध कम दे रही तो डीवर्मिंग होना चाहिए।

0: जिससे स्वस्थ पशु बने रहें, और समय समय पर उनको दाना खाने के लिए जैसे कैल्शियम है, मलेरिया मिक्स पाउडर है, और जी और जी का कहा होता है चुनी वगैरह, चापर वगैरह, और जी खली वगैरह, ये सब समय समय पर देना चाहिए कम, जिससे दूध की मात्रा बड़ी रहती है, घटती नहीं है, और उसमें अच्छा फैट भी लगता है।
1: कितनी नौनी उम्दा बात बताइए कि जो अपने पशु हैं उन्हें टीकाकरण जरूर कराओ चाहिए। हाँ। कैसे टीकाकरण से उनकी रोग और प्रतिरोधक क्षमता बढ़त है। हाँ। जिससे भी हमेशा स्वस्थ रहता है। तो सभी भैयान खां अपने पशुओं को टीकाकरण जरूर कराने हैं। संगे संगे बात आउ जा के जो अपन ने बात करी थी कि आहार की, तो उन्हें आहार कौन तरीका से दो जाए जिससे दूध की मात्रा कम ना होए।
0: अपन को कम से कम 1 किलो दिन भर में खली देना चाहिए एक पशु के लाने, और चापर भी 1 किलो या 1.5 किलो होना चाहिए एक पशु के लाने, और कम से कम भूसा भी 2-5 किलो मिला के बढ़ गया उसको मिक्स करके और उसमें खली मिला के ऐसी बना के सानी उसको बड़ी बढ़िया खिलाना चाहिए, और वहाँ जहाँ बनते हैं वहाँ बढ़िया सफाई होना चाहिए पशुओं की, जिससे जो कीटाणु मिटाणु है वे नष्ट रहे, साफ रहे जगह, और अपने जैसे मतलब जी है अपन सही आहार दे हैं तो दूध की मात्रा बराबर बढ़े, नंतर वो कम हो जाती है।
1: अब जैसे अब चल रहा गर्मी को मौसम, ये गर्मी के मौसम में अपने पशुगण को कौन तरीका से ध्यान देने हैं जिससे भी हमेशा स्वस्थ रहे और वे कोनो रोग राई से ग्रस्त ना हो गए।
0: इससे अपन को समय पे लू से बचाना चाहिए, लू ना लग पावे, और इनको पानी समय समय पे पिलाना चाहिए, और इनकी देखरेख जो

किलो मिला के बढ़िया उसको मिक्स करके और उसमें खली मिला के ऐसे बना के सानी उसको बड़ी बढ़िया खिलाना चाहिए। और वहाँ जहाँ बनते हैं वहाँ बढ़िया सफाई होना चाहिए पशुओं की, जिससे जो कीटाणु मीटाणु है वे नष्ट रहे, साफ रहे जगह। और अपने जैसे मतलब जो है अपन सही आहार दें तो दूध की मात्रा बराबर बढ़े, नहीं तो वो

0: सर नहीं है, तो अपन ने कौन ऐसी सहायता ली है?
1: नहीं अभी तो नहीं ली है कोई मदद।
0: अच्छा। अंत में हम अपन से एक बात और जो जानबो चाहें कि पशुपालन से अपन का कितेक आमदनी हो जात है, और हमारे पशुपालक भैया हरे का ऐसा करें जिसे उन्हें अधिक से अधिक आमदनी हो।
1: अपन को पशुपालन से कम माह की 30-40 हजार रुपए हो जाती है।
0: अच्छा
1: हाँ, और सभी को ये है कि पशुपालन करें और पशुपालन में अच्छा बेनिफिट है। जैसे अपने घर के घर हैं और दो चार गाय बांध ली, तो उसमें अपन को कम से कम 20-25 लीटर दूध हो जाए तो कम से कम मान के चलो 1,500 रुपया दिन की आय हो जाती है उससे। 20 लीटर दूध हो जाए तो कम 50 ही को जाए तो 1,000 रुपया तो अपने दिन के बचे हैं, तो 1 महीना में अपने 30,000 रुपया तो वैसे हो रहे हैं। तो अपने घर के घर हैं, बच्चों को देख रेख भी है, बच्चों की पढ़ाई भी है, उसमें कट भी जाए। जैसे मान के चलो 30,000 रुपया है तो 10,000 रुपया अपने उनको खुराक में चले जाए, 10,000 अपने पशुओं की खुराक में चले जाए और कम से कम 20 तो बचे जो अपने खर्चा के लिए। आप 5 अपने काट ले तो 15 तो बचे, मतलब अपनी मेहनत मजदूरी, तो 15,000 रुपया अपन को सुरक्षित बच जाते हैं।
0: कितनी नौनी बात है अनुरुद्ध जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और पशुपालन के बारे में जानकारी दी। जानकारी देवे के लाने अपन का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया बहन, अबे अपने सभी जन सुन रहे थे जब भेंट वार्ता पशुपालक अनिरुद्ध सिंह से बिरजू भैया की बातचीत हो। इतनी अच्छी उन्होंने भैया बात बताई है, और हमारा उद्देश्य यही है कि पंच भैया को लाभ जरूर लेवे। और भैया देखो, अपने बतकाव के संग संगे कछु अपन मनोरंजन भी करवाए पंचन को, तो अपन पंचन का सुनवा रहे हैं एक राजीव कुमार रावत की गाय भाई चेतावनी, तो पंच भैया सुने।

अभी अपनी भैया बहन है सुन रहे थे राजीव कुमार रावत की गाई भजिया चेतावनी। और भैया देखो, अगर अपन बात करें आज की सीख की, तो विषय है जिनके मन है लालची, गिने न ठोर कुठौन, और कंचन मन में भी मिले तुरंत उठावत दौर। तो भैया अपन एक बात की कहें तो भैया, कछु समाज में ऐसे लोग होते हैं जिनको मन लालच से भरो होते हो और वे कहों भी भैया संतुष्ट नहीं होते। ऐसे व्यक्ति भैया हमेशा अपनों नुकसान करके अपनों फायदा सोच के भैया दूसरे का नुकसान पहुंचाऊ थे। तो भैया देखो, कहा के ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं होते और वो कहूं ना कहूं पकड़ जाते हैं और समाज में भैया कोई स्वाभिमान और शांति सभी कछु नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे सभी भैया से कह है कि भैया कहूं भी ऐसो अपन बिल्कुल न करें, दूसरे का अपने फायदा के लाना दूसरे को नुकसान बिल्कुल न करें। कैसे कि भैया जब दूसरे को अपन नुकसान करते तो दर्द भी होते और कनम करके अपनों स्वाभिमान भी ठेस पहुंचाते हैं, और अपनों जब स्वाभिमान नष्ट होता तो भैया अपन खा भी लगा थे कि अपन ने दूसरे को नुकसान करो है, तो भैया अपन खा भी उको खामियाजा भुगतने पड़े। तो भैया हमाओ पंच से यही कह के समाज में जित हो सके एक दूसरे को आदर करें, सम्मान करें और खुद भी भैया सम्मान पावे। कैसे कि भैया अपन जब एक दूसरे को सम्मान करें तो अपन का भी सम्मान मिले, लालसा बिल्कुल भी न रखें। और देखो घड़ी भी समय बता रही भैया अपनों, तो अपन पंचन कल के कार्यक्रम भी बता दें। पंच भैया सुने कल के कार्यक्रम में हेलो लोकरंजन, श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी बुंदरी लोकगीतों का कार्यक्रम, प्रस्तुति रविंद्र कुमार प्रजापति की। और आज की सीख में विषय हुए जो जानो जाड़े को भेद तो मुंदे कमरा को चेत। तो भैया अपनों तो अपनों बतकाव भो, अब पंचन से मिले आज्ञा, पंचो राम राम।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म जीत से इस गीत को सुना। गीत मजरूह का था और संगीत आर डी बर्मन का। फिल्म संगीत में

0: लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। कुछ ही पलों में हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली, जहां सुनाएंगे आपको समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर-18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल

0: और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: हमारे विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था। आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट दिए जाएंगे।
1: गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है।

इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: वकीलों, न्याय बंधु, कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमरीकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
3: ट्रेड अग्रीमेंट फॉरवर्ड।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
3: With Nepal we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार

0: हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kakamigahara in Japan. And now the news in detail. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी

द ट्रेन, इसी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज मोहम्मद रफी की थी, गीत आनंद बख्शी का था और संगीत आरटी बर्मन का था। फिल्म संगीत में अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म सूरज और चंदा से। आनंद बख्शी का गीत है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, तो लीजिए सुनिए।

लीजिए, सुनिए जुर्म और सजा फिल्म से इस गीत को। आवाज एक बार फिर मोहम्मद रफी की है, गीत के बोल लिखे हैं राम भरद्वाज ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से ले रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं फिल्म धर्मवीर का यह गीत। आवाज मोहम्मद रफी की है, गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आनंद लीजिए इस मधुर गीत का।
1: मेरी महबूबा।

अगला खूबसूरत नगमा हमने लिया है फिल्म हैवान से। आवाज एक बार फिर मोहम्मद रफी की है, शब्द रचना है प्रदीप राज चौधरी की और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

ले जरा के मौसम भी है प्यार का, जहाँ की फिक्र क्यों करें जो तेरा दिल है मेहरबान। हम थम झूम ले जरा के मौसम भी है प्यार का, जहाँ की फिक्र क्यों करें जो तेरा दिल है मेहरबान।

सनम यूं दिल पे छा गए, कहानी आम हो गई, चमन में तुम जो आ गए, हर कली जाम हो गई। सनम यूं दिल पे छा गए, कहानी आम हो गई, चमन में तुम जो आ गए, हर कली जाम हो गई। जहां की फिक्र क्यों करें, जो तेरा दिल है मेहरबान।

जवां मौसम है दिल जवां मोहब्बत क्यों ना हम करें, मिल गए दोनों दिल तो फिर कैसे दिल पे सितम करें। जवां मौसम है दिल जवां मोहब्बत क्यों ना हम करें, मिल गए दोनों दिल तो फिर कैसे दिल पे सितम करें। जहां की फिक्र क्यों करें जो तेरा दिल है मेहरबान, हम समझो मले जरा

चाहता है दिल, सनम हम तेरे हो रहे, हुस्न की शौकियाँ रहे, इश्क की मस्तियाँ रहे, बस इतना चाहता है दिल, सनम हम तेरे हो रहे, हुस्न की शौकियाँ रहे, इश्क की मस्तियाँ रहे, जहाँ की फिक्र क्यों करें, जो तेरा दिल है मेहरबान, वो हम दम झूम ले जरा, कि मौसम भी है प्यार का, जहाँ की फिक्र क्यों करें, जो तेरा दिल है मेहरबान।

फिल्म संगीत में लीजिए, अब सुनिए फिल्म आखिरी दांव से इस गीत को। हसरत जयपुरी का गीत है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

लीजिए, सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आखिरी दाव से इस गीत को। गीत हसरत जयपुरी का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

देखे कहां पर गिरती है बिजली, गुस्सा है या तू।

रसिया जान करे कुर्बान हो अल्लाह मेरी।

फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए गीता मेरा नाम फिल्म से इस गीत को। आवाज एक बार फिर मोहम्मद रफी की है, गीत राजेंद्र कृष्ण का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये आखिरी नगमा। इसे हमने लिया है फिल्म बचपन से। आवाज मोहम्मद रफी की है, गीत आनंद बख्शी का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है नाटक फिल्मी चक्कर। लेखक हैं डॉक्टर सुरेश पराग और प्रस्तुति है डॉक्टर अरविंद सोनी की। तो लीजिए सुनिए।

0: नाटक शुरू हो उसके पहले आइए आपको इसके पात्रों से मिलवा दूं। ये हैं मिस्टर संतोषी, फिल्म प्रोड्यूसर हैं। बोलिए मिस्टर संतोषी।
1: श्रोता नमस्कार। मैं बेचारा बम्बैया झटकों का मारा, आप मेरी कथा सुनिए, आप मेरी व्यथा सुनिए और सावधान हो जाइए। भले ही चाट की ठिलिया लगाइए मगर कभी फिल्म मत बनाइए।
0: और आप हैं मशहूर फिल्म डायरेक्टर चंदू चालबाज।
2: जी नहीं जी नहीं, मेरा असली नाम राज नारायण है और प्यार से लोग मुझे राज कहते हैं।
0: देखिए मिस्टर चंदू, ज्यादा मत बोलिए, मैंने आपसे केवल नमस्कार करने के लिए कहा था। आपके लिए जितना डायलॉग लिखा है उतना ही बोलना है।
2: अबे ओ लेखक की दम, चुप। चुप रहने के लिए कहता है, मैंने अच्छे अच्छे लेखकों की कहानियों की ठांग तोड़ दी, तो किस खेत की मूली है।
0: मैं मूली नहीं हूँ मिस्टर चंदू, लेखक हूँ लेखक। यहाँ आप फिल्म नहीं बना रहे हैं, रेडियो नाटक के एक पात्र हैं। अरे जैसा लिखूंगा बोलना पड़ेगा।
2: नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। तुम मेरी चरित्र हत्या करना चाहते हो, इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
0: चरित्र हत्या? अरे चरित्र हत्या उसकी होती है मिस्टर चंदू, जिसका चरित्र होता है।
1: आगे बढ़िए, आगे बढ़िए मिस्टर लेखक जी, आगे बढ़िए। इनके चरित्र की हत्या कर अपनी लेखनी का खून क्यों रंगते हो? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए लेखक जी, ये काम तुम मुझे करना है।
0: अरे वही तो कर रहा हूँ भाई साहब, पर ये मिस्टर चंदू यहाँ भी अपनी टांग अड़ाने
2: वाले। तुम मुझे चंदू नहीं बोल सकते।
1: बोलने दो ना यार, बोलने दो।
2: कैसे बोल रहे हो?
1: क्या फर्क पड़ता है?
2: बोलता है
1: काम तो तुम्हें वही करना ना जो तुम कर रहे हो। और यार लेखक, तुम भी जाने कहाँ टक गए, मुंह से मत बोलो। तुम भी तो इन्हीं की तरह मुंह में राम नाम और बगल में चुर्री।
0: इन्हीं की तरह नहीं मिस्टर संतोषी, इसी की तरह कहिए। ये कोई ऐसे इज्जत वाले आदमी नहीं है जो इनके लिए सम्मानजनक सर्वनामों का प्रयोग किया जाए।
1: यार राइडर, मेरे दादा, सोमपान तो हमने किया, नशा तुम्हें चढ़ रहा है।
0: यही तो आपने गलत किया है। अरे मैंने मना किया था आज मत पीना, पर आप मानते ही नहीं हैं। आपकी इसी आदत ने आपको तबाह किया है मिस्टर। ना आप शराब पीने के लिए इस बार में बैठते और ना इस बदमाश के चक्कर में फंसते।
2: जवान समारोह की बात करना, वरना
0: वरना क्या कर लोगे तुम मेरा?
2: बताऊं बताऊं क्या कर लूंगा।

0: देखो बताओ।
1: चुपचाप बैठकर फ्री की दारू पियो मिस्टर चंदू, और नया मुर्गा फंसाने की योजना बनाओ। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आप।
2: भाई लोग आप दोनों मेरे ऊपर तरस खाओ भाई, हम यहाँ फिल्म का हिसाब किताब करने बैठे और ये विचार करने बैठे हैं कि फिल्म कैसे रिलीज हो।
1: तो करिए ना मिस्टर, ये काम तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का है, मुझे क्यों बीच में उलझाते हैं आप लोग।
2: दादा दादा, ये काम तो आपको ही करना है।
1: मुझसे कराना है तो शराब पीकर मत बैठना, समझे? मैं जा रहा हूं, जब नशा उतर जाए तब बुला लेना। गुड नाइट।
2: चलेगा,
0: चला गया, गया, गया, गया।
2: दादा, मेरे दादा चलेगा,
0: चला गया।
2: भाई साहब चलेगा, जिसे देखो वही नाराज हो जाता है। मिस्टर चंदू, ये सब आपकी वजह से हुआ है
0: यार। संतोषी, तुम तो मेरा नाम सही लो, कमाल करता है। तू भी चंदू क्या है?
2: सही सही नाम ले रहा हूँ चंदू। राज नारायण आप पर फिट नहीं बैठता है।
0: बैठता
2: देखिए ना, आपके सिर पर एक भी बाल नहीं है।
0: यार संतोषी, तेरा ये राइटर है ना, ये तो बहुत खतरनाक हो रहा है। पूरा नशा उतार कर चला गया। एक काम कर, एक लार्ज बैग और लेना पड़ेगा, तब रात कटे।
2: बेरा, एक पैक साहब के लिए बना देना।
0: और तुम?
2: मुझ पर तो वैसे ही कंगाली का नशा चढ़ा हुआ है।
0: तुम बेकार नर्वस हो रहा है। बेकार नर्वस हो रहा है तू। एक बार फिल्म रिलीज हो जाने दो, फिर देखना जो तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं ना, वही आगे और पीछे घूमेंगे।
2: फिल्म रिलीज होगी तब ना।
0: अरे होगी होगी, जरूर होगी। मुझे बम्बई तो जाने दो।
2: वो शुभ दिन कब आएगा?
0: अरे तुम कुछ पैसों का इंतजाम कर लो, बस मैं चला जाऊंगा।
2: ठीक है, हाँ। देखता हूँ और क्या बचा है घर में बेचने लायक। ओके, गुड नाइट।
0: गुड नाइट, गुड नाइट।

0: कौन आमरा सवेरे सवेरे आ रहा हूं यार, नींद भर सोने भी नहीं मिलता। फिल्म क्या बनाई, गले में हड्डी अटका ली।
1: बाबूजी नमस्कार।
0: सेठिया तुम्हें पता है मैं 10 बजे से पहले सोकर नहीं उठता। अभी सिर्फ 9 बजा है, जाओ 11 बजे तक आना।
1: ना बाबूजी, बहुत हो गया, आज तो पैसा लेकर ही जाऊंगा।
0: कहा ना 11 बजे तक आना, तब तक डायरेक्टर साहब भी आ जाएंगे। अभी सोने दो।
1: सो जाइए, मैं भी आज यही दरवाजे पर बैठूंगा। 11 बजे दिन तक नहीं, 11 बजे रात तक। खाना खिलाया है, कोई हराम के नहीं मांग रहा हूं। 100-200 की बात होती तो चल जाता, पूरे 7,000 हैं, आज तो लेकर ही जाऊंगा।
0: सेठिया तुम समझते हो दरवाजे पर चिल्लाने से ये पैसा मिल जाएगा, तो तुम्हारी भूल है।
1: आपकी इज्जत तो खराब होगी।
0: इज्जत तो उसकी खराब होती है सेठिया जिसकी होती है। यहां तो साली इज्जत है ही नहीं, तो खराब क्या होगी। हाँ नींद जरूर खराब हो रही है। ऐसा करो, अंदर आ जाओ और आराम से बैठो। बोतल में थोड़ी सी बची है, एक पैक बनाकर मुझे दो और थोड़ी सी तुम पी लो।
1: अरे मैं सवेरे से नहीं पीता।
0: ठीक है, एक पैक मुझे बना दो, तुम चाय बनाकर पी लो।
1: आप भी अजीब आदमी हैं बाबूजी, दारू पीते पीते सोते हैं और जागकर दारू से कुल्ला करते हो।
0: दारू कहकर इसका अपमान मत

0: करो सेठिया, ये जीवन रस है। अच्छा, अब 11 बजे तक शांत बैठना, उसके बाद बात करेंगे।
1: मैं भी साला उल्लू का पट्ठा कहां चक्कर में फंस गया।
0: मैं भी साला उल्लू का पट्ठा चक्कर में ही फंसा हूं सेठिया। तुम चाय बनाकर पियो। मुझे डिस्टर्ब मत करना।

0: अरे सेठिया, तुम क्या बात है सेठिया, सुबह सुबह कैसे भूल पड़े?
1: भूल नहीं पड़ा साहब जी, सोच कर आया था। और अभी सुबह नहीं, दोपहर के 11 बज रहे हैं। जब आया था तब 9 बजा था।
0: अच्छा, साहब को जगाया नहीं?
1: जगाया था साहब, 2 घूंट दारू पी और फिर सो गए। बोले डिस्टर्ब मत करो। आप बताओ साहब जी, ऐसा कैसे चलेगा? मैं गरीब आदमी, मेरे पास जो था आपकी फिल्म कंपनी को खाना खिलाने में लगा दिया। आप जानते हो कितनी मेहनत की है मैंने साहब, जंगल में ले जाकर खाना खिलाया है। कोई गलती हो तो 10 जूते मार लो, पर पेट पर लात तो ना मारो।
0: अच्छा ऐसा करो, अभी तुम जाओ, हिसाब किताब करने शाम को आ जाना।
1: नहीं जा सकता साहब जी, घर जाऊंगा तो बीवी लड़ेगी, मेरी सारी पूंजी जाम हो गई, होटल ठप पड़ा है।
0: भाई सेठिया, मैंने कहा ना शाम को आ जाना।
1: क्या ठिकाना साहब, शाम को आप मिलते हैं या नहीं?
0: सेठिया, तुमने तो बाजार चोर समझ लिया है, इतनी बड़ी फिल्म बनाई है, कोई मजाक नहीं किया। अभी जाओ, अभी जाओ, शाम को 7 बजे तक आना, कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ करेंगे कुछ ना कुछ।
1: ठीक है साहब जी, आप कहते हो तो जाता हूँ, पर शाम को मेरा पैसा दिला देना।
0: हाँ हाँ हाँ, जब शाम को आना तब बढ़िया कुछ चटपटा नमकीन और गरम गरम समोसे जरूर लेते आना।
1: जी साहब जी, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, जाओ।
2: थैंक यू मिस्टर चंदूलाल जी, थोड़ी देर के लिए ही सही एक मुसीबत तो टली, मेरी तो आंखें दर्द करने लगी थी इतनी देर से बंद किए हुए।
0: अच्छा तो क्या तुम जाग रहे थे?
2: अरे मेरी जैसी सिचुएशन में आदमी कभी सो सकता है? डायरेक्टर साहब, अभी फोटोग्राफर आने वाला है, फिर जीप वाला आएगा।
0: यार तुम इन सबको निपटा क्यों नहीं देते?
2: पहले आपसे तो निपट लूं।
0: हाँ हाँ, एक काम करो, तुम मुझे 5,000 दे दो, बस इतने से काम चल जाएगा।
2: अच्छा आप मुझे एक बात बताओ।
0: हाँ हाँ, पूछो।
2: आपने कहा था 1 घंटे की इस टेलीफिल्म में अधिक से अधिक 36,000 की लागत आएगी।
0: हाँ ठीक,
2: इसमें से आधा पैसा आप लगाएंगे। अब लागत 70,000 तक पहुंच रही है। आपने कभी एक पान अपने

0: और अब 5,000 और चाहिए।
1: ओफो यार, फिल्म निर्माता होकर इतनी छोटी छोटी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता।
0: और बड़ी बड़ी बातें करने के लिए जेब में पैसा चाहिए, पैसा।
1: ओ हो हो, फिल्म रिलीज हो जाने दो, पैसा भी आ जाएगा।
2: अरे पैसा तो तब आएगा जब फिल्म रिलीज होगी भाई।
1: आप ही तशरीफ ले आए, आइए आइए। क्यों भाई, फिल्म रिलीज क्यों नहीं होगी?
2: मैं आपको बेवकूफ तो समझता था, पर इतना नहीं कि ये सवाल आप मुझसे पूछेंगे।
1: मिस्टर लेखक, जवान संभाल कर बात करना। किस बात पर बेवकूफ कह रहे हो भाई?
2: अरे गलती हो रही है, बेवकूफ तो मुझे खुद को कहना चाहिए जो फिल्म बनाने की लालच में कहानी आपको दे दी और अब सुबह शाम उल्लुओं की तरह आपके पीछे घूम रहा।
1: क्यों क्यों घूम रहे हो?
2: यही तो समझ नहीं पा रहा, क्यों? आपकी फिल्म बन गई, कैमरामैन, फोटोग्राफर, कलाकार सबको आपने पैसा दिलवाकर वापस भेज दिया, मिस्टर संतोषी का स्कूटर बिक गया, अब क्या बचा है जिसके लिए मैं यहां पड़ा हूं?
1: आपका ये लेखक बहुत बोलता है मिस्टर संतोषी, बहुत बोलता है। हमारे बॉलीवुड में लेखक इतना नहीं बोल सकता।
2: ये आपकी बंबई नहीं है ना बॉलीवुड, ये हमारा देहात है मिस्टर चंदू। और मैं बंबई भी गया हूं, वहां भले लोग भी रहते हैं, सब तुम्हारी तरह के नहीं, समझे मिस्टर चंदू?
1: बस मिस्टर संतोषी, बहुत हो गया, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आप या तो इससे बात कर लीजिए या मुझसे।
0: मुझे दोनों की जरूरत है मिस्टर चंदूलाल जी।
1: ठीक ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूं, आप शाम तक 5,000 का प्रबंध कर दे।
2: संतोष, तुमने मुझे पहले सब बातें बता दी होती तो ये नौबत ना आती, समझे?
0: दद्दा, गलती हो गई, अब आप ही मुझे बचा सकते हो। किसी तरह फिल्म रिलीज हो जाए और जो पैसा लगा है वो निकल आए।
2: हमें सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस चंदू को डायरेक्शन के नाम पर कुछ भी नहीं आता। अरे हमने सब जगह प्रीव्यू करा के देख लिया है, सब कहते हैं एडिटिंग, डबिंग, मिक्सिंग, म्यूजिक कुछ भी सही नहीं है। अरे यार, उसने हमें फंसा लिया है।
0: पर वो कहता है उधर कमीशन चलता है, चाहे जैसा माल ले जाओ सब खप जाता है।
2: तो उससे कहो ना, ले जाकर खपाए ना, यहां बैठा क्या कर रहा है?
0: 5,000 रुपए और मांगता है।
2: उसने कहा था तो लगाता क्यों नहीं है?
0: कहता तो हूं, पर वो बहुत बेशर्म है, बिना रुपए लिए नहीं टलेगा। और तुम मेरी हालत देख रहे हो, मेरे पास शाम की संजीवनी तक के लिए पैसे नहीं हैं।

0: हेलो,
1: कैसे हो जी? अच्छा,
0: मैं तो ठीक हूं जी, पर आप कौन हैं?
1: मैं कौन हूं? तो महीने भर में ही मुझे भूल गए।
2: मर गए यार। किसका फोन है? क्रांति का?
1: क्या हुआ, पहचान लिया?
0: हाँ जी, आपको कैसे भूल सकते हैं।
1: तो तुरंत क्यों नहीं पहचाना था?
0: दरअसल तुम्हारे स्वर की मिठास ने भ्रम में डाल दिया था। विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम्हारा स्वर इतना मीठा है। अच्छा ये बताओ, फोन कैसे किया?
1: जी, मैं कल शाम की ट्रेन से आ रही हूँ।
0: कल?
1: हाँ, कल।
0: पर तुमने तो 3 महीने का कहा था।
1: हाँ, कहा था, पर महीने भर यहाँ रहने पर लगा कि शादी के बाद लड़की को अधिक दिन मायके में नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा करना, तुम मुझे कल रेलवे स्टेशन लेने आ जाना।
0: ठीक
1: अच्छा,
0: ठीक है जी, जो हुकुम।

0: हेलो।
1: हेलो भाई साहब, मैं जीनत बोल रही हूँ।
0: हाँ जीनत, कैसी हो?
1: ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और फिल्म की क्या प्रोग्रेस है?
0: अभी तो श्रीमान जी यहीं पड़े हैं, यहां से जाएं तब कुछ पता चले।
1: मम्मी ने आज सोहन हलवा बनाया है, समय मिले तो शाम को आ जाइए।
0: नहीं, मैं तो नहीं आ सकूंगा। तुम ऐसा करो कि यहीं लेकर आ जाना।
1: ठीक है, मैं आ जाती हूँ शाम 5 बजे तक। और सब ठीक ठाक है?
0: अरे कहाँ ठीक ठाक है, क्रांति
1: क्यों,
0: आई हुई है।
2: क्या है जी, मुझे बुलाया क्या?
0: हाँ नहीं जी, नहीं जी, आप काम कीजिए।
1: अच्छा, भाभी जी आ गई हैं।
0: हाँ जीनत, और अब गलती हो गई है तो भोगना तो पड़ेगा ही ना।
1: आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी।
0: अभी तो मैं ही कोशिश कर रहा हूँ।
1: करते रहिए। अच्छा, अब रखती हूँ, शाम को आऊंगी।
0: अच्छी बात है, ओके।
1: बाय। लो कॉफी पियो।
0: हाँ बैठो क्रांति।
3: किसका फोन था?
0: फिल्म की खूबसूरत हीरोइन का, वो कल शाम को घर आ रही है। उसे कुछ मत कहना, बहुत भली लड़की है।
3: अरे अब ऐसी भी नहीं हूं कि सच्चाई ना समझ सकूं। तुम बताओ तो क्या हुआ?
0: लगभग 2 महीने पहले की बात है, मडला के ढाबे पर एक आदमी मुझे मिला। उसने बताया कि वो फिल्म डायरेक्टर है,
3: अच्छा,
0: क्षेत्रीय भाषा की फिल्में बनाता है। अभी उसने पंजाबी, छत्तीसगढ़ी और गुजराती में फिल्में बनाई हैं। अब वो बुंदेली में फिल्म बनाना चाहता है। किसी अच्छे राइटर से मुलाकात हो जाए और कोई स्थानीय साथी मिल जाए तो जल्दी ही काम शुरू कर देंगे। मैंने उससे पूछा कुल कितनी लागत आएगी। उसने बताया 1 घंटे की टेली फिल्म बनाने में अधिक से अधिक 35,000 रुपए खर्च होंगे।
3: अच्छा,
0: मैंने उसे सुमन जी से मिलवा दिया।
3: कौन सुमन जी?
0: सुमन जी वो अपने दद्दा जिनकी कहानियां अखबारों में निकलती हैं।
3: अच्छा वो।
0: हाँ, उन्होंने मेरे कहने पर एक बढ़िया स्क्रिप्ट लिख दी और फिल्म बनाने की योजना बन गई।
3: और इसीलिए तुमने मुझे मायके भेज दिया?
0: हाँ क्रांति, मेरे दिमाग में फिल्म बनाने का भूत सवार था, तुम मुझे बनाने नहीं देती।
3: अच्छा ये बताओ तो फिर क्या हुआ?
0: उसके बाद उस बदमाश चंदू ने कहा कि मैं आधा पैसा लगा दूं, वो मुझे फिल्म का हीरो बना देगा, हीरो, और प्रॉफिट में 50% का शेयर भी रहेगा, प्रोड्यूसर में मेरा नाम जाएगा।
3: और तुम तैयार हो गए है ना?
0: हाँ क्रांति, मैंने सोचा कोई बुरा सौदा तो है नहीं, जब तक तुम मायके से लौटोगी तब तक फिल्म रिलीज हो जाएगी। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था।
3: अच्छा अब आगे तो बताओ, फिर क्या हुआ था?
0: उस बदमाश चंदू ने मुझे फंसा दिया, खुद 1 रुपया तो लगाया नहीं। उसने कहा था 35,000 रुपए खर्च होंगे, लेकिन 60-70 हजार खर्च हो गए। इसके लिए मुझे अपना स्कूटर बेचना पड़ा, तुम्हारे नाम की एक FD तुड़वा दी।
3: क्या कहा तुमने?
0: हाँ क्रांति, हाँ मैं बहुत फंस चुका हूं, मुझे तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। इस समय यदि मुझे तुम्हारा सहारा नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा।
3: अरे नहीं, ऐसी गलती मत करना।
0: और कोई रास्ता नहीं है क्रांति, मेरे ऊपर कर्ज का इतना बोझ पड़ गया है जिसे मैं चुका नहीं सकता।
3: अरे धीरज रखो, फिल्म रिलीज हो जाएगी तो पैसा मिल जाएगा।
0: यही तो समस्या है, फिल्म रिलीज होने लायक बनी ही नहीं। वो कहता है 5,000 रुपए और लगेंगे तब ठीक हो पाएगी।
3: अच्छा ये तो बताओ, तुमने उसके साथ कोई लिखा पढ़ी की है या नहीं?
0: नहीं क्रांति, कोई लिखा पढ़ी नहीं है।
3: मेरी समझ में नहीं आता तुम इतनी बड़ी गलती कैसे करते चले गए।
0: जब समय खराब आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है, मैंने उसका विश्वास कर लिया। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं।
3: बस यही समझ लो, समय सचमुच खराब था, घर में चोरी हो गई, इतनी बड़ी जिंदगी है चुका लेंगे, पर अब और न उलझना।
0: पर वो 5,000?
3: अब तुम 5 रुपए भी मत देना, समझे?
0: वो माने तब ना।
3: अरे उसकी तो मक्खियां भी मानेंगी। तुम मुझे एक झाड़ू, वो भी सीक वाली, खरीद कर ला दो। और हाँ, कल शाम उसे चाय पर जरूर बुलाना।

0: ना ना क्रांति, ऐसा मत करना, अभी अपना हाथ फंसा है।
1: अरे उसी हाथ को निकालने के लिए तो झाड़ू की जरूरत है। तुम अभी जाओ और हाँ तब तक मैं घर ठीक करती हूँ।
0: ठीक है।
1: और हाँ जल्दी लौट आना, ऐसा ना करना कि कहीं पीने बैठ जाओ।
0: नहीं नहीं क्रांति, अभी गया और अभी आया।

0: दद्दा, बेशर्मी की हद होती है। वो टलने का नाम नहीं ले रहा। आप बताओ क्या करें।
1: आपने बहुत बड़ी गलती कर दी संतोषी। आपने पहले से साफ साफ बातें क्यों नहीं की?
0: अरे यार दद्दा, उसने मुझे ऐसा फंसा लिया। वो कहता था फिल्म लाइन में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की बीच की बातें किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं उसकी बातों में आ गया दद्दा। अब आप ही कोई उपाय बताइए।
2: उपाय एक ही है, उसे घर बुला लो और मेरे हाथ में झाड़ू दे दो। मैं उसकी चांद के जो दो चार बाल बचे हैं ना, उनको भी साफ कर दूंगी तो मान जाएगा।
0: ना ना ना, ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा क्रांति। अपना बहुत पैसा फंस गया है,
2: समझ लो पानी में डूब गया। पर इस चक्कर से जितनी जल्दी दूर हो जाओ उतना ही अच्छा है।
0: पर
2: कुछ नहीं, तुम उसे घर बुलाओ, मैं निपट लूंगी।
0: आप बोलो दद्दा, आप क्या कहते हो?
1: मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यार।
2: पर मेरी समझ में तो आ रहा है। आप उससे कहिए सब इंतजाम हो गया है, घर आ जाए।
3: हेलो, कौन? संतोषी?
0: जी सर, हेलो, कहिए।
3: यार तुमने तो मिलना ही बंद कर दिया है? हम कब तक यहाँ पड़े रहेंगे?
2: किसका फोन है?
0: अरे उसी चंदू का।
2: बुलाओ उसे, कहो घर आए।
3: हेलो
0: जी।
3: मैंने कहा क्या पैसों का इंतजाम हो गया?
0: यस सर।
3: शुक्रिया शुक्रिया।
0: शुक्रिया किस बात का सर?
3: अरे भाई पैसों का इंतजाम जो हो गया तो शाम को फिर बियर बार में मिले।
0: अरे नहीं सर, नहीं सर, यहीं आ जाइए।
3: ठीक है फिर मैं आता हूँ। और आज रात की ट्रेन से ही निकल जाऊंगा मैं।
0: ठीक है, ओके
3: ओके ओके।
1: आने दो चंदू को, दो झाड़ू मैं भी लगाऊंगा।
0: पर दद्दा, आपकी कहानी?
1: अरे छोड़ो कहानी को, समझ लेंगे किसी खलनायक के हाथ पड़ गई थी।
2: पर दद्दा, झाड़ू आप नहीं मारेंगे, आप तो उसकी जेब से चाबी निकालकर यूमेटिक कैसेट और स्क्रिप्ट अपने जिम्मे करेंगे, ठीक है?
1: हाँ ये ठीक है।
2: लगता है आ गया चंदू, जाओ बैठाओ और दरवाजा बंद कर लेना जिससे भागने ना पाए।
0: ठीक है। आइए सर।
3: हाँ भाई संतोषी, ट्रेन 9 बजे है, जल्दी निकलना पड़ेगा।
0: जी सर, बस एक एक चाय हो जाए।
1: नमस्कार डायरेक्टर साहब।
3: अरे आइए आइए, नमस्कार नमस्कार।
0: क्रांति एक चाय और बढ़ा लेना, दद्दा आ गए हैं।
2: जी ठीक है।
0: और सर कब तक संभावना है रिलीज होने की?
3: अब देखो ऐसा है संतोषी कि आप लोगों ने मुझे बहुत लेट कर दिया है।
1: आपकी फिल्म जिस स्थिति में है मुझे नहीं लगता वो रिलीज हो पाएगी।
3: यार तुम हमेशा अशुभ बातें ही क्यों करते हो?
1: अशुभ नहीं, सच्ची बातें करता हूँ। अरे उसमें इतनी टेक्निकल खामियां हैं कि कोई उसे लेने को तैयार ही नहीं होगा।
3: वो तुम क्या जानो टेक्निकल पॉइंट की बात?
1: जानता नहीं था लेकिन अब जानने लगा हूँ मिस्टर।
3: मुझे बताओ, बताओ मुझे क्या खामियां हैं उसमें?
1: जैसे हीरोइन जब बात करती है तो कैमरे में देखती रहती है, कलाकार ऐसे बोलते हैं जैसे मुर्दे उठकर बोल रहे हूँ।
3: मैं समझ गया, सब समझ गया।
1: बताना अपना फर्ज समझता था तो बता दिया, ये गुस्से में आंखें लाल पीले किस पे कर रहे हो?
2: चाय पीजिए, बाद में लड़ लीजिएगा।
3: यार संतोषी तुम जल्दी करो भाई, अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहता।
1: आपको कोई रोकना भी नहीं चाहता, पर इतने आराम से आप जा भी नहीं पाएंगे।
3: क्या मतलब?
1: मतलब ये कि आप फिल्म की यूमेटिक कैसेट और रसल्स सब निकाल कर यहीं रख दीजिए, तब फिर जाइए।
3: क्यों क्यों रख दूं?
2: इसलिए कि वो हमारी पूंजी है, आप छोड़ जाइए, हम उसे सुधार कर रिलीज कराते रहेंगे।
3: ये

0: सब क्या है मिस्टर संतोषी? क्या इसी के लिए आपने यहाँ बुलाया था?
1: मेरी तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा।
2: पर हमारी समझ में तो आ रहा है ना? आप सब चीजें आराम से निकालते हैं या मैं झाड़ू उठाऊं?
0: तो क्या आप झाड़ू मारेंगी?
3: अरे सड़क पर बेइज्जती करने से अच्छा है आप अपने आप निकाल कर देते हैं सामान या मुझे आपके जेब से चाबी निकालनी पड़ेगी।
0: ऐसे कैसे आप जेब में हाथ डालने लगेंगे?
2: बड़े आराम से, ये ऐसे नहीं मारेगा।
0: अरे अरे अरे, ये क्या तरीका है? आप तो सचमुच मारने लगी जी मिस्टर संतोषी।
2: और आप क्या समझते हैं कि मैं कोई रिहर्सल कर रही हूँ? चलिए निकालिए कैसेट, स्क्रिप्ट, सब जल्दी करिए, जल्दी जल्दी।
0: मैं एक एक को समझ लूंगा, सबको देख लूंगा मैं। तुम सब समझते क्या हो? मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ, कोई मजाक नहीं।
3: अरे पराया डायरेक्टर।
0: और ये लीजिए आपकी ह्यूमेटिक और रसल।
2: अरे हाँ, तुम्हारे जैसे आदमी से तो ऐसे ही बर्ताव करना चाहिए।
0: मैं सबको देख लूंगा और मैं जाता हूँ, आप लोग।
3: अरे गनीमत समझिए, काला मुंह करके गधे पर नहीं घुमाया। और हाँ ध्यान रखिए, यहाँ से सीधे बम्बई का टिकट कटाइएगा बड़े आए डायरेक्टर बनने। अरे आइंदा किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करिए, समझे?
2: चलिए चलिए निकलिए बाहर, निकलिए यहाँ।
0: हाँ, जाता हूँ, एक एक को देख लूंगा मैं। एक
3: देख लेना।
2: एक ही झाड़ू से काम चल गया। अरे मुझे तो लग रहा था चार पांच जमानी पड़ेंगी। पर हाँ, अब आइंदा ऐसी गलती मत करना, समझे?
1: नहीं करूंगा बाबा, बिल्कुल नहीं करूंगा। पर इसके प्रदर्शन की उपाय तो सोचने पड़ेंगे।
3: वो बाद में सोचेंगे यार, अभी तो मुझे अनुमति दो।
1: नो, ना ना, अभी नहीं, थोड़ा सा सोहन हलुआ खाते जाए।
3: सोहन हलुआ।
1: पर अभी नहीं, थोड़ा रुक कर।
4: अरे थोड़ा रुक कर क्यों भाई, अभी खाते जाइए।
1: अरे जीनत आ गई।
3: अरे जीनत तुम? हाँ हाँ भाई, तब तो सोहन हलुआ खाना ही पड़ेगा।
2: बिल्कुल, क्योंकि वो आपकी कहानी की हीरोइन लाई है ना? पर ये क्यों बोलते हो? इस नाटक की हीरोइन तो है।

अभी आप सुन रहे थे नाटक फिल्मी चक्कर। लेखक थे डॉक्टर सुरेश पराग और प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर अरविंद सोनी। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इसमें गायन है मल्लिकार्जुन मंसूर का, राग है शुद्ध नट।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, इसमें आज आपने सुना मल्लिकार्जुन मंसूर का गायन, राग था शुद्ध नट। मिनी वेब पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हम हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रूपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान

द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि यह खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।